नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वी

बी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी, इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा

0: तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। ऐसा आकर्षण संसार भर में खोजे से भी न मिलेगा। अनोखे हैं मेरे श्याम।

ध्याओगे तो सुख अवश्य ही पाओगे, ऐसी अपरंपार महिमा वाले हैं हमारे गणपति। सांसारिक व्याधियां हों, अड़चने हों, बाधाएं हों, ये सब तो एक तरफ, भगवान गणेश तो भवसागर भी पार करा देते हैं।

हे प्रभु, अखिल ब्रह्मांड की सत्ता तेरे ही हाथ में है। तू ही मेरे प्राणों का आधार है, जीवन और जीवन यापन के सकल संसाधन तू ही तो प्रदान करता है।

महबूबे खुदा का करम जिस पर भी हो जाए उसकी दीवानगी भी शहंशाही से कहीं बालातर है।

गीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं संगीतमय श्री रामचरितमानस गान।

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनःस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंपकर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय प्रसारण। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और साथी संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है चिंतन।
1: हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जीवन के साथ साथ संस्कृति बदलती रहती है। जीवन स्थिर और जड़ नहीं है, इसीलिए संस्कृति भी जड़ और स्थिर नहीं है। समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और साथ ही साथ सांस्कृतिक जीवन भी बदलता रहता है। प्राचीन काल में जब धर्म मजहब समस्त जीवन को व्याप्त और प्रभावित करता था, तब संस्कृति के बनाने में उसका भी हाथ था। किंतु धर्म के अतिरिक्त अन्य भी कारण सांस्कृतिक निर्माण में सहायक होते हैं। राष्ट्रीयता की भावना तो मजहबों और धर्मों से ऊपर है। यदि ऐसा न होता तो एक देश में रहने वाले विविध धर्मों के अनुयायी उसे कैसे अपनाते? और जहां इसके प्रति भ्रम है, उसका कारण हमारी अज्ञानता और हमारी संकीर्णता है। हमें जितना जागरूक होना चाहिए, हम उतने नहीं हो पाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जब क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। समाज का पुराना सामंजस्य विनष्ट हो गया। अब हम नए सामंजस्य, नए समन्वय की तलाश में हैं। परिवर्तन का यह अर्थ कदापि नहीं है कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। ऐसा हो भी नहीं सकता। अतीत के वीक्षण, वो अंश जो उत्कृष्ट हैं, जीवनप्रद हैं, उनकी तो रक्षा करनी ही है। किंतु नए मूल्यों का हमको स्वागत करना होगा तथा वो आचार विचार जो युग के लिए प्रासंगिक नहीं है, अनुपयुक्त हैं, हानिकारक हैं, उसका भी हमें सर्वथा परित्याग करना होगा। आज सारे संसार को एक सूत्र में बांधने के भौतिक साधन विपुल हैं। विज्ञान ने इन्हें सुलभ किया है, किंतु जब तक मानव अपनी संकीर्णता का परित्याग नहीं करता, अपनी छोटी गतियों और सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता, तब तक वो इन साधनों का समुचित उपयोग नहीं कर सकता है। मनुष्य ने विज्ञान द्वारा यंत्र को अनुप्राणित किया, यानी उसे क्रियाशील कर सक्रिय बनाया, किंतु भौतिक संसाधनों की विपुलता हमारे मस्तिष्क को दबाने न पाए। और यदि कहीं दुर्भाग्यवश ऐसा होता ही चला जाए तो ये माने कि संस्कृति निश्चित रूप से संकट में है। किंतु मानव हृदय और मस्तिष्क इस संकट को जूझने को तत्पर है, तो इसका अंत भी होगा। एक व्यापक तथा उदार बुद्धि से काम लेने से तथा कानून और आर्थिक पद्धति की समानता से धीरे धीरे विभिन्नताएं दूर हो जाएंगी और इस देश में रहने वाले हम सभी लोग समान रूप से इस देश की उन्नति में लगेंगे।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। काव्यधारा के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्री राजकुमार सिंह से उनका पूर्व प्रसारित काव्य पाठ।
2: 18 जून को ही राणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसी घटना पर आधारित मेरी रचना है, आप सबके सामने प्रस्तुत है। चित्तौड़ विजय के बाद मुगल मेवाड़ विजय भी चाहता था, महाराणा का

के आकर बेसना ही मूकी खाते थे। चित्तौड़ पराजय राणा जी के दिल में आग लगाती थी, सिर झुका संधि की बात ना उनको कभी सुहाती थी। हर राजपूत में अकबर को क्यों मान सिंह दिखाई देता है, सिसोदिया कुल का दीप भी क्या बुझा दिखाई देता है। चित्तौड़ पराजय राजपूतियान की उसने सांझ समझ ली है, सिंह प्रसूता हर छत्राणी क्या उसने बांझ समझ ली है। जननी के बक्स से स्वाभिमान की सदा आग पिलाई जाती है, आन वान पर मिटने को जौहर की चिंगारी जलाई जाती है। समर भूमि में जय पराजय का सदा मार्ग दिखाया जाता है, कागज की संधि का मध्य मार्ग ना कभी सिखाया जाता है। कहना अरियाभिमानी से अब रण में खड़ग मिलन होगा, रण में राजपूत जो लिखे लहू से वही संधि का चलन होगा। अकबर का कोई प्रलोभन राणा को जब ना हिला सका, सिसोदिया कुलभूषण को अकबर तिलभर ना डिगा सका। सत्ता के मद में चूर मुगल ने फिर युद्ध की ठानी थी, मेवाड़ी सिंह सपूतों की ना शक्ति उसने पहचानी थी। राणा का ऊंचा स्वाभिमान अमृत में बिस्ता घोल गया, युद्ध करो राणा से जा, अकबर मान सिंह से बोल गया। संदेश युद्ध का पाकर के वीरों के उड़ते उछल पड़े, ले करके बरछी ढाल कृपाण वे सभी नगर से निकल पड़े। केसरिया बाना पहन लिया, हाथों में संभाला भालों को, राणा जी रण की ओर चले ले राजपूत मत वालों को, सुमिर के दुर्गा रणचंडी को रणभेरी को बजा दिया। सुमिर के दुर्गा रणचंडी को रणभेरी को बजा दिया, अकबर से लोहा लेने को राजपूती लश्कर सजा दिया। सिंह सपूतों की टोली देखो अब रण को जाती थी, सिंह सपूतों की टोली अब देखो रण को जाती थी। हर हर महादेव की स्वर लहरी से मही भी डोली जाती थी, निज आन वान पर मिटने को, निज आन वान पर मिटने को राजपूत सब आगे आते थे। मेवाड़ नगर के सभी मार्ग आज हल्दी घाटी को जाते थे। जून 18 का दिन था, धरा गगन सब जलते थे, दिन कर निज यौवन पर आकर मन चाही आग उगलते थे। उन प्रहंकारी राजपूतों का उत्साह संभाले संभलता था, राणा का मतवाला चेतक संग संग हवा के चलता था। मुगल सैनिकों पर राजपूत बन करके टिड्डी दल टूटे, मुगल सैनिकों पर राजपूत बन करके टिड्डी दल टूटे, अरि रुधिर के फव्वारे रणभूमि चहू ओर फूटे। मुगल सैनिकों को राजपूतों ने गाजर मूली सम काट दिया,

0: अरे दल को मारा घेर घेर, लाशों से रण को पाट दिया, लाशों पर लाशें गिरती थीं, लाशों पर लाशें गिरती थीं, ऐसा अंधेर मचाया था राणा ने मुगलों कोरण में, मन चाहा नाच नचाया था, आन वान पर मिटने की हर राजपूत ने अब ठानी थी, आन वान पर मिटने की हर राजपूत ने अब ठानी थी, एक एक ने दस दस को मारा, वो ऐसी वीर जवानी थी, कहीं घायल सैनिक तड़पते थे, कहीं रह रह कर दम तोड़ रहे, कहीं घायल सैनिक तड़पते थे, कहीं रह रह कर दम तोड़ रहे, राणा के सैनिक टापों से अरी दल के सिरते फोड़ रहे, राणा के तनिक इशारे पर चेतक हवा हो जाता था, जिस ओर बड़े था फिर चेतक बैरी तबाह हो जाता था, चेतक की टापों से मानो अग्नि के शोले बलते थे, चेतक की टापों से मानो अग्नि के शोले बलते थे, घायल पड़े मुगल सैनिक फिर उनमें आकर जलते थे, अरे रुंड मुंडों से समर भूमि को राजपूतों ने पाटा था, अरे रुंड मुंडों से समर भूमि को राजपूतों ने पाटा था, कीट पतंगे समबैरी को रणभूमि में काटा था, लड़ते लड़ते लड़ते लड़ते सांझ हुई, नहीं मान सिंह मिल पाया था, जीवन से आंख मिचोनी थी, राणा सम्मुख नहीं आया था, जब मान सिंह पर नजर पड़ी चेतक को किया इशारा था, जब मान सिंह पर नजर पड़ी चेतक को किया इशारा था, प्राण बचाकर कहां जाता, अब मान सिंह लाचारा था, चेतक ने अगली टापों को हाथी के मस्तक पर मारा, चेतक ने अगली टापों को हाथी के मस्तक पर मारा, राणा ने अपने भाले को फिर मान सिंह पर दे मारा, महावत गिरा मृत होकर, महावत गिरा मृत होकर और बहला ओहदे में लागा, प्राण बचाकर मान सिंह बैरी रण भूसे फिर भागा, चेतक घायल राणा घायल, घायल घायल ही लड़ते थे, नाव आन की खेने को घायल ही आगे बढ़ते थे।
1: काव्यधारा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री राजकुमार सिंह से उनका पूर्व प्रसारित काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंतम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः ईरानस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन सम्भाषणम् अकरोत्। सम्भाषणावधौ राष्ट्रपतिना पेजेश्कियन इत्यनेन पश्चिमेशियायाः घटनाक्रमस्य विषये प्रोदीरितम्। प्रधानमन्त्रिणा उभयोर्देशयोर्मध्ये सञ्जातं सहमतिं स्वागतीकृतम्। सहैव तेन भारतस्य निरंतर नीति पुनः प्रतिपादिता यत् सर्वेषां समाह्वानानां समाधानं केवलं संवादेन सुष्ठु नीत्या एव भवितुम् अर्हति। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी इत्याख्यः अधिनियमः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य एक दिनांकात् कृत्स्नेहि ग्रामीण भारते प्रवृत्तो भविष्यति। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25-उत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तिकरणं विधास्यति। देशे अस्य नूतन तन्त्रस्य क्रियान्वयनार्थम् अस्य वित्तीय वर्षस्य कृते 92,675,000,000,000,000 रूप्यकाणां प्रावधानं विहितम्। उपक्रमस्य अस्य प्रवर्तने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढ समन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् 25-उत्तरैकशत दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारतयात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह 16 भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनं उभयोर्देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखण्ड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं सञ्जातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तन्त्रेण संचालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एक दिनांकतः उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखण्ड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20-19 इत्येतेः सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतम् एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तन्त्रस्य अन्तर्गतम् उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को

0: पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं जानकारी। माइग्रेन का आयुर्वेदिक उपचार विषय पर।
3: माइग्रेन सिर में होने वाला ऐसा रोग है जिसमें रोगी के सिर के आधे भाग में दर्द होता है। इस रोग के हो जाने पर जो व्यक्ति की हालत ऐसी हो जाती है कि वह अपना रूटीन का काम भी ठीक से नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगता है कि उसके सिर पर कोई बुरी तरह मुक्के मार रहा है। जी मिचलाता है, उल्टी आने को मन करता है और उसे कोई भी आवाज, गंध या रोशनी अच्छी नहीं लगती। यद्यपि हम कहते हैं कि यह सिर दर्द आधे हिस्से में ही होता है, लेकिन कुछ लोगों को सिर के दोनों हिस्सों में दर्द मिलता है। माइग्रेन का जो हमला है वो किसी भी आयु में हो सकता है। बच्चे भी ज्यादा कदा इस रोग के शिकार हो जाते हैं, लेकिन किशोर अवस्था में मिलने वाले इसके रोगियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और 35 से 45 वर्ष की आयु में इसके रोगी सबसे अधिक मिलते हैं। और एक सर्वेक्षण के अनुसार पूरे विश्व में मिलने वाले सिर दर्द के रोगियों में से 10% से अधिक रोगी माइग्रेन के ही होते हैं। माइग्रेन के अनेक कारण है जी, नींद पूरी ना होना, हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक थकान, चमचमाती रोशनी, नशीली दवाइयों का सेवन, थकान होना, अत्यधिक कॉफी पीना, विशिष्ट प्रकार की गंध या जैसे सेंट का प्रयोग करते हैं, ये कुछ कारण हैं जिनसे माइग्रेन पैदा होता है। और जब कोई व्यक्ति भूखे पेट रहता है, ज्यादा टीवी देखता है और धूप में घूमता है तो उससे ये रोग और बढ़ जाता है। और आयुर्वेद में इसे अर्धावेदक नाम से इसका वर्णन किया गया है और वहां पर ये बताए हुए हैं कि रूखा भोजन करना, अर्थात घी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, या फिर भोजन ज्यादा मात्रा में कर लेना और समय पर भोजन नहीं करना। जैसे आजकल की दिनचर्या हो गई है कि आज का खाना हमने 1 बजे खा लिया तो कल दोपहर का खाना 3 बजे मिस भी कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि पहला भोजन तो पचा नहीं होता, फिर हम भोजन कर लेते हैं। और ठंडी वस्तुओं का सेवन ज्यादा मात्रा में करना और मल मूत्र की प्रवृत्ति होती है लेकिन किसी कारणवश हम उसको जबरदस्ती रोक देते हैं, इनसे भी ये माइग्रेन रोग उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति शारीरिक मेहनत रूटीन में करते हैं, मजदूरी करने वाले हुए, खेती करने वाले हुए, उनको ये रोग होने की संभावना कम होती है। लिखा पढ़ी का काम करने वालों को ये रोग अधिक होता है। शुरुआती अवस्था में अगर हम उसका ख्याल रखना शुरू कर दें और उसका जो परहेज है वो करना शुरू कर दें तो रोग पूरी तरह पनपता नहीं है। रोगी को चक्कर आते हैं, उल्टी आने की प्रवृत्ति होती है और शूल होता है। जो इसके वेग होते हैं 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन अथवा 1 मास के बाद रेगुलरली अकर होने शुरू हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। माइग्रेन का इलाज करने के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रोगी को कब्ज ना रहे। रोगी को पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण या कोई अन्य विरेचक चूर्ण का प्रयोग उष्ण जल के साथ अर्थात गर्म पानी के साथ करवाना चाहिए। ठंडे पानी के साथ कभी भी इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस दिन भी हम इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग कराते हैं पेट साफ करने वाली, उसी दिन भोजन के रूप में हम मूंग की दाल की खिचड़ी को घी के साथ प्रयोग करने को देते हैं। माइग्रेन में दूध और जलेबी का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सुबह होते ही अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यवस्था कर सके कि उसको जलेबी और दूध मिल जाए और उससे अपना पेट भर ले, मैंने कहा था खाली पेट से होता है इसलिए जो देरी से पचने वाली हैं वस्तुएं उनका सेवन करना चाहिए। और जलेबी और दूध का विशेष प्रभाव है इस रोग के ऊपर, या मीठी वस्तुओं के साथ प्रयोग कर लें, दूध, रबड़ी, मलाई, खीर, मालपुआ, फेनी, घेवर, हलवा का प्रयोग करने से इस रोग की शिकायत नहीं होती। और दूध में घी डालकर पीने से इस रोग में बहुत अच्छा लाभ मिलता है हमें। दमे की हो या माइग्रेन की हो या दोनों हो, उसमें भोजन के बाद घी पीना, शुद्ध घी पीने से इस रोग की बड़ी अच्छी चिकित्सा हो जाती है। और गाय का दूध या गाय के दूध से बना हुआ घृत, उसकी 2-2 बूंदें नाक में टपकाने से माइग्रेन में बहुत अच्छा लाभ होता है।
2: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे माइग्रेन का आयुर्वेदिक उपचार विषय पर जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं खेती की बातें।
4: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह। देखिए किसान भाइयों, आज से जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा शुरू हो चुका है और ये पखवाड़ा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय हमारे किसान भाई खरीफ फसलों की बुआई में लगे रहते हैं। इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में मानसून सक्रिय हो जाता है और खेतों में पर्याप्त नमी भी रहती ही है। यदि इस समय सही कृषि कार्य समय पर कर लिए जाएं तो फसलों की अच्छी बढ़वार के साथ बेहतर उत्पादन भी प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए किसान भाइयों, हमें इस समय जो काम करने हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं धान की फसल की। जिन किसानों ने अभी तक धान की नर्सरी तैयार कर ली है वे खेत में पर्याप्त पानी और उचित तैयारी के बाद रोपाई का काम पूरा कर लें। रोपाई के समय स्वस्थ और 20 से 25 दिन की पौध का ही हमें चयन करना चाहिए और कतार से कतार और पौधे से पौधे की उचित दूरी बनाकर हमें रखनी चाहिए। इससे पौधों को पर्याप्त पोषण और प्रकाश मिलता है और उत्पादन भी बेहतर होता है। साथ ही किसान भाइयों, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर और तिल जैसी खरीफ फसलों की बुआई यदि अभी तक आपने नहीं की है तो इन फसलों की बुआई भी हमारे किसान भाई इस समय कर सकते हैं। बुआई के लिए प्रमाणित और उपचारित बीजों का ही हमें उपयोग करना चाहिए। बीजोपचार से फसल को प्रारंभिक रोगों और कीटों से सुरक्षा मिलती है और अंकुरण भी बहुत अच्छा होता है। किसान भाइयों, जहां फसल की बुआई हो चुकी है वहां पर अंकुरण का हमें निरीक्षण करते रहना चाहिए। सही तरीके से फसल की देखभाल करने की जरूरत होती है। यदि कहीं पौधों की संख्या कम दिखाई दे रही है तो खाली स्थानों पर पुनः बुआई कर दें। इससे होगा ये कि हमारे खेतों में एक समान पौधों की संख्या बनी रहेगी। किसान भाइयों, जुलाई के पहले पखवाड़े में खरपतवार भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए फसल की अवस्था के अनुसार समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खरपतवार न केवल पोषक तत्व और पानी की प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि कई कीटों और रोगों के आश्रय स्थल भी ये बन जाते हैं, इसलिए समय पर खरपतवार नियंत्रण करने से फसल की बेहतर बढ़वार होती है। इस समय फसल में उर्वरकों का संतुलित उपयोग भी करना बहुत जरूरी होता है। जिन फसलों में टॉप ड्रेसिंग का समय हो उनमें वर्षा के बाद उचित नमी की स्थिति में नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग हमें करना चाहिए और उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण की अनुशंसा के अनुसार ही करना ज्यादा अच्छा रहता है। किसान भाइयों, वर्षा के मौसम में जल निकास की व्यवस्था पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। जिन खेतों में पानी लंबे समय तक भर जाता है वहां पर फसल की जड़ें प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए नालियां अवश्य बनाएं। वहीं किसान भाइयों, धान जैसी फसलों में आवश्यकता के अनुसार पानी का उचित प्रबंधन करें। जहां तक फलदार बागों की बात है तो इस समय विशेष देखभाल करने की उनकी भी जरूरत होती है। आम, अमरूद, नींबू, पपीता और अन्य फलों के पौधों के चारों ओर खरपतवारों को हमें इस समय हटा देना चाहिए और जल निकास की उचित व्यवस्था हमें बनाकर रखनी चाहिए। यदि हमें नए पौधे लगाने हैं तो इसके लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहता है। पौधरोपण के बाद पौधों को सहारा दें और आवश्यकता के अनुसार जैविक खाद का प्रयोग करें। किसान भाइयों, सब्जी उत्पादक जो हमारे किसान भाई हैं, जैसे कि वो इस समय टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, लौकी, तोरई, करेला और अन्य वर्षाकालीन सब्जियों की बुआई और रोपाई में लगे हुए हैं, तो जो किसान भाई इन फसलों को बोना चाहते हैं वो भी इस काम को इस समय कर सकते हैं। साथ ही बेल वाली फसलों को उचित सहारा देने की व्यवस्था भी इस समय करने की जरूरत होती है। इस मौसम में कीट और रोगों का प्रकोप तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए किसान भाइयों नियमित रूप से खेत की देखभाल करते रहें। पत्तियों पर धब्बे, तना, गलन, इल्ली, माहू या अन्य कीटों के लक्षण यदि दिखाई दे रहे हैं तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार समेकित कीट और रोग प्रबंधन हमें करना चाहिए। पशुपालन जो हमारे किसान भाई करते हैं तो इस मौसम में उनको भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि पशुओं के रहने के स्थान को साफ और सूखा रखना जरूरी होता है। पशुओं को संतुलित आहार, स्वच्छ पेयजल और समय पर टीकाकरण जरूर कराएं। तो किसान भाइयों, इस समय मौसम के पूर्वानुमान पर लगातार हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। भारी वर्षा की संभावना होने पर खेतों में जल निकासी की तैयारी पहले से करके रखें और कृषि कार्य जो भी करने हैं वो मौसम के अनुसार ही हमें करने चाहिए। किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेतीबाड़ी से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी। आज रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम जिले की हलचल प्रातः 9:15 पर और संध्या 7:32 पर कार्यक्रम कानून की बात, ये दोनों कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। सूचना और मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम सूरज के साथ साथ प्रसारित किया जाएगा सवेरे 7:31 पर। प्रातः 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम में सुनिएगा रजनी टॉक के स्वर में रोहिलखंडी लोकगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1318वां भाग सुनवाया जाएगा दोपहर 11:30 पर। दिन में 12:05 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग। घर संसार के अंतर्गत बात थारे मन की क्रम में विषय रहेगा बदलती जीवन शैली और बढ़ती समस्याएं। कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दिन में 1:15 पर। दोपहर 1:45 पर लोकधारा में हरीश सिंह मेहरा के गायक कुमावनी लोकगीत सुनवाए जाएंगे। संध्या 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती भारत सरकार की योजनाओं मिशन इंद्रधनुष और आयुष्मान भारत योजना पर चर्चा की जाएगी। युवाणी में शाम 5:15 पर बूझो तो जाने क्रम में चौरी चौरा घटना से संबद्ध सवाल पूछा जाएगा। साथ ही कुछ खास है आज क्रम में चर्चा का विषय होगा राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। कृषि जगत में संध्या 6:05 पर कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में आयोजित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुनवाई जाएगी। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग हिमांशु रंजन का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे अंकित सैनी। शाम 6:45 पर विविधा के अंतर्गत डॉक्टर विकास कंडवाल की पूर्व प्रसारित वार्ता का विषय रहेगा हरित भारत की दिशा में सुदृढ़ कदम के रूप में वन महोत्सव। संध्या 7:45 पर सुगम संगीत में कुलवंत सिंह के स्वर में शब्द सुनवाए जाएंगे। फिल्मी गीत आप सुनेंगे। सवेरे 8:45 पर गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में सवेरे 10:00 गीत तुम्हारे कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 11:00 चित्रपट संगीत कार्यक्रम के तहत दोपहर 12:30 पर मिड डे मेलोडी के अंतर्गत दिन में 2:30 पर व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम संदेश.com में शाम 6:55 पर छाया गीत के अंतर्गत रात 8:00 गीत संध्या कार्यक्रम में रात 8:30 पर एक ही फिल्म से क्रम में और रात 10:00 व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। ये थी कार्यक्रमों की जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 पर। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: मजबूत करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का लिया निर्णय। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रहे यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर सहित प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा।
3: विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो, या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
2: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रदेश के सभी जिलों में आज से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कल आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
5: वो लोग माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास कर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो, ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
2: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आज से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहन के धारक स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। प्रदेश के सभी जिलों में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत करीब 1 दर्जन सरकारी विभाग आपसी समन्वय बनाकर पूरे माह संचारी रोगों की रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। राज्य के लगभग सभी जिलों में मॉनसून की दस्तक हो गई है। मॉनसूनी वर्षा शुरू हो जाने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर सहित कई जिलों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।
6: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
2: प्रदेश में टाइगर रिजर्व के लिए 1 नवंबर 2025 से जारी पर्यटन सत्र कल संपन्न हो गया। 8 महीने तक चले इस सत्र के दौरान लखीमपुर खीरी के दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों ने वन्य जीवों का अवलोकन किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का लिया निर्णय। UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति

0: के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जानकारी होगी तिथि विशेष पर, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस पर, भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस पर। इसके अलावा कार्यक्रम में शामिल होंगी अखबारों की सुर्खियां और फिल्मी गीतों का आनंद भी आप ले सकेंगे। साथियों, हमारे यहां चिकित्सक को भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि चिकित्सक न केवल हमारी शारीरिक पीड़ा को पहचानकर औषधियों के द्वारा हमें फौरी राहत पहुंचाता है, बल्कि कई बार हमारे प्राणों की रक्षा भी करता है। हमारी स्वास्थ्य रक्षा में चिकित्सक की भूमिका सदैव ही महत्वपूर्ण रही है। इन्हीं चिकित्सकों के सम्मान में आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ये दिन हर साल 1 जुलाई को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले और समाज को स्वस्थ रखने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले डॉक्टरों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिवस भारत के महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष में मनाया जाता है। अजब संयोग है कि डॉक्टर राय का जन्म और निधन दोनों 1 जुलाई को ही हुए थे। डॉक्टर बीसी राय भारत के सबसे सम्मानित चिकित्सकों में से एक थे, एक प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तित्व, और उन्हें 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत में इस दिवस की शुरुआत पहली बार सन 1991 में भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा की गई थी। इस साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का मुख्य विषय है मुखौटे के पीछे उपचार करने वालों का उपचार कौन करता है। श्रोताओं, ये विषय चिकित्सकों को आने वाली शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। यह नजरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में तकनीकी कौशल से कहीं अधिक चीजों की जरूरत होती है। इसमें लंबे समय तक काम करना, भावनात्मक रूप से मजबूत होना, मरीजों से संवाद करना और दबाव में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस का महत्व हमेशा बना रहेगा। ये लोगों को याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सेवा न केवल प्रणालियों और बुनियादी ढांचे पर निर्भर करती है, बल्कि डॉक्टरों की प्रतिबद्धता, विवेक और धैर्य पर भी ये आश्रित होती हैं।

श्रोताओं, पिछले कुछ दशकों में दूर संचार के साधनों में आश्चर्यचकित कर देने वाली प्रगति हुई है। आज हम एक ही समय में दुनिया के किसी भी हिस्से में एक दूसरे से न सिर्फ आमने सामने बातचीत कर सकते हैं, बल्कि किसी भी प्रकार के लिखित संदेश अथवा अहम दस्तावेजों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से लगभग हर प्रकार की जानकारी आज हर समय उपलब्ध है। एक जमाना था जब पत्र व्यवहार के लिए धनराशि को एक से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए या किसी अहम सूचना और दस्तावेज को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हम डाक विभाग और उसके कर्मचारियों पर पूरी तरह निर्भर होते थे। आज ये निर्भरता काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन डाक विभाग और उसके कर्मचारियों की भूमिका अभी भी बनी हुई है, जो कि महत्वपूर्ण है। बहुत से काम आज भी डाक कर्मचारियों के जरिए ही हो पाते हैं। अहम दस्तावेजों की मूल प्रतियां, पार्सल, बैंक और बीमे से संबंधित कागजात और बहुत सी सूचनाओं को पहुंचाने का माध्यम अब भी डाक कर्मचारी ही होते हैं। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। ये दिन हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन उन सभी डाक वाहकों, पोस्टमैन और डाक विभाग के कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए समर्पित है, जो हर एक मौसम और कठिन परिस्थितियों में भी हमारी चिट्ठियां, पार्सल और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रूप से हम तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस दिन की शुरुआत पहली बार 1997 में अमेरिका में सिएटल क्षेत्र के एक डाक वाहक द्वारा अपने साथी कर्मचारियों के काम को सम्मान देने के लिए की गई थी। तब से हर साल 1 जुलाई को विश्व स्तर पर इन कर्मचारियों की निष्ठा और कड़ी मेहनत की सराहना की जाती है। डाक कर्मचारियों को आज भी अपने दैनिक कार्य के दौरान भारी बैग के साथ कई मील तक पैदल चलना पड़ता है। ईमेल और मैसेजिंग के इस डिजिटल युग में भी डाक सेवाओं और कर्मचारियों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि वे दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: दोस्तों, सार्वजनिक बैंकों में पहला नंबर भारतीय स्टेट बैंक का आता है। इतना ही नहीं, भारतीय स्टेट बैंक का नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्कों में से एक है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक की देश भर में 23,270 से अधिक शाखाएं और भारतीय स्टेट बैंक दुनिया के 29 देशों में 241 कार्यालयों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। शाखाओं के साथ साथ एसबीआई के पास 63,580 से अधिक एटीएम और 82,900 से अधिक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आउटलेट का विशाल नेटवर्क मौजूद है। ये बैंक 50 करोड़ से अधिक ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। दरअसल 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने वाणिज्यिक बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
3: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
4: तो इंतजार किस बात का,
3: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
4: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
3: और हमारा ईमेल आईडी है
4: akashwaninajibabad@gmail.com।
3: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: साथियों, जीवन में खुशियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये इंसान का तनाव कम करती हैं और जिंदगी गुजारने के लिए एक प्रकार के बूस्टर का काम करती हैं। खुशियों के लिए हमें किसी बहुत बड़े परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। आनंद और खुशियां एक दूसरे के साथ हंसी मजाक से उत्पन्न होती हैं, जो जीवन को सरल बनाती हैं। हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और ये दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद रहता है। हंसी हमारे शरीर में तनाव पैदा कम करने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं हंसने और खुशियां हासिल करने का दिन, यानी चुटकुला दिवस। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। पहली बार यह दिन मनाया गया था सन 1994 में। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों के जीवन में हंसी खुशी और सकारात्मकता फैलाना है। ये दिन लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ चुटकुलों को शेयर करने का मौका देता है। साल के बीचों बीच आने वाला ये दिन हमें साल के अगले आधे हिस्से की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ करने के लिए भी प्रेरित करता है।
5: सो मंगल बुध वीर

0: नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूं। उस आदमी ने पूछा, कहां है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा,

इसका 182वां दिन। कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन 1 जुलाई 1862 को किया गया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत स्थापित ये भारत का सबसे पुराना और पहला उच्च न्यायालय है। इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने सर बॉन्स पीकॉक और इसी पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित। कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। 1 जुलाई 1867 को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम लागू हुआ तो नोवा स्कोटिया न्यू ब्रंसविक तथा अन्य प्रांतों को एक साथ मिलाकर कनाडा संघ के रूप में एक स्वशासित डोमिनियन बना। कनाडा ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की और तभी से मनाया जाने लगा डोमिनियन डे। सन 1982 में इसे कनाडा दिवस नाम दिया गया। इस दिन नए नागरिकों को शपथ दिलाई जाती है, अन्य अनेक कार्यक्रम होते हैं। ये दिन राष्ट्र निर्माण का उत्सव ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता, विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी श्रद्धांजलि देने का दिन है। भारत में पहला पोस्टकार्ड 1 जुलाई 1879 को जारी किया गया था। हल्के भूरे रंग में छपे इस पहले पोस्टकार्ड की कीमत मात्र 3 पैसे थी और इस कार्ड पर मुद्रित था ईस्ट इंडिया पोस्ट कार्ड। बीच में था ग्रेट ब्रिटेन का राज चिन्ह और ऊपरी दाएं कोने में रानी विक्टोरिया की तस्वीर छपी थी। तब साल की पहली तिमाही में ही देश भर में लगभग 7.5 लाख रुपए के पोस्ट कार्ड बेचे गए थे। दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल 1 जुलाई 1881 को अमेरिका और कनाडा के मध्य की गई थी। ये टेलीफोन कॉल अमेरिका के कैलिस और कनाडा के सेंट स्टीफन शहरों के बीच हुई थी। ये दोनों शहर एक ही नदी के विपरीत किनारों पर स्थित हैं। दरअसल कनाडा और अमेरिका के बीच टेलीफोन प्रणाली का विकास एक ही कंपनी बेल टेलीफोन द्वारा किया गया था। यही कारण है कि आज भी इन दोनों देशों का अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोनिक कंट्री कोड +1 एक ही है। मोर्स कोड संदेश भेजने की एक ऐसी पद्धति जिसमें अक्षरों, अंकों और विराम चिन्हों को संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है, सैमुअल मोर्स द्वारा टेलीग्राफ के जरिए से संचार करने के लिए विकसित किया गया ये कोड पहली बार 1 जुलाई 1908 को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संकट संकेत के रूप में अपनाया गया था। इसका उपयोग सन 1999 तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आपातकालीन प्रणाली के रूप में होता रहा, जिसे बाद में उपग्रह आधारित प्रणालियों से बदल दिया गया। जिला बलिया के इब्राहिमपुर गांव में 1 जुलाई 1927 को जन्मे चंद्रशेखर सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। निष्ठा से अपने कर्तव्यों को अंजाम देने वाले चंद्रशेखर भारतीय राजनीति की परिस्थितियों के चलते केवल 4 महीने ही प्रधानमंत्री पद पर रह सके। वे एक अच्छे वक्ता और लेखक भी थे। 1955 में योग्य सांसद का प्रथम पुरस्कार पाने वाले चंद्रशेखर को आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा। जेल प्रवास के दौरान उन्होंने मेरी जेल डायरी नामक पुस्तक लिखी थी। पलटन में बहुत इज्जत होती है जिनके पास कोई चक्र होता है। देखना जुन्नन, हम जंग में लड़कर कोई ना कोई चक्र जरूर लेकर लौटेंगे। 1965 की भारत पाक जंग में जाते हुए अपने भाई से कहे गए शब्द थे भारतीय सेना के वीर सिपाही अब्दुल हमीद के। 1 जुलाई 1933 को गाजीपुर जिले के धर्मपुर गांव में जन्मे अब्दुल हमीद को अपने सेवाकाल में ही सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल और रक्षा मेडल से नवाजा जा चुका था। परमवीर चक्र उन्हें मरणोपरांत मिला। ये थी इतिहास के पन्नों में दर्ज आज की तिथि की प्रमुख घटनाएं और अब एक दृष्टि आज की सुर्खियों पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में वो हुआ जिसने विश्व कप फुटबॉल का इतिहास बदल कर रख दिया। टूर्नामेंट की 41वीं रैंक वाली टीम पराग्वे ने 4 बार की विश्व चैंपियन और 10वीं रैंक वाली जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट के सडन डेथ में 4-3 से हरा कर फीफा के इतिहास का बहुत बड़ा उलट फेर करके रख दिया। ये मुकाबला निर्धारित और अतिरिक्त समय तक भी 1-1 से बराबरी पर था। इस आशय का विस्तृत समाचार प्रकाशित करते हुए दैनिक हिंदुस्तान ने सुर्खी लगाई है, बड़ा उलट फेर, पराग्वे ने बदला फुटबॉल का इतिहास। दैनिक अमर उजाला
ईरान और अमेरिका के बीच हमले रुकने की खबर के साथ साथ वार्ता के अगले कदमों पर असहमति का समाचार प्रकाशित करता है। दैनिक अमर उजाला में ही भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के हवाले से भारत अमेरिका व्यापार समझौता प्रक्रिया के अंतिम चरण में होने की खबर देता है। इसी अखबार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने और इसके असर को लेकर चल रही चर्चा के बीच केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान पर समाचार प्रकाशित किया है। समाचार में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि 20% एथेनॉल मिश्रण अभी प्रयोग के तौर पर चल रहा है। इस नीति के जमीनी प्रभाव साल के अंत तक स्पष्ट हो सकेंगे।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बज रहे हैं, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता

0: गुप्ता ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है।

0: ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Vikasit Bharat Ji Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Nareka. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat Ji Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from today. The Rural Development Ministry says that the Act, which guarantees 125 days of wage employment in every financial year, will empower rural India. Our correspondent reports that a provision of 95,000 692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.
7: The VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Ji Ramji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
6: The central government has notified revised wage rates under the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. It said, for the first time, an interim-based wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat Ji Ramji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. The states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh are among those witnessing significant hikes ranging from between 15 and 25%. The ministry highlighted that Arunachal Pradesh and Nagaland have received the highest percentage increase of nearly 24.5%. States with already higher wages have also seen upward revisions. Haryana will now have a wage rate of 409 rupees, Goa 406 rupees and Kerala 401 rupees per day. In Sikkim's high altitude Gram Panchayats, the rate has been set at 450 rupees per day. Union Minister for Rural Development, Shivraj Singh Chauhan, described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. The Uttarakhand Minority Education Authority has come into existence today, replacing the Madrasa Board in the state. With this, all 456 madrasas in Uttarakhand will now be monitored by both the state government and the central government. More from our correspondent.
2: The Uttarakhand government has taken this significant step to make the education system more modern, transparent and inclusive. State Minister for Social Welfare, Shri Khajanda, said that all recognized madrasas currently operating in the state will now come under the Uttarakhand Minority Education Authority. They will also be affiliated with the Uttarakhand Board for School Education to ensure that students receive education in line with the national education standards. He said that the new system will not only be limited to institutes of the Muslim community alone, but will also apply equally to the educational institute run by Sikh, Jain, Buddhist, Christians and Parsi minority communities. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
6: The house-to-house data verification phase of the census begins across Kerala today as part of the nationwide census exercise. More from our correspondent.
8: The field verification follows the completion of the self-enumeration process, which ended at midnight yesterday. During the self-enumeration phase, households were able to digitally submit details of family members through the census portal. Residents who completed the online registration are required to provide the self-enumeration identification number to the census enumerator during the household visit. The enumerator will verify whether the information submitted online matches the existing record. If any mistakes are found or if a household has not completed self-enumeration, the enumerator will collect the required information afresh during the visit. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
6: President Draupadi Murmu will grace the first convocation of the Central University of Andhra Pradesh in Jantaluru in Ananthapuramu district today. The president will confer degrees on 1,268 students who have successfully completed undergraduate and postgraduate programs. She will also present gold medals to 56 students for their outstanding academic performance. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian yesterday. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. The Iranian president also appreciated Prime Minister Modi's personal role in supporting peace, stability and regional cooperation during their telephone conversation. According to the Embassy of Iran in India, during the conversation, President Pezeshkian expressed his satisfaction with the successful planning and hosting of the BRICS Energy Ministers meeting in India. He voiced hope that cooperation and engagement between Iran and India within multilateral frameworks such as BRICS would continue to expand. Emphasizing Iran's commitment to strengthening and deepening relations with India, the Iranian president said that the relations between the two countries are founded on a long-standing historical legacy and mutual respect. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is arriving in New Delhi this evening on a three-day visit to India. This marks her first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Our correspondent reports that India and Japan share a long-standing friendship rooted in centuries of cultural and civilizational exchange, spiritual affinity and shared values of freedom, democracy and respect for the rule of law.
9: India-Japan bilateral relationship was elevated to a special strategic and global partnership in 2014 as the two countries approach the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations in 2027. Cooperation continues to deepen across a wide range of sectors. These include trade and investment, economic security, defense and security, science and technology, culture and people-to-people ties. India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement came into effect on 1st August 2011. In 2025-26, bilateral trade crossed $27 billion. Japan is the fifth largest investor in India with investment of $48.17 billion between April 2000 and March 2026. Cultural cooperation also remains strong, with the Japanese showing great interest in Indian culture, including yoga, and finding connections through Buddhism and cultural symbolism. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
6: The 29th National E-Governance Conference will begin in Jaipur today. The two-day conference will be held at the Rajasthan International Center and is being jointly organized by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, the Ministry of Electronics and Information Technology and the Government of Rajasthan. More from our correspondent.
8: Around 2,700 delegates will participate in this conference, including representatives from more than 1,000 startups and over 400 academia. The first day will feature three plenary sessions and six breakout sessions. On the second day, the plenary sessions will be followed by the presentation of the National E-Governance Award, marking the conclusion of the conference. The discussions will be focused on artificial intelligence, deep tech, quantum computing, voice-first solutions, secure digital infrastructure, and other emerging technologies. The conference is expected to serve as a key platform for advancing inclusive, transparent, and citizen-centric digital governance. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jaipur.
6: Seven people were killed and more than 12 others injured after a sleeper bus caught fire following a collision with a truck on the Delhi-Mumbai expressway in Rajasthan's Dausa district. The accident occurred at around 3 a.m. near Tanawara village, close to Bandikui. The bus, which was traveling from Rishikesh to Indore, rammed into a truck and caught fire soon after. Several passengers were trapped inside the burning bus and did not get an opportunity to escape. In football, Kylian Mbappe further enhanced his FIFA World Cup legacy to lead France to a comfortable win against Sweden. In the round of 32 clash, France defeated Sweden 3-0 at New York's New Jersey Stadium this morning to storm into round of 16. Mbappe is struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Earlier, Norway beat Ivory Coast 2-1 in Texas, USA to advance to the round of 16. Antonio Nusa scored in the 39th minute to give Norway the lead, but Ivory Coast's Amad Diallo equalized in the 74th minute. However, Erling Haaland 86-minute goal secured Norway's spot in the round of 16. Norway will now face Brazil in the round of 16 on Sunday night. India's men's cricket team will begin their five-match 2020 national series against hosts England today. The opening match will be played at the Riverside Ground in Chesley Street starting at 10 p.m. Indian time. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
10: Thank you, Sunil. In their first conversation after Iran-US MOU, Iran's President Pezeshkian briefs Prime Minister Modi on developments in West Asia and the way forward, reports the Indian Express. The Hindu quotes a Union Finance Ministry report that reveals that Gulf remittances rose in April despite West Asia crisis. The lead story in Hindustan Times is what the newspaper calls a grim forecast by India Meteorological Department predicting that July is likely to be drier and hotter than normal across India. The special intensive revision of electoral rolls kicks off in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Maharashtra and Karnataka, reports the Asian Age. Niti Aayog has proposed a sweeping overhaul of India's tourism regulations as part of its latest report, Unlocking Growth in Tourism and Hospitality Sector, reports the Pioneer. In its editorial piece titled Safer Chats, the Tribune argues that WhatsApp's introduction of usernames is a long overdue privacy reform because it lets users communicate without exposing their phone numbers. And finally, work has begun on war footing on India's wrist, Petroglyph Conservation Park at Sindhu Ghat in Leh with the relocation of centuries-old rock carvings, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
6: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Vikasit Bharat G. Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their five-match 2020 international series against hosts England today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
11: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। विकसित भारत जी रामजी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है, जो मौजूदा एमजी नरेगा की जगह लेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बातचीत की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तिजारत के तहफ्फुज़ की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाई ताइकिची भारत के तीन दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। अब खबरें तफसील से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो जाएगा। دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ اس قانون سے جس میں ہر مالی سال میں 125 دن کے اجرت والے روزگار کی گارنٹی دی گئی ہے, دیہی بھارت با اختیار بنے گا. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ ملک بھر میں نئے فریم ورک پر عمل درآمد کے لیے رواں مالی سال میں 95,692 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
12: وی بی جی رام جی قانون نے 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی قانون ایم جی نریگا 2005 کی جگہ لی ہے. اس نئے قانون کا مقصد گارنٹی والے روزگار میں اضافہ کرنا ہے. اس قانون کے تحت مالی سال میں اب تک 100 دن کی گارنٹی دی جاتی تھی, لیکن اب سے 125 دن کی گارنٹی دی جائے گی. گارنٹی والے روزگار میں اس اضافے کا مقصد دیہی ترقی کی رفتار میں تیزی لانا, مزید آمدنی کی یقین دہانی کرنا اور دیہی گھروں کو با اختیار بنانا ہے. اس قانون میں بر وقت شفاف اور جوابدہی پر مبنی اجرت کی ادائیگی پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے. اس نئے قانون کے تحت یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ اگر کسی کو مقررہ وقت کے اندر اندر کام فراہم نہیں کیا گیا تو اسے بے روزگاری بھتہ دیا جائے گا. وکست بھارت جی رام جی قانون ایک جامع فریم ورک ہے جسے 2047 تک وکست بھارت کے قومی تصور کے مطابق دیہی روزگار فراہم کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد.
11: دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اس مشن پر عمل درآمد کے بارے میں کہا کہ کوئی بھی اہل دیہی ورکر ایک دن کے لیے بھی بغیر کام کاج کے نہ رہے. جناب چوہان نے کہا کہ حکومت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ قریبی تعاون رکھتے ہوئے سبھی انتظامی مالی اور تکنیکی تیاریاں مکمل کر لی ہیں تاکہ نئے فریم ورک پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھرپور مالی وسائل دستیاب کرائے گئے ہیں, لہذا عمل درآمد کا نظام پوری طرح تیار ہے اور جو کام جاری ہیں وہ بلا رکاوٹ جاری رہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 125 دن کی اجرت والے روزگار کی اس گارنٹی سے دیہی گزر بسر کو استحکام حاصل ہوگا, لوگوں کو مستقل اثاثے فراہم ہوں گے اور وکست بھارت کے تصور پر عمل درآمد میں تیزی آئے گی. مرکزی حکومت نے وکست بھارت روزگار اور آجیوکا مشن گرامین وی بی جی رام جی قانون 2025 کے لیے گارنٹی کے تحت اجرتوں میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جو آج سے لاگو ہو گیا ہے. دیہی ترقی کی وزارت کی طرف سے جاری کیے گئے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اجرت کی شرحوں میں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اضافہ کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ ایسا پہلی بار ہے کہ 300 روپے روزانہ کی اجرت عارضی بنیاد پر شروع کی گئی ہے, جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ اس پروگرام کے تحت نوٹیفیکیشن میں شامل کوئی بھی اجرت اس سطح سے کم نہ ہو. ایم جی نریگا کے تحت قومی سطح پر اوسط اجرت پہلے 298.80 روپے تھی, جسے اب وی بی جی رام جی کے تحت 327.40 روپے روزانہ کر دیا گیا ہے, جو اوسطاً 10% سے زیادہ ہے. اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی ادارے اتھارٹی آج سے نافذ ہو گئی ہے, جو ریاست میں مدرسہ بورڈ کی جگہ لے گی. اس طرح اتراکھنڈ میں سبھی 456 مدرسے ریاستی سرکار اور مرکزی حکومت دونوں کے زیر نگرانی رہیں گے. ریاست کے سماجی بہبود اور اقلیتوں کی بہبود کے وزیر خزان سنگھ نے کہا کہ ریاست میں سبھی موجودہ تسلیم شدہ مدرسے اب اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی ادارے اتھارٹی کے تحت آئیں گے. یہ مدرسے اتراکھنڈ کے اسکولی تعلیم کے بورڈ کے ساتھ بھی منسلک ہوں گے تاکہ طلبہ قومی تعلیمی معیارات کے عین مطابق پڑھائی کر سکیں.
3: بھارت میں شکشا ایک سمان سب کو ہونی تھی, اسی کے نمت ہماری سرکار نے 452 مدرسوں کو چنت کیا اور ان سے کہا بھی گیا, ان کو سمے بھی دیا گیا کہ آپ اتراکھنڈ کی جو ہمارا شکشا پرنالی ہے اس سے سمبند ہوئیے گا اور اس سے جڑیے گا, سب کی ایک شکشا ہوگی, ایک سمان ہوگا. یہ بہت ہی اچھا نرنے اور الپ سنکھیت میں مسلم ہی نہیں ہے, سکھ بھی ہے تو عیسائی بھی ہے, جین بھی ہے, بودھ بھی ہے.
11: سبھی مدرسوں کو تعلیم سے متعلق متحدہ ضلع اطلاعاتی نظام کے نمبر الاٹ کیے گئے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج انند پورمو ضلع میں جنتو لورو کے مقام پر آندھرا پردیش کی مرکزی یونیورسٹی کے پہلے تقسیم اسناد جلسے میں شرکت کریں گی. وہ ان 1268 طلبا کو ڈگریز عطا کریں گی جنہوں نے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگراموں میں کامیابی حاصل کی ہے. وہ 56 طلبا کو ان کی غیر معمولی تعلیمی کارکردگی پر گولڈ میڈل بھی عطا کریں گی. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کل ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر بات کی. इस गुफ्तगू के दौरान ईरान के सदर ने जनाब मोदी को मगरबी एशिया के हालात वाकयात और आगे बढ़ने के लिए इकदाम से वाकिफ कराया। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने मुफाहमत पर इत्तेफाक राय होने का खैर मकदम किया और भारत के इस मौकिफ को दोहराया कि सभी मामलात मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त के तहफ्फुज नीज तजारत के लिए कोशिशें जारी रखे जाने की जरूरत दोहराई। ईरान के सदर ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अमन इस्तेहकाम और इलाकाई इश्तराक की हिमायत करने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जाती रोल की सदाइश भी की। इधर भारत में ईरान के सिफारतखाने के मुताबिक इस बातचीत में सदर पेजिशकियान ने भारत में ब्रिक्स के तवानाई महकमे के वजीरों की मीटिंग की मेजबानी और इसकी कामयाब मंसूबाबंदी के तहत इत्मीनान का इजहार भी किया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाइची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा होगा। मोहतरमा तकाइची वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगी। इस सरबराह मुलाकात से तरफेन को इलाकाई और बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेने और उन्हें मुस्तहकम बनाने का मौका मिलेगा। हमारे नामनिगार ने बताया है कि भारत और जापान की दोस्ती तवील अरसे से कायम है और ये सदियों से सकाफती और तहजीबी तबादले, रूहानी रिश्ते, नीज आज़ादी, जमहूरियत और कानून की अमलदारी के तई एहतराम की मुश्तरक अकदार पर मबनी है। एक रिपोर्ट।
13: भारत जापान बाहमी ताल्लुकात को 2014 में खुसूसी कलीदी और आलमी साझेदारी की सतह पर पहुंचाया गया था। अब जबकि दोनों मुल्क अगले साल अपने सफारती ताल्लुकात के कयाम को 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें तिजारत, सरमायाकारी, इक्तसादी सिक्योरिटी, दिफा, साइंस, टेक्नोलॉजी, सकाफत और अवाम से अवाम के राबते भी शामिल हैं। भारत जापान जाम इक्तसादी साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 को नाफिज हुआ था। इधर साल 2025-26 के दौरान बाहमी तिजारत 27 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गई। जापान भारत में सरमायाकारी करने वाला 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। जापान ने अप्रैल 2000 और मार्च 2026 के दरमियान 48 अरब 17 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की। सकाफती इश्तराक भी काफी मजबूत है और जापान ने योग समेत भारतीय सकाफत में बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
11: मरकज ने आज से 15 दिन के लिए बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर आयद महसूल की शरों में तब्दीली की है। वजारत खजाना की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन नई शरहों के तहत बरामद किए जाने वाले पेट्रोल पर 4 रुपए फी लीटर मुकर्रर किए गए हैं। डीजल पर यह महसूल 8.5 रुपए होगा जबकि पहले यह महसूल 14 रुपए था। वजारत ने बताया कि हवाई जहाज के ईंधन की बरामदात पर आयद खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी को 12.5 रुपए से कम करके 7.5 रुपए कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जब यह बरामदाती ड्यूटी इब्तदाई तौर पर नाफिज की गई थी तो बरामद किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर सरकारी शोबे की तेल कंपनियों ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए छूट फराहम की थी। अब इस छूट में तौसी कर दी गई है और इसमें मॉरिशस और मालदीव भी शामिल कर लिए गए हैं। 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस आज जयपुर में शुरू हो रही है। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इंतजामी असलाहत और अवामी शिकायत के महकमे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत नीज राजस्थान सरकार ने मुश्तरक तौर पर किया है। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है विकसित भारत 2047, मसनूई जहानत और डेटा पर मबनी महफूज डिजिटल हुक्मरानी। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान सरकार के डिजिटल गवर्नेंस के कई इकदाम और इख्तरात का आगाज किया जाएगा। फिल्म थिएटर की मारूफ शख्सियत विजय मेहता का कल रात मुंबई में उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 92 साल की थी। उनका शुमार मराठी तजर्बाती थिएटर के कायदीन में होता था। फुटबॉल में न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में आज सुबह खेले गए मैच में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। फ्रांस की तरफ से कैलियन मबापे ने 2 गोल किए। इस तरह वो वर्ल्ड कप में 18 गोल कर चुके हैं और अब वो लियोनेल मेसी से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। इससे पहले टेक्सास में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को एक के मुकाबले दो गोल से हरा दिया और इस तरह नॉर्वे भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। अब इतवार की रात को प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। मर्दों की क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चेस्टरली स्ट्रीट में रिवर साइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर के जेरे कमान भारतीय टीम गुजश्ता सीरीज में आयरलैंड से 2-0 से हारने के बाद खेल में वापसी की भरपूर कोशिश करेगी। सबकी निगाहें उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज भी होगी। खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। ओवल मैदान पर ही कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम ने आमने सामने होंगी। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से टकराने के बाद स्लीपर बस में आग लगने के वाकये में 7 अफराद की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यह हादसा बंदीकुई के नजदीक रात देर गए 3 बजे के आसपास पेश आया। ये बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने का इम्कान है। इधर मानसून मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार के बकिया हिस्सों उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों नीज उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। ये थी खबरें। अब अखबारों के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
12: शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग को नुमाया किया है जिसमें कारोबार और रहन सहन में आसानी और खुदकफील भारत जैसे अहम मौजूद पर तबादले ख्याल किया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ के ओहदे से सुबुकदोश, नए जनरल धीरज सेठ ने फौजी सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, दिल्ली समेत 5 रियासतों में SIR का अमल शुरू, महाराष्ट्र कर्नाटक मेघालय और झारखंड में होगा SIR। अखबार की बैनुल अक्वामी सुर्खियां इस तरह हैं, खाने काबा को गुस्ल देने की रूह परवर सालाना तकरीब मुनकिद, यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बर्रे आजम।
11: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, विकसित भारत जी राम जी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है जो मौजूदा MG नरेगा की जगह लेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तिजारत के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स।

सागर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार के स्वर में। शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और धुन राहुल देव बर्मन की थी।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गीत। आवाज़ थी लता मंगेशकर की और गीत लिखा था शैलेंद्र ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।

प्रोफेसर प्यारीलाल, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले के स्वर में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे प्रिंस फिल्म का गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत लिखा था फारूक कैसर ने। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं सुधा मल्होत्रा के स्वर में संतोष आनंद का लिखा गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन तैयार की थी प्रेम रोग फिल्म के लिए।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सुबह के 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में कार्यक्रम जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: हाथरस और भदोही जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए भदोही और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं भदोही जिले की हलचल, आलेख है संजय कुमार का।
2: भदोही में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 30 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रत्येक गांव में करीब 20-20 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित गांवों का सर्वे पूरा कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होते ही विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2019-20 से अब तक जिले के 128 गांव इस योजना में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 50 से अधिक गांवों में कार्य चल रहा है, जबकि शेष गांवों में ग्राम विकास योजना और बजट की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ होंगे। शासन की इस योजना से अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुई भीषण अग्निकांड के घटना के बाद भदोही जिले में भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर DIOS भदोही, औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम लगातार होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही है। विशेष अभियान में कुल 145 प्रतिष्ठानों की जाँच की गयी। जाँच के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 85 संचालकों को नोटिस जारी किया गया, जबकि गंभीर अनियमितता मिलने पर 6 कोचिंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि जिले के कई प्रतिष्ठानों ने अब तक अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तक नहीं लिया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। साइबर थाना पुलिस ने निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर देश भर में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्ञानपुर के नंदापुर निवासी मन्नू सिंह और चख सिखारी निवासी ओम प्रकाश गौतम ने लोगों को कम समय में 3 गुना लाभ देने का झांसा देकर फर्जी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ठगी करते थे। जांच में सामने आया है कि इनके नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक खातों के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी की गई है। इनके खिलाफ केरल, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 50 से अधिक NCRP शिकायतें दर्ज हैं। 5 ATM कार्ड, 3 पासबुक, 3 चेकबुक, 47 फर्जी आधार और पैन कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, स्टाम्प पैड तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस जांच में विभिन्न बैंकों के खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है। गिरोह के सरगना सुमित सिंह समेत 4 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। औराई क्षेत्र के समधा गांव में 106 हेक्टेयर में फैले विशाल ताल को राज्यपाल द्वारा आधिकारिक रूप से वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के तहत चयनित इस ताल को अब इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला वेटलैंड समिति का गठन किया जाएगा, जो विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। यहां प्रवासी पक्षियों के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण विकसित करने के साथ साथ पर्यटकों के लिए वन डे टूर, भ्रमण पथ, बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और जिले में पर्यटन की नई संभावनाएं भी विकसित होंगी। नगरपालिका प्रशासन ने लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे नए शहरवासियों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे नागरिकों को बेहतर शहरी जीवन मिल सके। पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गोपीगंज में भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। बड़ा चौराहा से शुरू हुई यह यात्रा क्लब अध्यक्ष अताउल मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में निकाली गई। जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी जर्जर विद्यालय भवनों को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर उन्हें पूरी तरह बंद कराया जाए ताकि कोई भी छात्र या अन्य व्यक्ति उनके अंदर प्रवेश न कर सके।
1: भदोही जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार का।
3: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जनप्रतिनिधियों के साथ अवलोकन किया। प्रभारी मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों व संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 12 वर्ष विषयक समेकित जन कल्याण का एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकास खंड मुरसान ग्राम पंचायत रायक नगला लच्छी सैनपुर अर्जुनपुर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में केंद्र सरकार द्वारा विगत 12 वर्षों में संचालित जन कल्याणकारी योजना गरीब कल्याण कार्यक्रम एवं विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की गई। साथ ही आम जन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टार मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने यहां अविस्थापना विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में तहसील सदर हाथरस में के ग्राम अधीसा भगवंतपुर में अटल कन्वेंशन सेंटर व गेस्ट हाउस निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि लगभग 200 लोगों की क्षमता वाली इस कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक प्रशासनिक एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों को विभिन्न आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता था, लेकिन इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के बाद यह समस्या समाप्त हो जाएगी और जनपद को एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आयोजन स्थल प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी योजना परियोजना पर लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने केलोरा चौरा स्थित ठाकुर मलकान सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही जनपद हाथरस में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजना का अवलोकन पर एक शिलान्यास किया तथा जनपद में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण विकास हेतु जनपद वासियों के लिए सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी द्वारा 1,024.70 लाख रुपए लागत की 9 पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण पर किया। इनके विकास भवन स्थित पर्यटन केंद्र निर्माण एवं विकास कार्य मोड़ा बाली माता मंदिर दावजी महाराज मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर उदय सिंह की कचहरी परिसर में लैंडस्केपिंग एवं जनसभा काल गंगागढ़ी स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर सिद्धपीठ पर्वसरा तीर्थ भूमि कर ढकपुरा मंदिर स्वर्ग आश्रम तथा काली माई मंदिर के पर्यटन विकास कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 308.80 लाख रुपए लागत की 4 परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम पर्यावरण चेतना अभियान की शुरुआत की गई। इस खास मौके पर वन विभाग के तत्वाधान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शासनी स्थित नगर वन में संपन्न हुआ जिसमें पर्यावरण संरक्षण को भारी उत्साह देखने को मिला। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जनपद के बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा कलेक्टर परिसर में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में हम आप आपको सुनवा रहे हैं आज रजनी टोंक के गाए रोहेल खंडी लोकगीत।

रजनी टोंक के स्वर में आप सुन रहे हैं रुहेलखंडी लोकगीत। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर पर।

रजनी टॉक के स्वर में अभी आप सुन रहे थे रुहेल खंडी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बजे हैं। पेश है आपके अनुरोध पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। सुनवाते हैं दोस्तों आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत।

आशा भोसले के स्वर में आप सुन रहे थे तीसरी कसम फिल्म का गीत। शब्द रचना थी शैलेंद्र की और संगीत रचना शंकर जयकिशन की थी। पसंद थी आप सब लोगों की इस गीत के लिए। निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद दानिश और इकराम अली प्रेमी। निकट पत्थर वाली मस्जिद कस्बा जलालाबाद से फरमाइश की थी अब्दुल खालिक सलमानी, कुलसूम, मैनाज, मेहताब, नेहा, सादिया, आफिया, शहनाज, अरहान, आलिया और आयशा ने। ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड से अनुरोध करते थे जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद यादव, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका और रोमिका यादव। ये संदेश था धनौरी तेलीवाला से। फरमाइश करते थे निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। दाऊ सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम और अमान साबरी। मोहल्ला हलवाइयान कस्बा शेरकोट से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू साजदा और चांदनी रानी। दूल्हापुर मुरादाबाद से आप थे मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, काजल, पंकज, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य और सोनी। ये संदेश था मोहल्ला अफगानान शेरकोट जिला बिजनौर से। पसंद करते थे इस गीत को नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, नाजिमा बी, अलमीर और जन्नत।

दो बदन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले के स्वर में गीतकार थे शकील बदायूं ने और धुन थी रवि की। इस गीत को पसंद किया था जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बोडाना ने। सुदामा नगर खंडवा से फरमाइश करते थे लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। मुगलपुरा बागपत से ये संदेश था अब्दुल सत्तार अब्बासी का। नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर से फरमाइश करते थे मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद उजैफ। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से फरमाइश करने वाले श्रोता थे सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और उनके साथ मोहम्मद आलम हाशमी। फर्रुखाबाद साहब

पंच चौराहा उत्तर प्रदेश से अनुरोध करते थे सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, बाबू शिवा चौरसिया, शिवानी चौरसिया, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक का सतगंजी। ये संदेश आया था ग्राम गद्दारौना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से। अनुरोध करने वाले हमारे श्रोता थे मदन गिरी, विमला गिरी, बलराम गिरी, मधु गिरी, भारत गिरी, सोनिया गिरी, सिमरन गिरी, गोविंद गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्या गिरी। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से फरमाइश की थी मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से हमारे श्रोता थे विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रामापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक, वीपीपुरी और विनोदपुरी। ये संदेश मारहरा दरवाज़ा एटा से था। फरमाइश करते थे नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और रशीद वारसी।

आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे प्रेम धवन का लिखा गीत। रवि ने इस गीत की धुन तैयार की थी एक फूल दो माली फिल्म के लिए। इस गीत के लिए फरमाइश की थी जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, समरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर ने। ग्राम जुझला थाना शिवाला कला बिजनौर से फरमाइश आई थी राशिद अंसारी, परवीन जहां अंसारी, निशात, आयशा और मोहम्मद अफ़ान की। नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से ये संदेश था अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर का। भाटापारा छत्तीसगढ़ से फरमाइश की थी सोहन जोशी ने। दतरेंगी से फरमाइश करते थे भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और उनके परिवार के सदस्य। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से आप थे अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। गांधी बाग अकोला से फरमाइश करते थे रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और धनंजय कटनकर। सरोज चौक अमरावती से अनुरोध करने वाले श्रोता थे कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से अनुरोध किया था पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता आरजू पप्पू, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी और परिवार के अन्य सभी सदस्यों ने।

गनगोला दातागंज ज़िला बदायूं से फरमाइश करते थे इशरत ख़ान, सायरा बेगम, रऊफ़ ख़ान, सबरीन बेगम, शहबाज ख़ान, सैफ ख़ान, ईशान ख़ान, आज़म ख़ान और अरहान ख़ान। ये संदेश था झज्जर हरियाणा से। अनुरोध करते थे बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। लक्सर रोड गांव सुवाहेड़ी कस्बा पुरकाजी ज़िला मुजफ्फरनगर से ये फरमाइश थी। मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद उसैफा, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद सुहेब, कहकशां और उनके परिवार के और सभी सदस्य। ऑरेंज सिटी नागपुर से आप थे बिट्टल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव और उनके दोस्त। छत्रपति संभाजी नगर से फरमाइश करते थे मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज। नामदेव रसूलपुर नगला जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से फरमाइश करते थे मनोज कुमार छेपी, दीपक नामदेव, वैभव नामदेव, पूर्णिमा नामदेव और चुनमुन नामदेव।

गंवार फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और धुन नौशाद की थी। इस दो गाने को पसंद किया था हमारे इन सब श्रोताओं ने। मुकाम हिप्पर सोगा तालुका औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैज नबी शेख, शाकिर शेख, इस्लाम नबी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमरन शेख, सानिया, शकील पठान, विरमिलावी शेख, गदर शेख और शेख परिवार के अन्य सभी सदस्य। पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिहारा के तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन्निसा असलम हुसैन, एडवोकेट महमूद हसन और उनके दोस्त, बीबीपुर से आप थे मकसूद हुसैन और नाजिम अली। ये संदेश था मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी का बरका काना झारखंड से। अस्तुपुरा जिला मऊ उत्तर प्रदेश से फरमाइश करने वाले श्रोता थे मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया था आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद ने। दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से फरमाइश करते थे एम असलम सैफी, जैबुन्निसा बेगम, अकरम सैफी, जाहिद सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और आबाद खान। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से अनुरोध करते थे ये सब श्रोता शिव गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से अनुरोध करते थे बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। जिला दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा और उनके दोस्त। मेन बाजार नेटौर उत्तर प्रदेश से एम जुल्फकार राही, एम मुमताज राही, एम जुनैद राही, अलसबा गुल, गुलफी शहरानी, मोहम्मद आयान फरीदी और मोहम्मद कैफ फरीदी ने भी इसी गीत को पसंद किया था। हमारे यशोता शाही मार्केट सिहारा से इस गीत को पसंद करते थे आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी। ये पत्र था मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अनुरोध करते थे अभिजीत गवाणकर राही, सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर और प्रिंस एकांश गवाणकर। विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर परी ने भी इसी गीत को पसंद किया था। जतुका किशनपुर से आप थे आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी रानी। ये संदेश था सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार का। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से फरमाइश की थी जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने।

आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे 40 दिन फिल्म का गीत। बोल थे कैफी आज़मी के और धुन बाबुल की थी। इस गीत के लिए फरमाइश की थी भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने। फुलोंग निज़ामाबाद तेलंगाना से ये संदेश था एम ए वहीद रूमानी, डॉक्टर मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद फ़सी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद अक्रम, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फ़ुरक़ान, मोहम्मद ज़ाकिर और मोहम्मद फ़ाज़िल का। अनारकली बाज़ार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव ने भी इसी गीत को पसंद किया था। बरवट बकाल बुलढाणा महाराष्ट्र से आप थे नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से फरमाइश करने वाले श्रोता थे दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनुरोध किया था अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत ने। ये संदेश था एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और उनके परिवार के सभी सदस्यों का। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट ने भी इसी गीत को पसंद किया था। यह संदेश था शेरवानी स्कूल गंज टुंडवारा से। गीत को पसंद करते थे आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, असलम सैफी, शमसुल कमर और उनके दोस्त। पाठर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे ने भी इसी गीत को पसंद किया था।

0: सुहाना सफ़र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अशरफ भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। इस गीत को पसंद किया था आप सब श्रोताओं ने। रेलवे कॉलोनी रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी और दंतरेंगी से भागवत वर्मा।
1: इसी गीत को सुनना चाहते थे गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। बोर्ड सारा नैला छत्तीसगढ़ से ही हमारे श्रोता हैं जिन्होंने इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी। प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू।
0: कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से आप थे ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय ने भी इसी गीत को पसंद किया था।
1: रेलवे रोड गंजडुंडवारा से थे मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और भाभी सरिता गौतम।
0: सुरेवाड़ी औरंगाबाद से फरमाइश करने वाले श्रोता थे प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि और सोहन बोरगांवकर। इसके साथ ही अंशुमन और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी फरमाइश करते थे।
1: यह है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान।
0: वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता ने इस गीत को पसंद किया था।
1: इस गीत को पसंद करने वाले हमारे और भी श्रोता हैं। ये हैं फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजियान सीर, साजिद शाहिद और गोविंदपुरा अहमदनगर से हैं जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर और मिखाइल जैनब मुजावर।

0: ಮಾತೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್
1: किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे इंदी भर का लिखा गीत। कल्याण जी आनंद जी ने इस गीत की धुन तैयार की थी आंसू और मुस्कान फिल्म के लिए। पसंद करते थे इस गीत को आप सब श्रोता। तेलीपुरा रवाना शिकारपुर बिजनौर से मोहम्मद यूनुस अंसारी, मुरसलीन अंसारी, अताउर रहमान अंसारी, निरंजन सिंह सैनी और अब्दुल अजीज उर्फ जिजवा। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, स्वाति मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, एरोही मौर्य और मौर्य परिवार के अन्य सभी सदस्य।
2: ताहिर जी, इसी गीत को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए सुनने की ख्वाहिशमंद थी हमारे ये श्रोता। गनगोला दातागंज जिला बदायूं से है इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, साबरीन बेगम, शहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान और अरहान खान।
1: गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने भी इसी गीत को पसंद किया था। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश थे आप थे बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा।
3: खाली डब्बा, खाली बोतल।

0: नील कमल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे के स्वर में। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था और धुन रवि की थी। पसंद थी आप सब श्रोताओं की। बटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और उनके परिवार के सदस्य। कालका से आप थे शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत। युगल स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार का, गीतकार है राजेंद्र कृष्ण और धुन मदन मोहन की है। पसंद आप सबकी।
1: ये है मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी।
0: ग्राम बग बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।
1: ये हैं गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी।
0: गांव कैरो पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरुशब्द। गांव चहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन मुस्कान और कुणाल। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

राम तेरी गंगा मैली। श्रोताओं, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। गीत लिखा था रविंद्र जैन ने और संगीत भी रविंद्र जैन का ही था। और आइए एक बार फिर से सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में फिल्म धनवान का ये गीत। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के स्वर में फिल्म पहली तारीख का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं कमर जलालाबादी ने और संगीत दिया है सुधीर फड़के ने। श्रोताओं, हर महीने की जो पहली तारीख होती है वो किसी भी नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए बहुत ही खास होती है, क्योंकि उस दिन उन्हें वेतन मिलने वाला होता है और सीमित वेतन के साथ असीमित आवश्यकताएं जुड़ जाती हैं। और फिर हर दिल यही गाता है।
3: दिन है सुहाना

वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना। आज पहली तारीख है, खुश है जमा।

0: आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाँच आने का दसाना, पाँच आने का दसाना, पाँच आने का दसाना।
0: अरे वापस नहीं जाना,

किशोर कुमार के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म पहली तारीख का ये गीत। गीत लिखा था कमर जलालाबादी ने और संगीतबद्ध किया था सुधीर फड़के ने। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म बाबू का ये गीत। गीत और संगीत श्रोताओं रविंद्र जैन का है। बारिश की फुहारों से दिल झूम उठता है, मन के कोने कोने में संगीत बज उठता है। जब आते हैं घुमड़ घुमड़ कर काले बादल तो मन मयूर सा नाच उठता है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म बाबू का ये गीत। गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी और संगीत था राजेश रोशन का। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और नंदा की खूबसूरत आवाज़ों में फिल्म जब जब फूल खिले का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और उन्हें संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: जबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
2: जी,
1: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
2: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
2: जी।
1: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
2: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
2: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
2: जी।
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
2: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
2: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
2: जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं, और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोदकर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
2: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
2: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
2: जी,
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
2: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान

0: दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
6: मैम।
4: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
5: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
8: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
4: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
4: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
8: जी मैम,
6: हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत

0: श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
2: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
4: जी मैम।
5: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
2: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह।
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
0: जी।
1: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
3: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
3: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
4: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे है ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे भाई ये भी
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
3: मैं बोलूं? अच्छा देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहां खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
2: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
4: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है, अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
2: अच्छा और मुखिया जी क्या फाके करें, मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
0: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई।

0: और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
1: मुखिया जी, मुखिया जी!
2: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
1: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि...
2: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
1: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
2: तो भरने दो।
1: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
2: अरे तो जाने दो।
1: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
2: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
1: लेकिन मुखिया जी,
2: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
1: जी मगर
2: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
3: मुखिया जी,
2: अब क्या है?
3: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
2: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
4: मुखिया जी, मुखिया जी,
2: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
4: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
2: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
4: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
2: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
4: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया।
2: कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं।
5: ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह, मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। शाम 7:32 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम कानून की बात। कार्यक्रम विविधा में शाम 6:45 पर आज आप सुनेंगे डॉक्टर विकास कंडवाल की पूर्व प्रसारित वार्ता हरित भारत की दिशा में सुदृढ़ कदम के रूप में वन महोत्सव।

किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर सुनिएगा एपिदा द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में आयोजित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग हिमांशु रंजन का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे अंकित सैनी। श्रोताओं, आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। शाम 7:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवाएंगे कुलवंत सिंह के स्वर में शब्द।

दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम संदेश.com। शाम 5:15 पर कार्यक्रम युववाणी में खास क्रम रहेंगे यूथ कनेक्ट, साथ ही क्रम कहानी के उस पार में आप सुनेंगे कानों में कंगना। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में क्रम बात थारे मन की के अंतर्गत आज का विषय रहेगा बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याएं।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आज दिन में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे हरीश सिंह मेहरा के गाए कुमाऊनी लोकगीत। और श्रोताओं, अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 12:05 पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खान का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 12:05 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद अमजद अली खान का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग। आलाप मध्यालय 3 ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं सफात अहमद खान। तो लीजिए सुनिए उस्ताद अमजद अली खान का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अमजद अली खान का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग। आलाप मध्यालय तीन ताल में निबद्ध था। तबले पर संगत कर रहे थे शफाद अहमद खान। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, दिन के 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार रसानू के स्वर में फिल्म दीवाना का गीत। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। आसान नहीं होती राह मोहब्बत की, आसान नहीं होती राह मोहब्बत की, इसलिए बेहद ज़रूरी है ये सोचना कि प्यार करें कि नहीं।

अभी आपने सुना कुमार सानू के सर में फिल्म दीवाना का ये गीत। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है पुलिस पब्लिक। शब्द रचना असद भोपाली की है और संगीत है राम लक्ष्मण का। जो तेरे बिना गुजरे वो जिंदगी जिंदगी नहीं, बिन तेरे जिंदगी का कोई भी पल मुझे गवारा नहीं।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchive.com।

0: www.radiomirchi.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, कार्यक्रम में पेश है अगला गीत कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है हम हैं राही प्यार के। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और उन्हें संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। गर साथ अपनों का हो तो कोई भी सफर मुश्किल नहीं लगता, तकलीफों का दौर भी हंसते हंसते गुजर जाता है।

हम हैं राही प्यार के। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। शब्द रचना समीर की थी और संगीत था नदीम श्रवण का। और आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत राहत फतेह अली खान और कृष्णा की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है नमस्ते लंदन। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और उन्हें संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने। श्रोताओं, कोई हमारी जिंदगी या दुनिया से बेशक चला जाए, मगर वो हमारी यादों में हमेशा रहता है। हम कहीं भी रहें, हर अच्छे बुरे वक्त में हम उसे याद करते हैं।

श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये गीत। शब्द रचना समीर की है और गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा

0: जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said Digital India Initiative has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. Marking the 11 years of the initiative, Mr. Modi said that Digital India has touched every aspect of life. He underscored that seamless digital payments and direct benefit transfers are reaching beneficiaries with transparency. Mr. Modi said that technology has become a powerful instrument for furthering ease of living. Home Minister Amit Shah has said that the government has transformed India into a digital nation by expanding digital connectivity, strengthening digital governance, and improving access to public services. Marking 11 years of the Digital India Initiative, Mr. Shah said the country has witnessed significant progress in internet connectivity, digital infrastructure, and technology-driven governance. In a social media post, he said that over 103 crore people are now connected to the internet, while more than 2,20,000 villages have been linked through BharatNet. Revised wage rates under the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 have become effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. The ministry said for the first time an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat G. Ramji. 21 states and administrative units which previously had wages below 300 rupees have now been brought up to the new benchmark. Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. In Uttar Pradesh, 5 people, including 2 minor girls, were killed after sleeper bus collided with a car on the Agra-Lucknow expressway in the wee hours today. According to the officials, the sleeper bus was travelling from Haryana to Bihar, while the car was heading from Agra towards Lucknow when the speeding bus hit the car from behind. After the collision, the bus fell off the expressway and overturned. The impact was so severe that the car was completely mangled and dragged for nearly 20 feet on the expressway. With the help of locals, injured people were rescued and rushed to the community health center, Bangarmau. Those with serious injuries were referred to the district hospital. Noted film and theatre personality Vijaya Mehta passed away at a Mumbai residence last night at the age of 92. She was one of the pioneers of experimental Marathi theatre. Fondly known as Bai, Vijaya Mehta introduced a new theatrical language, fresh perspectives and a globally informed approach to Marathi stagecraft through the theatre group Rangayan. Her landmark productions include Barrister, Sakharam Binder, Hamida Baichi Koti, among others. As a teacher and mentor, she trained several generations of actors and theatre practitioners. Vijaya Mehta was honoured with the Sangeet Natak Academy Award in 1975. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the passing of the veteran theatre director and remembered her creativity and commitment to artistic excellence. Prime Minister Narendra Modi today hailed the efforts of doctors and medical professionals who are working in Venezuela as a part of Operation Amistad. In a social media post, he said that in such a challenging time, the efforts to serve those in need are shining examples of how medical professionals rise to the occasion every time the society faces a challenge. India launched Operation Amistad in response to devastating earthquakes in Venezuela that caused extensive loss of life, injuries and widespread destruction. Operation Amistad is a humanitarian assistance and disaster relief mission in a gesture of solidarity with the people of Venezuela. On the second day of the higher-level assessment tour, Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju, accompanied by Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu conducted an aerial survey of flood-hit areas in the state today. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। रियासती हुकूमत ने मुलाजिम असातजा के लिए अलग से टीचर अहलियत टेस्ट TET कराने का फैसला किया है। UP TET 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल इस सिलसिले में अफसरान को वाज़ह हिदायत दी। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने कल से 4 जुलाई तक मुनक्किद हो रहे UP TET 2026 इम्तिहान की दयानतदारी और शफाफियत व उम्मीदवारों की सहूलियत को यकीनी बनाने पर खसूसी जोर दिया। इस दरमियान रियासती हुकूमत ने UP TET 2026 के इम्तिहान में शिरकत कर रहे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलों में मुलाजिम असातजा को खसूसी छुट्टी देने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 102 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने बोर्ड के इम्तहानात में बेहतरीन कारगर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा और मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को लैपटॉप और ग्रांट के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत रामपुर समेत रियासत के रूहानी विरसे के मकामात को जिंदा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर इलाके में तरक्की को मजीद मजबूत करेगा।
3: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
2: रामपुर के बाद वजीर आला ने बरेली में तरक्याती काबों और अमन अमान का जायजा लिया। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत रोजगार गारंटी और रोजी रोटी मिशन देही VBG रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो गया है। इसके मुल्कगीर निफाज की माकबल शब पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी अहल देही मजदूर एक दिन के लिए भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुनासिब माली वसायल दस्तयाब करा दिए गए हैं, अमल दरामद का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैयार है और चल रहे काम बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। जनाब चौहान ने कहा कि 125 दिन की तनख्वाहदार मुलाजमत की बढ़ाई गई गारंटी देही माश को मजबूत करेगी। ये एक्ट हर एक अहल देही कुनबे के लिए कानूनी तनख्वाहदार रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करता है। मुतादी बीमारियों पर काबू पाने की मुहिम आज रियासत के तमाम अजला में शुरू हो रही है। इस मुहिम के तहत तकरीबन एक दर्जन सरकारी महकमे पूरे महीने में मुतादी बीमारियों की रोकथाम से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत और मुनज्जम करेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने देही इलाकों के शहरियों को राहत फराहम करते हुए एक अहम कदम उठाया है। अब रियासत भर के तमाम गाँव सेक्रेटरियटों में लेखपाल बाकायदगी से दस्तयाब होंगे। इस कदम का बुनियादी मकसद गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप के अहद को पूरा करते हुए रेवेन्यू सर्विसेज को आसान, तेज़तर और ज़्यादा शफाफ बनाना है। इस हुकूमती फैसले से देही इलाकों के शहरियों को अब गैर ज़रूरी तौर पर छोटी और बड़ी रेवेन्यू खिदमात के लिए तहसील हेडक्वार्टर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आज से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर के नाम से रियासत गिर मुहिम शुरू कर रहा है। इस मुहिम में दफ्तर सतह से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल गाड़ियों के लिए मैनेजरों और प्रिंसिपलों को नोटिस या फोन के जरिए अलर्ट किया जाएगा कि वो जुलाई के पहले हफ्ते तक 100% स्कूली गाड़ियों का फिटनेस कराएं और दुरुस्त परमिट हासिल करें। मानसून रियासत के तकरीबन तमाम अजला में पहुंच चुका है। मानसून की बारिशों के आगाज से गर्मी की शिद्दत से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर समेत कई अजला में कल से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में

कार्यक्रम घर संसार सुनने वाली हमारी सभी बहनों को आपकी बहन वर्षा की राम राम। और कैसी हो बहनों? और घर परिवार में सब राजी खुशी तो हैं? हाँ बहना, देखिए मेरे घर में भी सभी अच्छे हैं। और मैं तो थारी बस खुशी देख के बड़ी खुश हो जाऊं। और जब यू हो ना तुमसे सबसे मिलना, हाय जी इतना ही खुश हो जा कि आज तो अपनी बहनों से बातें करूंगी। और जी तुमसे तो बातें करके जीना भरता मेरा कभी भी। अब मैं क्या करूं, यो जो टिक टिक घड़ी चले है ना, इन्हू कह दे बस थोड़ी देर की चे है बात, ज्यादा तुम बहुत ही बात करो बहना। ये तो बहना बात तो हम बहुत सारी करेंगे, और पहले उससे कुछ जरूरी संदेश भी सुन ले हम।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: हाँ तो बहनो, अभी मैं क्या कह रही थी, वो हाँ सब सुखाजी खुशी है बहना। आज थोड़ी सी बारिश सी पड़ी तो चैन सी पड़ी, नहीं तो वो क्या चल रही थी, वो सब बोल रहे थे वो हीट बेब सी जो चल रही थी, उससे कितनी गर्मी हो रही थी। अब बहना बच के रहना जरूरी, कभी आँख दुखने आ जा गर्मी से, कभी खुज हो जा। और तुम्हें एक बात और पता, आज क्या दिन हैगा? आज मना रहे हम सब मिलके राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। और यो दिवस बहनों पता, डॉक्टर हमारी जो बीमारी का इलाज ना करे है ये बहना, वो तो हमारे दुख से निकालने में भी तो हमारी मदद करे है, और तभी तो हम जल्दी से ठीक हो पावे हैं। अन्ना तो बहना बस ही वही सोचते रहे, हे रे मुझे बुखार हो गया, कैसे ठीक होंगी। और डॉक्टर जो है, कुछ जरूरत ना, दो गोली खाओगी मैं ठीक हो जाऊंगी। अब यूं कहना हो और हमने चंगी से उठ जाऊँ फिर। और डॉक्टर का मन बड़ा ही कोमल हो है, और वो अपने ज्ञान से, विज्ञान से, अपनी जो भी उनने मेहनत करी उससे हमारे सारे दुख दर्द को, एक मिनट में पीड़े को, सारी पीड़ा को खत्म ही कर दे है। और जब डॉक्टर कहे सब ठीक हो जाएगा, बस ईश्वर के दर्शन हो जाएं भिन्ना सामने, ऐसा लगे कि भगवान ही खड़ा हमें बचाने को। और डॉक्टर अपने परिवार से पहले हमें समय दे है, उसे कितनी देर हो रही है, कभी यो ना कहता ना बाद में आइयो जी, नहीं जी पहले बैठो, पहले तुम्हें ही देखूंगा, यही तो बात हुए है। तो इसलिए हमारा भी तो फर्ज बने है एक दिन उनके लिए हम कम से कम उन्हें याद करें, उन्हें सम्मान देवें। और बहना एक बात और है कि डॉक्टर जो है अपने मरीज की पूरे मन से सेवा करे है, और उसका काम यो है, यो सोचा कि बस यो जल्दी से ठीक हो के अपने घर जा। और यो ही उसका विश्वास, उसकी दवाई और हमारा भी उस पर विश्वास, वो हमें ठीक करने में मदद करे है। और बहन एक देश उसके जो है, उसके लिए उसके डॉक्टर उसके सच्चे सेवक हुए हैं, जैसे बॉर्डर पे वो रहे हैं ना सिपाही, ऐसे ये भी अंदर से अंदर के लोगों को ठीक रखे हैं, और जो डॉक्टर ही तो हैं जो हमें ठीक रखे हैं, और हमें हमेशा उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। एक डॉक्टर जो है वो जब डॉक्टरी करके आवे तो वो समाज सेवा की ही सबसे पहले शपथ लेके आवे है, और उसका सच्चा धर्म वो है मानव सेवा करना, है ना, लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना। तो जब वो हमारे इतने सम्मान करें हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कान ला, हमारी बीमारी को ठीक करें, तो एक दिन हमारा भी बने है उन्हें सम्मान देने का। तो इसलिए आज सभी डॉक्टरों को हम सारी बहनों की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आप इसी तरह से जी सेवा करते रहो। तो बहना अरे आज वो है, आज तो बुधवार है पहला, हाँ अरे आज हो है वो हमारा कर्म, पहला बुधवार को बात थारे मन की। और बहना आज मैं गई थी, गई हूँ कहाँ पे देखो तो जरा सुनेंगे, कहाँ की, इस्लामपुर दास की, और विषय है बदलती जीवन शैली और हमारा स्वास्थ्य समस्या क्या क्या हो जाऊं, उस पे बात कर रही। तो चलो बहना सुन ले जरा। आज हम आए हैं बिजनौर के पास गांव में, उस गांव में कुछ महिलाएं हमें मिली, उन्हीं महिलाओं में एक महिला से हम सबसे पहले बात करते हैं। आपका नाम क्या है?
3: तारा राजवंशी।
2: आंटी जी आप एक बात बताइए, जो पहले समय था और आज का समय है, उसमें आपको कैसा लगा, क्या कुछ बदलाव आए हैं हमारे पहनने में, ओढ़ने में, घूमने फिरने में, बाहर काम करने में, क्या क्या हमारी जीवन शैली जो है बदली है, क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगी हमें?
3: सर्विस भी बहुत करने निकल गई हैं महिलाएं।
2: तो जो सर्विस करने निकली हैं वो अच्छी बात है या गलत बात है, मतलब आप क्या उसे नारी सशक्तिकरण से जोड़ के बता सकती हैं कि मतलब महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो अच्छी बात है या गलत बात है?
3: देखिए घर के बजट के लिए तो महिलाएं अगर बाहर निकल गई हैं सर्विस करती तो ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकती, उन्हें लाड़ प्यार नहीं दे सकती, उनकी देखभाल भी नहीं कर सकती।
2: अच्छा तो आपका मतलब है कि जो महिलाएं बाहर निकल जाती हैं तो वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती। अच्छा तो जो ये बाहर का आज का हमारा खान पान हो गया है, तो उससे क्या हमारे जो है स्वास्थ्य में भी कुछ अंतर आया है आज के खान पान से?
3: पहले बहुत अच्छी तरह पौष्टिक खाना पीना होता था, साधारण रहता था वो खाना पीना, आजकल कोई पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं बच्चे, ना बड़े लेते हैं ना टाइम मिलता उनको।
2: अच्छा, तो जो ये बच्चे बाहर का खाना खाते हैं, देखने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा बाहर की चीजें खाने लगे हैं, वो अच्छा है?
3: देखिए, जितना पौष्टिक घर का खाना पीना होता है उतना बाहर का नहीं होता, वो शरीर को नुकसान करता है।
2: मतलब आपका यह है कि बाहर की चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, घर में बनी चीजें खानी चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल, अपने घर में ही चाहे जैसा भी बना के खाइए, वो पौष्टिक होता है और आपके शरीर को भी फायदा देगा।
2: अच्छा, तो आंटी जी आप एक बात और बताएंगी, कभी कोई जॉब वॉब की है क्या आपने?
3: हाँ देखिए, मैंने जॉब की है, शादी से पहले ही की थी। उसके बाद में जो बदलाव आया है और परेशानी आई है, वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी आई है। मैं अभी कह भी चुकी हूँ कि बच्चों को हम प्यार नहीं दे सकते हैं, ना उन्हें ठीक से पाल सकते हैं, खिला पिला सकते हैं, ना उन्हें बढ़िया संस्कार दे सकते हैं। सुबह आए, शाम को उन्हें सुला दिया, खिला दिया, पिला दिया, बस।
2: अच्छा, तो कुल मिला के ये बात है कि जो जीवन शैली है वो नौकरी करने से बदल जाती है। अगर हम घर में रहती हैं तो माएं ज्यादा ध्यान दे पाती हैं, लेकिन आपने कहा कि जरूरी भी है नौकरी करनी, क्योंकि आजकल दोनों अगर नौकरी करते हैं या दोनों जने मिलके जो है काम करते हैं तो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके प्यार को भी अपने से वंचित कर देते हैं। आपका कहने का मतलब ये है। तो आप आज के बच्चे जो हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरह से अपने परिवार को लेके चलें?
3: देखिए, अपने परिवार को अच्छी तरह से देखने के लिए हमें दोनों का ही सहारा लेना पड़ता है।
2: और क्या संदेश देना चाहेंगी कि आपका जो खान पान है क्या कहेंगी आप, कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए?
3: हाँ, घर के खाने में बहुत पौष्टिक होता है, कुछ भी बनाइए वो सब बढ़िया होता है। बाहर का जो है वो ठीक नहीं होता, उसमें कीटाणुओं के भी थोड़े थोड़े अंश चले जाते हैं, बच्चों को नुकसान देते हैं, ऐसा खाना नहीं चाहिए।
2: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका। और चलिए, अब एक और बहन हमारे साथ बैठी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं।
4: मेरा नाम कमलेश है।
2: राम राम आंटी जी।
4: राम राम।
2: मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आप अभी इस समय देख रही हो कि आपके समय में और इस समय में बहुत अंतर आ गया है, तो आपको क्या अंतर नजर आ रहा है कि जिसकी वजह से हमारी जीवन शैली भी बदल गई है और उस जीवन शैली के बदलने से हमारे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगी?
4: उसके लिए यही है, सबसे पहले तो हमारा जो रूटीन था, उठने का भी, सोने का भी, और जो हमारी दिनचर्या थी, वो सभी कुछ आज समय को देखते हुए बदल गई है। उसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पे वास्तव में काफी फर्क पड़ता जा रहा है। उधर मोबाइल और टीवी के चक्कर में बच्चे पड़े रहते हैं, खान पान है वो बाजार का फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत हमारी घर की बनाई हुई चीजों को। उसके साथ साथ जो व्यायाम था हमारा, हमारी सुबह से दिनचर्या में अपने आप ही हो जाता था। वो हमारी खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, हाथ से खाना भी बैठ के बनाना है तो बैठ के पेट पे भी जोर पड़ता था, उसके हिसाब से हमारा काफी व्यायाम जो है वो अपने आप ही हो जाता था, हमें फिजियोथेरेपी कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
2: अच्छा, आप और क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह की जीवन शैली बदल गई हमारी?
4: बदल तो सारा ही कुछ गया, रूटीन उठने का है, उठेंगे तो सबसे पहले ना भगवान का नाम लिया जाएगा, ना बड़ों से प्रणाम, नमस्ते, चरण स्पर्श, कुछ नहीं, मोबाइल हाथ में आ जाएगा बच्चों के, बस उसी से दिनचर्या उनकी शुरू होगी। उससे आंखों पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि चार चार पांच पांच साल के बच्चों के चश्मे लग गए, अब ये जो इन बच्चों के चश्मे अब लग गए हैं वो आखिर तक क्या करेंगे, सोचने की बात है माँ बाप के लिए। लेकिन माँ बाप अपना पीछा छुड़ाने के लिए जरा से बच्चों के लिए मोबाइल सुन देते हैं।
2: ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आजकल मोबाइल जो है ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हो रहा है, उसकी रेज बहुत खराब है जो बच्चों को कहीं ना कहीं उनके शरीर पे भी प्रभाव डाल रही है। और आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह की जीवन शैली है? जैसे आपने अभी कहा कि सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, क्या कारण था? पहले आपके समय में क्या होता था?
4: हमारे समय में ये था कि एक तो पहले माँ बाप ही जल्दी उठते थे, जब वो उठते थे तो हमें भी अपने साथ ही उठाते थे, उसके बाद बल्कि हमारे पिताजी, तो ये था सुबह उठे प्रार्थना की, जैसे स्कूल में प्रार्थना होती है वो हमारी सुबह को उठ के अपने साथ कराते थे, तो वो कराते थे तो हमें भी वही आदत पड़ती चली जा रही है। लेकिन आजकल तो जब माँ बाप ही 10 बजे तक उठते हैं, उन्हें इस चीज़ के लिए मौका चाहिए, और फिर बच्चों को उन्होंने मोबाइल दे के अपना पीछा छुड़ाने के लिए सबसे ज़्यादा फायदा उन्हें यह है कि वो उनके साथ अपना टाइम नहीं बिताते हैं।
2: तो क्या इस जीवन शैली के बदलने से बच्चों के या बड़ों के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है?
4: स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ता है, वो उन्हें माँ बाप को ही सेट करनी पड़ती है, माँ बाप अपना टाइम नहीं दे पाते।
2: सभी का यही कहना है कि बच्चों को आजकल के माता पिता जो है समय नहीं दे रहे, जिस वजह से ना तो बच्चों में संस्कार आ रहे हैं और हम बहुत हद तक अपने से उन बच्चों को दूर भी कर रहे हैं। लग रहा है कि जिस वजह से बच्चे मोबाइल से जुड़ रहे हैं तो उनके अंदर शारीरिक विकार भी उत्पन्न हो रहे हैं। उनके खान पान के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जिससे उनकी जीवन शैली बदल गई है?
4: उनके खान पान के लिए ही है कि माँ बाप को ही बदलना पड़ेगा, सुबह से शाम तक उन्हीं को उनके दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ेगा, क्या वो खा रहे हैं। फास्ट फूड आजकल चल गया है, उसको उन्हें दूर रखना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, जो सभी से ये बात करी तो सभी का यही कहना है कि जो बाहर का खाना है ये बहुत हद तक हमें हानिकारक है, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी। अच्छा, जो ये आजकल की, जैसे आप अब गांव में रहती हो तो सभी लोगों ने बोला भी कि भाई लड़कियां काम कर रही हैं, तो आज की लड़की में और पहली लड़की में क्या अंतर था शिक्षा को लेकर?
4: पहली लड़की में और आज के, पहली लड़की को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, इसलिए उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता था। जब वो बाहर निकली है शिक्षा के क्षेत्र में जाके, तो उसको पूरी आज़ादी ये मिल गई कि वो अपने दिमाग विकास कर सकती है, और उससे काफ़ी उसके दिनचर्या में भी और आसपास के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन आना चाहिए।
2: चलिए, तो आपका कहना यह है कि शिक्षा ने बहुत बड़ा परिवर्तन कराया महिलाओं को लेकर, जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो गई हैं और वो अपना एक मुकाम हासिल कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका क्या नाम है?
5: मेरा नाम अंजू मित्तल है।
2: अच्छा, तो अंजू जी राम राम।
5: राम राम जी।
2: अंजू जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे आप गांव में भी रहती हो, तो गांव में आपको क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि पहले की जीवन शैली में और आज की जीवन शैली में आपको कुछ अंतर लग रहा है, या पहले जैसा ही है कि जैसे पहले गांव की महिलाएं रहती थी उसी तरह से रहती है, या कुछ अब उनमें बदलाव आ गया है?
5: आज की जीवन शैली और पहले की जीवन शैली में काफी अंतर है। शिक्षा का अंतर है, एक तो पहनावे का, तकनीकी जीवन शैली का बहुत अंतर आ गया है। पहले की शिक्षा तो ऐसी होती थी, बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं रहती थी, कहीं कहाँ विद्यालय जाना ये नहीं पता रहता था। अब तो बहुत अंतर आ गया है पहले और अब में। अब तो बच्चे कहीं भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए।
2: तो क्या आपके गाँव से लड़कियाँ बाहर पढ़ने जाती हैं?
5: हाँ हाँ, अब तो जाती हैं हमारे गाँव से लड़कियाँ पढ़ने के लिए। पहले नहीं जा पाती थी, अब तो जाती हैं। अब तो स्कूटी से चली जाती हैं, बस से चली जाती हैं, किसी से भी चली जाती हैं। अब तो काफ़ी सुविधा हो गई है जाने आने जाने की, पहले नहीं होती थी।
2: तो आपको मतलब कि अच्छा लगता है कि बच्चों में चेंज आया है, या वो पहले वाला ही समय आपको अच्छा लगता था?
5: अब तो बहुत बच्चों में बहुत चेंज आ गया।

0: या पहले इसकी अपेक्षा अब तो बच्चे कहीं भी जा सकते हैं, स्कूटी से भी, बस से भी, अपना व्हीकल ले लेते हैं, उससे कहीं भी चले जा सकते हैं, लेकिन पहले तो नहीं जा सकते थे बच्चे ना।
1: अच्छा, तो क्या लड़कियों को आत्मनिर्भर जो लड़कियां हो गई हैं वो अच्छी बात है, या पहले जो दादी नानियां बोलती थी कि घूंघट में रहना है ना, घूंघट नहीं हटाना है, घूंघट में काम करना है, साड़ी ही पहननी जरूरी है और चूल्हे पे ही बनाना है, तो क्या इस जीवन शैली में भी आपके परिवर्तन आया है?
0: वो आपने जो बताया उसके हिसाब से महिलाओं में बहुत अंतर आ गया है, लेकिन हमें अपने हिसाब से ही चलना चाहिए, वैसे नहीं, पुरानी सोच नहीं होनी चाहिए। जैसे पुराने लोग कहते थे कि यही मतलब साड़ी में ही जाना है, ऐसा करना है, वो नहीं होना चाहिए। हम कैसे भी जा
1: मतलब
0: सकते हैं,
1: आपके गांव में अब चेंज आ गया है,
0: बहुत ज्यादा
1: महिलाएं सूट
0: चेंज।
1: पहनने लगी हैं
0: हाँ
1: कि साड़ी ही पहनती हैं?
0: नहीं, महिला अब तो सूट ही पहनने लगी, सब कुछ पहनने लगी है, पहले नहीं होता था, अब तो बहुत काफी अंतर आ गया है।
1: तो मतलब ये अच्छी शुरुआत है।
0: हाँ जी, ये बहुत अच्छी शुरुआत है हमारे देश के लिए।
1: अच्छा, तो मतलब महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, वो भी अच्छा लगता है आपको कि वो नौकरी करने जाती हैं आपके गांव से
0: हाँ,
1: महिलाएं?
0: बहुत जाती है नौकरियां करने हमारे गांव से, तो अब तो लड़के भी जाने लगे, महिला भी जाने लगी, सभी जाने लगे हैं, अच्छी बात है ये बहुत।
1: अच्छा, तो आप क्या काम करती हैं या फिर अपने घर को ही संवारती हैं?
0: घर को ही संभालते हैं अभी तो, हम बच्चों
1: अच्छा
0: को पढ़ाई करा लेते हैं बच्चे के लिए।
1: अच्छा तो एक बात और बताइए कि जो आज का खान पान है आपको कैसा लगता है, वो अच्छा है या पहले की तुलना में खराब होता जा रहा है?
0: खान पान तो बहुत बेकार होता जा रहा है, पहले खान पान ज्यादा अच्छा था, अब खान पान अच्छा नहीं है, अब तो बच्चे ज्यादातर फास्ट फूड पे ही डिपेंड रहते हैं, खाना नहीं खाते, घर का खाना तो पसंद ही नहीं करते बच्चे तो। लेकिन पहले के लोग घर का खाना खाते थे तो स्वस्थ रहते थे, अब जो बाहर का खाना खाने लगे ना तो स्वस्थ नहीं रहते।
1: आप भी जैसे एक गांव से आई हैं और दूसरे गांव में आई हैं, या फिर किसी शहर से आप गांव में आई हैं,
0: वो तो हम किसी शहर से ही गांव में आए हैं।
1: तो आपको यहाँ कुछ अंतर लगा या अच्छा लगता है? वैसे मुझे तो लगता है कि जैसे गांव का खुला वातावरण है, शहरों में भीड़ भाड़ सी है, तो उससे गांव का परिवेश ज्यादा अच्छा लगता है कि आपको अपने शहर का अच्छा लगता था?
0: इससे तो गांव का ज्यादा अच्छा लगता है,
1: और
0: ये
1: स्वास्थ्य सुविधाएं?
0: स्वास्थ्य सुविधाएं भी शहरों में ज्यादा अच्छी हैं।
1: अच्छा, तो जो हमारा ही खान पान बदला है, थोड़ा सा मौसम भी बदला है, थोड़ा आप देख रहे हो कि इस समय पेड़ पौधे ज्यादा नहीं लगे हुए हैं, तो क्या उससे स्वास्थ्य समस्याएं भी हमारे अंदर आती जा रही हैं?
0: बहुत अधिक आती जा रही हैं उसे स्वास्थ्य समस्याएं, तो जैसे कैंसर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत नई नई बीमारी आती जा रही है, पता नहीं लगता कि कौन सी बीमारी किस समय आ जाती है शरीर में। इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अच्छे से अच्छे अपना अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और
1: अच्छा, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि हमें अपने, है ना, अपनी जीवन शैली को कैसे बदलना है और कैसे शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है?
0: हमें ये बताना है कि जैसे ऐसी होती हैं कि अपने घर का कचरा निकाल के बाहर फेंक देती हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने घर को हम तो साफ रखते ही हैं, बाहर का वातावरण भी साफ रखना चाहिए, आसपास पौधे लगाने चाहिए और नालियां साफ करनी चाहिए, बहुत काम है ऐसे, हमें बहुत अच्छे से काम करना चाहिए इससे कि हम आगे स्वस्थ रह सकें।
1: अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए?
0: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अधिक पौष्टिक आहार लेना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम स्वास्थ्य
1: बहुत बहुत
0: स्वस्थ रहें।
1: धन्यवाद अंजू जी, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और आसपास का काम भी करते रहना
0: हाँ जी,
1: चाहिए,
0: हाँ
1: जैसे
0: जी,
1: घर की सफाई करते हैं
0: हाँ,
1: वैसी बाहर की सफाई
0: बाहर की
1: भी
0: सफाई
1: हमें करनी चाहिए।
0: करती रहनी चाहिए।
1: चलिए, तो फिर आगे हमारे साथ एक और हमारी बहन है, पूछते हैं पहले उनका नाम। आपका नाम क्या है बहन?
2: सुनीता देवी।
1: अच्छा सुनीता जी, अच्छा आप सब लोग यहाँ बैठे हो, अच्छा लगता है गांव में तो सब लोग मिलके बैठते हैं। अच्छा, एक चीज आप बताएंगी कि आजकल जो है हम देख रहे हैं कि बीमारियां ज्यादा फैलती जा रही हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है कि बीमारी क्यों फैल रही है? रहन सहन में कुछ चेंज आया है कि जिस वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं?
2: हाँ बस ऐसा है, जब गंदगी रह रही है, घेरू साफ नहीं रखते, कुछ नहीं रखते, इसलिए हो जाता है। पन्नी उन्नी आ गई हैं तो जानवर भी खाते हैं, एक बार तो एक गाय ने भी खा ली थी पन्नी, उसका गले का ऑपरेशन होया था, मुंजी उंजी भी, धान उन नहीं होता, कुछ नहीं होता, जहाँ पन्नी आ जाती है तो नालियों में पन्नी अटक जाए तो गंदगी भी फैलती है, उससे बीमारी भी हो जाती है।
1: अच्छा, तो क्या संदेश देंगी अपने आसपास की बहनों को, ये जो सब बैठी हैं, इन्हें क्या कहोगी कि हमें सफाई रखनी चाहिए और पन्नी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए?
2: हाँ बस ये है, आसपास सफाई हो अपने और पन्नी उन्नी का कम करो, बाजार जाओ तो थैला लेके जाओ अपने, और थैले में सामान ले आओ, बतेरे कपड़े हैं सिलाई करो हाथ से अपने ले आओ, तो अपने धो लो, गंदा भी हो जाता। इस पर कई बार तो पाबंदी भी लग गई है, लेकिन ये फिर भी आ गई है, पन्नी तो बहुत आ रही है ये।
1: तो क्या आपके गांव में जैसे लड़कियां हैं उनकी जीवन शैली बदली है, क्या उनमें कुछ बदलाव देखने के लिए मिला है? बहुएं आनी है नई, आपको अपने से पहले समय से और अब के समय में आपको भी कुछ बदलाव नजर आया होगा अपने अंदर?
2: हाँ आया तो है, लेकिन यो है अब जो लड़कियां पहले पढ़ नहीं थी, अब पढ़ने लगी हैं, सही हो गई।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

अभी अभी हमारी बहनों ने सुना अपना कार्यक्रम बात थारे मन की। अरे बहना बात तो देखो थारे मन की जितनी भी थी बड़ी अच्छी लगी हमें तो। और देखो जी पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी हो है। और बहन देखो तुम यूँ सोच रही होंगी ये बहना पकौड़ी तो बना ली और इसके साथ ही एक गाना भी हो जाए तो कितना ही अच्छा लगे। समझ में आ रही थी मुझे आवाज़ आ रही थी कतई थारी यू ही बोल रही थी अरे पकौड़ी के साथ एक गाना ही और हो जा। तो बहनों थारा तो हम बहुत ही ध्यान रखें और मौसम को देखते हुए थारे लिए गाना भी ऐसी लेके आए यार। तो लोकगीत और तमर हम मिलकर सुन लें वाला बढ़िया वाला।

हाँ भन्नो, तो देखो कितना अच्छा हमने लोकगीत सुना। अब तो थारी पकौड़ियों में स्वाद आ गया होगा। हाँ मुझे तो पता। ए भन्ना देखियो, पकौड़ियों से तो मुझे तो याद आई। ए भन्ना, आज पता क्या है? आज है हम मना रहे हैं आज वन महोत्सव। 1 सप्ताह लो चला है यो। और इसे देखो भन्ना, मैं तो यो जानू हूँ, बन है तो हम हैं और बनना तो हम बिना है। और जो देखो प्रकृति का कितना संतुलन बिगड़ रहा। और तुमने पढ़ा ना, आज आज तक तो सब जगह फैल रही। यूरोप के कितने देश जो गर्मी से, जो देखियो जो ठंडे मानने जाते, लोग घूमने जाते गर्मियों में, ये भिन्ना वहाँ इतनी गर्मी हो रही, बहुत ही घनी गर्मी हो रही। और सब परेशान हो रहे हैं, बड़ी गर्मी, बड़ी गर्मी, कितने लोग मर रहे हैं भिन्ना। उससे हमें सबको तो बचना ना, ऐसी ऐसी परिस्थिति ना आवे हमारे में। तो इसलिए हमें सबको काम करना इस पे। और क्या काम करना? हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने। अब है ना, मैं तो यो कहूँ, हमारे घर में शादी हो, ब्याह हो, जन्मदिन मना, शादी की सालगिरह मना है, कुछ भी अच्छा काम हो, एक अच्छा सा पेड़ लगा दो। और जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होगा, यो कहो जी हमारे घर में दुगनी खुशियां हैं, उससे पेड़ बढ़ता जाएगा। और पेड़ की तो नेचर हो गए, जैसे कह मैं वो, अरे वो भन्ना मेरे बालक भी ऐसी बोल रहे हैं ना वे, कि पेड़ तो हमें देवे ही है, हमसे क्या ले इनू, क्या जी बजरा सा पानी देते रहो। और झा उनने नीचे जमीन में गुजड़ पकड़ी, देखे पानी बिना मांगता, और कितना बढ़े लहला के जावे। और बारिश का मौसम आ रहा बहन ना, देखियो सबके घरों में जामुन भी खा रहे, आम भी खा रहे, और भी फल खा रहे, आलू बुखारे, चीकू, दुनिया भर के फल आम है, दुनिया भर के बीज हो रहे हैं। उन्हें सबको मिट्टी के गोले बना लो और उनमें दबा दबा के जब भी कहीं को गए जंगल में को डाल दो, और खेतों की मेड़ पे को लगा दो। और बहना देखिए बारिश में सब उग जाओ, और मिट्टी में को लगा तो बढ़िया सा हो जाओ, उससे हमारा पानी भी बचे, मिट्टी की ना कटती, और पानी रुके है जमीन लो जाओ, नहीं तो बह के कहीं का कहीं चला जा है यो। तो इसके लिए भी तो हमें काम करने की जरूरत है या ना है। और बहन एक बात सुनो, जब आप यो जो सोचो कि जब ऐसी ऐसी गर्मी पड़ रही और सब इतनी गंभीर रूप ले रही, तो क्यों ना हम करते सब शुरुआत अपने आसपास भी पेड़ लगाओ है। अरे क्यों ये कंक्रीट के जंगल बना बना के खड़े कर रहे हैं हम, थोड़े से में रह लो। ए ना, ए चार भैया तो चार ही मकान बनाएंगे। ए भैया एक ही जगह रह लो, परिवार मिलके रहेगा, और उस जगह में बच्चे में अपने फल फूल लगाओ और कुछ ही बो, और सारा परिवार मिल के बैठ के खाओ, और ऐसी तो हरित क्रांति आवेगी वो, और सारे में को हरियाली फैलेगी, है कि ना है बहन ना। और देखो बहन, अपने बालकों को भी सिखाओ पेड़ों से प्यार करना, जरूरी हो है। जितना हम पेड़ों से प्यार करेंगे, पेड़ तो हमें देवे ही हैं, ले में क्या है, ऑक्सीजन भी मिले हमें है। और पानी को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। बच्चों को सिखाओ कि तुम अगर बरस भी कर रहे हो सुबह को, तो एक मग्गा पानी लेकर बैठो, यो क्या टंकी खोल के खड़े हो जाए, तो पानी भी तो बचाना पड़ेगा। जल जल है तो जीवन है, यो तो बोल रही है। ऐसे ही पेड़ हैं तो हम हैं, इनके बिना कुछ नहीं है। और सबको इनके लिए आसपास में, जैसे हम बैठ जाएं सारी औरतें दोपहर में को, तो आपस में इसी बात की चर्चा कर लो। और पॉलीथीन वालीथीन जो हो, पन्नी पुन्नी इतनी चल रही, उसे भी हटाओ। क्यों लाना, झोले सिल लो अपने घर के, बतेरे झोले सिलने आवे हमें तो सबको। और उनमें बुलाया करो सब्जी वब्जी सी भी, और जो भी लानी, क्यों करनी हमने ऐसे काम। और चार छोटे छोटे झोले से बना लो, एक बड़े झोले में को अलग अलग सामान लाना यूं करके रख लो। तो हमें इस पे बहुत जरूरी है काम करने की। तो बहन्ना मैं तो यही कहूँ, अपनी पृथ्वी को हमें और अपने ब्रह्मांड को बचाना है। और यो पृथ्वी एक ही ना है, यो कभी मेरे देश की और तेरे देश की, पूरी हम सबकी, और वो हम सबकी जिम्मेदारी है इसे हरा भरा रखना और इसे सुरक्षित रखना। तो बहनों आज मैं तो नहीं कहूंगी, हम सब मिलकर एक शपथ ले हैं कि हम अपने देश को, अपने पूरे विश्व को हरा भरा रखेंगे, और सब बच्चों को भी यही सिखाएंगे। तो बहना

को हमारा कार्यक्रम यू कैसा लगा यू भी बताना, तो मैं चिट्ठी लिख के, हाँ मैं सबकी चिट्ठियाँ पढ़ूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, फिर ऐसा लगा जैसे कि आमने सामने बात कर रहे हैं हम, वैसे तो अब बीए कर रहे हैं हम तो। और तो भैया चिट्ठी लिखने के लिए पता तो लिख लो। हाँ देखिए घर की बात करने में तो बात ही भुलवा दो तुम तो। तुम्हारा पता है कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, नजीबाबाद, पिन 2467। तो भन्नो चिट्ठी लिखनी भूलियो ना। तो चलो भन्नो करें हम तुम सबको राम राम और मिलेंगे अगले दिन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरीश सिंह मेहरा के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम लोकधारा में इस समय आप सुन रहे हैं हरीश सिंह मेहरा के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। अगला लोकगीत सुनवाने से पहले श्रोताओं, आपको पुनः बता दें कि आज दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम संदेश.com। इस कार्यक्रम में पूछे गए प्रश्नों का व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उत्तर देकर आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और मैसेज करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। तो दिन में 2:30 पर सुनना ना भूलें कार्यक्रम संदेश.com, क्योंकि श्रोताओं, हमें आपके संदेशों का रहेगा इंतज़ार। और इसी के साथ चलिए अब कार्यक्रम लोकधारा को आगे बढ़ाते हैं और अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक और, या फिर यूँ कहें, आज के कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत। कलाकार हैं हरीश सिंह मेहरा।

0: launched on 1st of July 2017, this day is marked as a historic achievement in India's reform journey. GST subsumes 17 different taxes and 13 cesses into a common framework. Meanwhile, GST collections in the month of June witnessed a rise to 1,94,812 crore rupees, marking a 13.9% year-on-year increase from 1,71,105 crore rupees in corresponding month last year. Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana PMKSY has also completed 11 years today. Launched on the 1st of July 2015, PMKSY scheme has assured irrigation, improved on-farm water efficiency and promoted sustainable water conservation across the country. Over the past decade, it has strengthened irrigation through rainwater harvesting and efficient farm-level water distribution under rainwater storage and efficient water application. The latest passport application height fee has been implemented under the Passports Amendment Rules 2026 from today. Under the revised fee structure, a 36-page fresh passport or reissue of a passport will now cost 2,500 rupees. The fee for a 60-page ordinary passport or its reissue has now been fixed at 3,500 rupees, while under the Tatkal scheme, it will cost 6,000 rupees. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. President Draupadi Murmu today called upon the youth to pursue excellence with dedication, integrity and strong ethical values to help realize the vision of a developed Bharat by 2047. Addressing the first convocation of the Central University of Andhra Pradesh at Anantapur, as the chief guest, the president said, the energy, talent and commitment of the young people will play a decisive role in building an inclusive and prosperous nation.
1: Students, as you celebrate your achievements today, I urge you to pause for a moment to remember the people who made your journey possible. Your success is the result of your own hard work, but it has also been shaped by the sacrifices of your parents, the guidance of your teachers, and the support of society. Therefore, you have a responsibility to give back to the society.
0: The president noted that girls outperform boys in securing the medals, reflecting the growing aspirations and determination of young women in the country. She urged the graduates to continue learning throughout their lives and urged the students to use the knowledge for the benefit of society, particularly the underprivileged. Newly appointed Chief of Army Staff General Dhiraj Seth has stressed the need to advance the modernization of the army to tackle the challenges of the evolving security environment. Addressing the media today after assuming charge as the 31st Chief of the Army Staff, General Seth highlighted that the Indian Army's objective is to build a technology-enabled, future-ready army that is empowered in every respect and capable of operating across multiple domains.
2: Our objective is to build a technology-enabled, future-ready army that is empowered in every respect and capable of operating across multiple domains. Keeping these objectives in mind and drawing attention from the guidance provided by the Defense Minister under the decade of transformation, I have identified my key focus areas. I have consolidated them into an acronym VIJAY, that is V-I-J-A-Y. Each letter of VIJAY represents one of my priorities and I will briefly outline them.
0: On the second day of the higher level assessment tour, Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju, accompanied by Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, conducted an aerial survey of flooded areas in the state today. The team first surveyed Pashighat in East Siang district, one of the worst affected regions, before visiting Boeing village to assess the damage on the ground. Flash floods and landslides have submerged more than 20 houses in the village and caused extensive damage to paddy fields, standing crops and livestock, leaving many families reeling from the devastation. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan interacted with the displaced villagers whose homes were destroyed. Reassuring the community, Chauhan promised comprehensive financial and structural assistance from the central government, executing relief operations in close synchronization with the state administration. So far, the death toll is 4, while 21 others were injured in the state, when 90,499 people were affected in almost all 28 districts. Following their evaluation in Arunachal Pradesh, Union Ministers Chauhan and Rijiju crossed over into neighboring Assam to inspect flood-ravaged sectors in that state. The Indian Meteorological Department, IMD, has said that the southwest monsoon is likely to advance over Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. The IMD has also issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall conditions over Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Odisha and Vidarbha during the next 2 days. Similar conditions also expected over parts of Chhattisgarh, coastal Karnataka, East Madhya Pradesh, Kerala and Mahe, Konkan and Goa and South Interior Karnataka today. The Met Department has also predicted thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds at isolated places over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, East Rajasthan, Gangetic West Bengal and Andaman and Nicobar Islands till tomorrow. The Maharashtra Secretariat has issued a warning of heavy rainfall at isolated places in Mumbai City, Mumbai suburbs, Palghar, Thane, districts over the next 3 hours, urging citizens to remain alert and take necessary precautions. Afghanistan's Ministry of Defense has said its forces carried out airstrikes against ISIS-linked targets in Pakistan. It said the attacks were carried out last night in Pakistan's Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa provinces. The strikes inflicted heavy casualties and significant financial losses on ISIS and its supporters. It added that the attacks were carried out with high precision against designated targets and caused no civilian casualties. The strikes came just days after 36 civilians, including women and children, were killed while 163 others were injured in Pakistani military airstrikes in Paktika and Kunar provinces of Afghanistan. National Doctors' Day has been celebrated today to honor doctors for their dedication, compassion and invaluable contribution to protecting and improving public health. The day is observed every year on the 1st of July to commemorate the birth and death anniversary of one of India's most respected physicians, Dr. Bidhan Chandra Roy. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted doctors across the country on the occasion. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has also extended greetings to the medical fraternity for his unwavering dedication. In a video message, Mr. Nadda lauded doctors across the country for the exemplary professionalism and compassionate service to humanity.
3: On the occasion of Doctors' Day, I extend my sincere appreciation and heartfelt gratitude to the medical fraternity for its unwavering dedication, exemplary professionalism and compassionate service to humanity. Doctors are the cornerstone of our healthcare system, tirelessly working to alleviate suffering, save lives and uphold the highest standards of patient care. Your selfless commitment and resilience continue to inspire the nation and strengthen our collective pursuit.
0: In FIFA World Cup, Mexico defeated Ecuador 2-0 in the round of 32 clash at the Mexico City Stadium this morning to qualify for the round of 16. Raul Jimenez and Julian Quiles scored for Mexico. This marked Mexico's first World Cup knockout stage win in 40 years. Earlier, Kylian Mbappe further enhanced his World Cup legacy to lead France to a comfortable 3-0 win against Sweden in the round of 32. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Norway has also sailed to the round of 16, beating Ivory Coast 2-1 in Texas. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of Digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions. Increased wages under Viksit Bharat G. Ram G. Act become effective from today. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju undertake aerial survey of flooded areas of Arunachal Pradesh. Newly appointed Army Chief General Dheeraj Seth stresses on modernization of army to tackle challenges of evolving security environment. Afghanistan attacks ISIS targets in Pakistan. Monsoon likely to advance to Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab in the next 2 days. And in FIFA World Cup, Mexico defeat Ecuador 2-0 to enter round of 16. And with that, we end the midday news.
4: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
5: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
6: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
7: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
4: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
7: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
4: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
8: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
4: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
8: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
4: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
9: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
10: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
4: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ यार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आईएसआईएस के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में आईएसआईएस और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 2:30 और 18 सेकेंड्स हुए हैं। पेश है श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम संदेश.com। कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज है बुधवार और आज हमारा खास कार्यक्रम होता है संदेश.com। आप जानते ही हैं कि आपके संदेशों को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं, जिससे हमारा कार्यक्रम रोचक बनता है। तो हमें मैसेज करने के लिए जल्दी से नोट करें हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारा नंबर है 9457078288 9457078288। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे गीत और गीत के साथ ही पूछेंगे आपसे एक सवाल। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपको देना होगा हमें उस सवाल का जवाब। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म का नाम है वक्त। शब्द रचना साहिल लुधियानवी की है और संगीत है रवि का। श्रोताओं, इतना काम तो मैंने कर दिया, आपको सिर्फ ये बताना है कि इस गीत को किस गायिका ने गाया है। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। अब जो गीत आप सुनने वाले हैं, आपको बताना है कि वो गीत किस गायिका की आवाज में है। तो पेश है गीत

0: श्रोताओं, गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था वक्त। सवाल हमने आपसे ये किया था कि इस गीत को किस गायिका ने गाया है, और सही जवाब है आशा भोसले ने गाया है। देखते हैं कि सही जवाब हमें हमारे किन किन श्रोताओं ने लिखकर भेजे हैं। ये है मुंबई से अनु वरजात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा। इसके साथ एक और श्रोता हैं जिन्होंने हमें सही जवाब लिखकर भेजा है। ये हैं बीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यूं ही बने रहिए। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कुछ ज़रूरी संदेश। और आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश.com। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। आपको बताना है कि इस गीत के गीतकार कौन हैं, यानी कि अब जो गीत श्रोताओं आप सुनने वाले हैं निश्चित तौर पर आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसके जो शब्द हैं वो सीधा दिल में उतरते हैं। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको बताना है कि इस गीत के गीतकार कौन हैं। फिल्म का नाम है शोर और आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। तो सुनिए ये गीत और दीजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमें उत्तर।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था शोर। हमने आपसे सवाल किया था कि इस गीत को अपनी कलम से सजाने वाले गीतकार का क्या नाम है, तो सही जवाब है संतोष आनंद। हमारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिखकर भेजे हैं। ये हैं गांव और पोस्ट राहुल नगली से आचार्य सत्यवीर सिंह जी, और इसके साथ ही ये मैसेज हमें मिला है सराय मीर स्ट्रीट नगीना से, और भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रईस अहमद राही, रविश अहमद राही, रुवेश अहमद राही, रिशान अहमद राही, रुजेज अहमद राही और रुशमान अहमद राही और इनका समस्त राही परिवार। आप सभी ने हमें मैसेज किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। कार्यक्रम अभी 3 बजे तक श्रोताओं चलने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ हम कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं एक और गीत। गीत है फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। आपको बताना ये है श्रोताओं कि जो फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा, इसमें देवानंद मुख्य भूमिका में थे। ये जो फिल्म है ये बहुत ही एक इमोशनल सी फिल्म है, और ये बेसिकली देखा जाए तो भाई बहन के रिश्ते पर आधारित है। आपको ये बताना है कि इस फिल्म में देवानंद की बहन का किरदार किस अभिनेत्री ने निभाया था। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में देवानंद की बहन का किरदार किस अभिनेत्री ने निभाया था। तब तक एंजॉय कीजिए ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना और हमने आपसे ये पूछा था कि इस फिल्म, ये जो गीत अभी आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से, और आपको ये बताना था कि इस फिल्म में देवानंद की बहन का किरदार किस अभिनेत्री ने निभाया है। तो सही जवाब है जीनत अमान। सही जवाब हमें लिखकर भेजा है नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से, शहजाद सिद्दीकी, अकबर भाई, फुरकान भाई और

अनुराधा पौडवाल के साथ किस गायक कलाकार ने गाया है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। अब जो गीत आप सुनने वाले हैं, उस गीत में अनुराधा पौडवाल के साथ किस गायक की आवाज है?

श्रोताओं, अभी आपने सुना जलाकर राख कर दूंगा फिल्म का ये गीत, और हमने आपसे पूछा था कि अनुराधा पौडवाल के साथ इस गीत को किस गायक कलाकार ने गाया था। सही जवाब है किशोर कुमार। सही जवाब हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लिखकर भेजा है नगीना से अनिल बिनोचा जी ने, और अनिल बिनोचा जी आपका शुक्रिया, आपने आवाज़ भी मेरी पहचान ली उसके लिए। इसके साथ ही हमारे श्रोता हमारे साथ हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू इस्माइल खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल और इनका पूरा परिवार। ये हैं सही मार्ग।

एट सिवहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी। ग्राम जुझैला थाना सिवाला कला से हमें ये मैसेज भेजा है राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, आलिया, साइना, महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर ने। आप सभी ने हमें सही जवाब श्रोताओं लिखकर भेजा है। एक मैसेज और लिए लेते हैं, ये मिला है हमें जिला बरेली ग्राम करेली से। हमारे श्रोता हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा शमीम और माहे नूर। आप सभी ने सही जवाब हमें लिखकर भेजा, इसके लिए आपका शुक्रिया। और कार्यक्रम में चलते चलते हम सुनवा रहे हैं एक और गीत, और आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है।

श्रोताओं, हमने आपसे सवाल किया था कि ये जो गीत अभी आप सुन रहे हैं ये हमने किस फिल्म से लिया है, तो उसका सही जवाब है, फिल्म का नाम है आया सावन झूम के। सही जवाब हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर भेजे हैं, ये हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, ये हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। इसके साथ ही हमारे श्रोता हैं ग्राम गदरौना से मदन लालगिरी और बिमला गिरी, इन्होंने भी हमें सही जवाब लिखकर भेजा था। इसके अलावा ये हैं संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी। आप सभी श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिखकर भेजे थे। सभी श्रोताओं को हमने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिया है, आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश डॉट कॉम, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। संध्याकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत।

मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आज जानकारी देंगे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के विषय में। योजनाएं हैं मिशन इंद्रधनुष और आयुष्मान भारत योजना। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी विशेष टीकाकरण अभियान है, जिसका उद्देश्य 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का 100% पूर्ण टीकाकरण करना है। इस योजना को मिशन इंद्रधनुष नाम देने का भी खास कारण है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे ही शुरुआत में 7 जानलेवा बीमारियों, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए था। अब इसके तहत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के अनुसार 11 से 12 बीमारियों के टीके मुफ्त लगाए जाते हैं। ये अभियान उन क्षेत्रों, झुग्गी झोपड़ी और दूर दराज के गांवों पर विशेष ध्यान देता है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से नहीं पहुंच पाती। जी हां, ये है नौनिहालों के स्वास्थ्य को सुरक्षा कवच देने और उनके जीवन को इंद्रधनुषी रंगों से सजाने के लिए भारत सरकार की एक अनूठी प्रतिबद्धता, मिशन इंद्रधनुष। कोई भी बच्चा छूटे ना, हर टीके की मिले खुराक, यही इस मिशन का संकल्प है, क्योंकि स्वस्थ बचपन ही सशक्त राष्ट्र की नींव है। अगर आपके आसपास कोई बच्चा या गर्भवती महिला टीकाकरण से वंचित रह गई हैं, तो उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं और मिशन इंद्रधनुष का लाभ उठाएं। मिशन इंद्रधनुष योजना के बाद मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में आइए बात करते हैं एक ऐसी योजना की, जिसने देश के करोड़ों परिवारों को बीमारी की चिंता से मुक्त किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना की। श्रोता मित्रों, बीमारी कभी बताकर नहीं आती है और गरीब परिवारों के लिए इलाज का खर्च अक्सर एक बड़ा बोझ बन जाता है। इसी बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत की शुरुआत की है। इस योजना के तहत देश के गरीब और कमजोर परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। गंभीर बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने, दवाइयों और जांच का पूरा खर्च सरकार उठाती है। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में आपको 1 भी रुपया नकद नहीं देना होता। सारा काम आयुष्मान कार्ड के जरिए डिजिटल और कैशलेस होता है। हाल ही में इस योजना का विस्तार किया गया है, जिसके तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, चाहे उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो। श्रोता मित्रों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी CSC पर जाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के पोर्टल पर अपनी पात्रता जांच कर ये कार्ड बनवा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने और अपने परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा का उपहार दें। स्वस्थ रहेगा भारत, तभी तो आगे बढ़ेगा भारत।

इसी के साथ मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं में मिशन इंद्रधनुष और आयुष्मान भारत योजना के विषय में जानकारी ली।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 5:10 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में।

शाम 7:32 पर कानून की बात कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम, हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर। थोड़ी देर बाद 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे युवावाणी। आज के आकर्षण होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज यूथ कनेक्ट और कहानी के उस पार। किसान भाई अपने कार्यक्रम कृषि जगत में आज सुनेंगे एपिदा द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में आयोजित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। हरित भारत की दिशा में सुदृढ़ कदम के रूप में वन महोत्सव विविधा में आपको सुनवाएंगे ये पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विकास कंडवाल। व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपीयर कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया लेकर आएंगे आपके लिए रात्रि 10:00। श्रोताओं ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के संबंध में। आइए अब एक नजर डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। वन महोत्सव पर विशेष काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे राजीव शर्मा कल प्रातः 6:45 पर। ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनिएगा कल प्रातः 7:32 पर। जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे प्रातः 9:15 पर। कल शाम 4:00 संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली केंद्र से ही कल रात्रि 10:00 रिले करेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कल दिन में 1:15 पर महिला जगत कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे वार्ता महिलाओं के लिए किचन गार्डन। वार्ताकार होंगी नीरज कुमारी। कल शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता जहर मुक्त खेती और व्यसन मुक्त व्यक्ति। महिपाल सिंह से बातचीत करेंगे जितेंद्र कुमार। जनपद बिजनौर के प्रमुख साहित्यकार विविधा के अंतर्गत ये वार्ता आपको सुनवाएंगे। वार्ताकार होंगे महेंद्र सिंह त्यागी।

रागिनी आपको सुनवाएंगे धरती गाती है कार्यक्रम में कल प्रातः 9:25 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 5:15 हो रहे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, और हो भी क्यों ना, महीने की शुरुआत ही इतने प्यारे मौसम से जो हुई है। और इस प्यारे से मौसम में भी अगर आपने हमारा यानी रेडियो का हाथ पकड़ा है तो दिल से आपका स्वागत है आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सलोनी के साथ प्रोग्राम युववाणी में।
1: बिल्कुल, और सलोनी के साथ लास्ट तक बनी रहूंगी मैं, आपकी अपनी दोस्त उज्मा। अगर आपका दिन थोड़ा सा थका देने वाला रहा है तो कोई बात नहीं, अगले कुछ पलों के लिए सारी टेंशन को थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए।
0: क्योंकि अब साथ होगा आपका और हमारा, बातें होंगी, मुस्कानें होंगी।
1: हाँ, एक से बढ़कर एक शानदार गीत भी होंगे।
0: तो आप जहां भी हैं, घर, ऑफिस, दुकान या सफर में, बस रेडियो का साथ बनाए रखिए।
1: क्योंकि अगले कुछ ही पलों में हम कोशिश करेंगे कि आपके चेहरे पर एक प्यारी सी खूबसूरत सी मुस्कान आ जाए।
0: तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत। कहते हैं कि किसी भी सफर की शुरुआत अगर अच्छे सुरों से हो जाए तो पूरा सफर यादगार बन जाता है।
1: तो फिर पेश है पहला सॉन्ग सिर्फ आपके लिए।
0: लेकिन दोस्तों, सॉन्ग सुनने से पहले हम आपको देते हैं एक टास्क, यानी हमारा बूझो तो जाने का क्वेश्चन।
1: बिल्कुल, तो हमारा हमारे दोस्तों से आज का सवाल है, चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था?
0: दोस्तों, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? जिसका सही जवाब आपको भेजना है हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर। फेसबुक अकाउंट पर आपको पता ही है। तो ये प्यारा सा सॉन्ग सुनिए और मिलते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: मैम, आपने सब पढ़ा दिया, लेकिन मुझे ना एक डाउट है।
3: डाउट है तो अपना डाउट क्लियर करो, पूछो किस चीज में डाउट है।
4: मैम, आपने कल वो गजल तो सुनाई थी, वो इतनी अच्छी भी थी, और जब हम सुबह प्रेयर में गए थे तो सर भाषण भी दे रहे थे, तो मैम मैं एक क्वेश्चन पूछूं?
3: हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
4: मैम, गजल और भाषण में क्या अंतर होता है?
3: अरे बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? चल तेरा ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। देख, पराई औरत का हर शब्द गजल है और अपनी बीवी का हर शब्द भाषण है।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
5: दोस्तों, इस प्यारे से सॉन्ग के साथ साथ मैं बनी हुई हूँ आपकी अपनी रेडियो पार्टनर सलोनी, और अब आपको लेकर चलते हैं हमारे वेंसडे स्पेशल सेगमेंट यूथ कनेक्ट की ओर, अपने यूथ से मिलने।
3: तो चलो सलोनी, चलते हैं स्टूडियो से बाहर।
6: हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट यूथ कनेक्ट में, जिसमें हम आ गए हैं अपने स्टूडियो से बाहर अपने कुछ यूथ से कनेक्ट होने। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज है वेंसडे और आज होता है हमारा सेगमेंट यूथ कनेक्ट, जिसमें हमारे होते हैं 4 सब सेगमेंट, गलत है तो सही है, हूबहू, समय की सैर और अरे दीवानो मुझे पहचानो। तो दोस्तों, हमें हमारे कुछ युवा साथी दिख रहे हैं, तो चलिए चलते हैं उनसे मिलने। आपका नाम?
7: मेरा नाम अमित कुमार है।
6: तो अमित जी, आप स्टडी में क्या कर रहे हैं, मतलब आपका प्रोफेशन क्या है? इस टाइम आप स्टूडेंट है या कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे हैं?
7: एक्सियम कैंपस, जिसमें हम सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं, वो चला रहे हैं।
6: तो मतलब आप वहाँ के मैनेजर हैं?
7: जी, मैं वहाँ का मैनेजर हूँ।
6: तो अमित जी, आप तैयार हैं हमारे सब सेगमेंट के लिए?
7: जी, हम तैयार हैं।
6: हमारा एक सब सेगमेंट होता है अमित जी, समय की सैर। उसमें हम आपको बता दें कि हम आपसे पूछते हैं कि अगर लाइफ आपको मौका दे लाइफ में 10 साल या 5 साल पीछे जाने का, ऐसा कोई रिग्रेट हो आपकी लाइफ में जो आप 10 साल पहले जाकर उसको पूरा करना चाहेंगे, लाइफ की कुछ ऐसी चीज जो छूट गई हो तो आप उसको पूरा करना चाहेंगे, तो वो आपकी लाइफ की क्या चीज है?
7: तो अगर मेरे को 10 साल पीछे जाना पड़े तो मैं चाहूंगा कि दोबारा जो हमारी स्कूलिंग लाइफ रही है, जो हमारे दोस्त रहे हैं बचपन के, मैं उनसे दोबारा मिलना चाहूंगा और उनके साथ दोबारा वो जिंदगी जीना शुरू करूंगा। तो जैसे कि मेरी फेवरेट क्लास रही है 9th to 12th रही है, जिसमें कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और सारे सीनियर साथी रहे हैं ये।
6: तो बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे सब सेगमेंट से जुड़ने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ हमारे एक और युवा साथी दिख रहे हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
8: मेरा नाम विजेंद्र कुमार है।
6: तो विजेंद्र जी, आप क्या करते हैं, मतलब आप भी एक टीचर हैं या इसके अदर कुछ?
8: हाँ, मैं अक्षम कैंपस में पढ़ाता हूँ, जिसके मैनेजर अमित सर हैं, फाउंडर मानसिंह सर हैं।
6: विजेंद्र जी, आप ही बताइए आपने स्टडी में क्या क्या किया हुआ है?
8: ज्यादा तो कुछ नहीं, मैंने बीएससी किया और पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है।
6: तो आपकी लाइफ का तो जरूर कोई ना कोई ऐसा किस्सा होगा जो आप अपनी लाइफ में पीछे जाकर जीना चाहेंगे।
8: हाँ, मैं मतलब मेरा मन नहीं था पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक एक्सीडेंटल कुछ केस हुआ, जिस कारण मुझे अभी एमएससी करना पड़ा, नहीं तो ऐसा कोई मन तो था नहीं।
6: तो अगर हम आपको मौका दे लाइफ में पीछे जाने का, तो आप कितने साल पीछे जाएंगे और अपनी लाइफ का कौन सा हिस्सा दोबारा रिक्रिएट करना चाहेंगे?
8: हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं अपनी लाइफ में 8 से 9 साल पीछे जाना चाहूंगा। और मेरी लाइफ का एक बहुत ही अशुभ दिन, जो मतलब 13 जनवरी 2018 में आया था, उस दिन मेरा हार्ट टूटा था, जिसकी वजह से मेरी CPSI की नौकरी छूट गई थी। तो मैं उस दिन क्रिकेट खेलने, मतलब अगर पीछे जाऊंगा तो मैं उस दिन क्रिकेट खेलने बिल्कुल नहीं जाऊंगा, उतना ही मैं पीछे जाना चाहता हूँ, बाकी सब कुछ ठीक था।
6: तो मतलब 8 से 9 साल पहले आपकी CPO में जॉब लग गई थी, लेकिन किसी कारण आप मतलब मैच खेलने गए तो आपका हार्ट टूट गया, तो आप जा नहीं पाए, तो आप लाइफ में वहां जाकर उसको रिक्रिएट करना चाहेंगे और जॉब ज्वाइन करना चाहेंगे?
8: बिल्कुल, हाँ सही।
6: तो आपको हमसे जुड़कर कैसा लगा हमारे सब सेगमेंट का पार्ट बनने के लिए?
8: नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये मतलब जो पास्ट टाइम से जो फीलिंग्स दबे हुए थे और जो मतलब मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इसे हो सकता है कि कुछ लोग सुने इस घटना को।
6: तो ये तो रही पास्ट की बात, अगर हम आपको एक और मौका दें कि लाइफ में 5 साल आगे आपको जाने का मौका मिले, तो आप अपनी लाइफ को 5 साल बाद कहाँ देखेंगे? आपसे मेरा दोनों से ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप ही बता दीजिए।
8: 5 साल क्या, आप देखो जैसे मतलब जैसा एज है तो सभी लोग ये चाहते हैं कि मतलब वेल सेटल्ड हो, बस सबका यही सपना होता है, बाकी एक नॉर्मल जीवन अच्छा से चलता रहे, ज्यादा कुछ इच्छा है तो नहीं है।
6: तो अब हम चलते हैं अमित सर के पास और पूछते हैं कि वो अपने आपको लाइफ में 5 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगे।
7: अगर हम 5 साल आगे जाएंगे तो हम अपने अक्षम कैंपस को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, जो कि हम लेकर ही जाएंगे।
6: सर बहुत बहुत थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे अगले सब सेगमेंट जो है गलत है तो सही है, और इसी के लिए हमें हमारे कुछ युवा साथी दिख रहे हैं, तो चलिए चलते हैं उनके पास, आगे बढ़ते हैं और हमें हमारे युवा साथी दिख रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
9: मेरा नाम मोंटी कुमार है।
6: तो मोंटी आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं?
9: इस टाइम तो मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ।
6: कंपटीशन में मतलब कौन सी जॉब की, कौन से एग्जाम को आप पर्पस मानकर ये प्रिपरेशन कर रहे हैं?
9: पुलिस की मान कर रहा था।
6: तो मोंटी जैसा कि आपको हमने बताया कि हमारा ये आज का सेगमेंट यूथ कनेक्ट, जिसमें हमारे 4 सब सेगमेंट होते हैं, गलत है तो सही है, हु बहू, समय की सैर और अरे दीवानो मुझे पहचानो, तो क्या आप गलत है तो सही है के लिए रेडी हैं?
9: हाँ जी है।
6: तो मैं आपको रूल बता दूं कि हम आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन आपको उनके गलत जवाब देने हैं, जहां पर भी आपने सही जवाब दिया आप आउट हो जाएंगे।
9: ठीक है ठीक है।
6: तो मोंटी क्या आप रेडी हैं?
9: हाँ जी।
6: तो मोंटी ये बताइए आसमान का कलर कैसा होता है?
9: काला।
6: हाथी के कितने पैर होते हैं?
9: 5।
6: आपकी मम्मी का नाम क्या है?
9: शीतल देवी।
6: ये वैसे आपने सही बोला हो?
9: नहीं नहीं गलत है, आधार कार्ड में देख लो।
6: गाय की कितनी आंखें होती है?
9: 6।
6: हमारे देश के प्रेसिडेंट?
9: गांधी।
6: हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है?
9: राजेंद्र नाथ टैगोर।
6: आपके दादाजी का नाम?
9: महात्मा गांधी।
6: ये बताइए मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं?
9: 8।
6: तो मोंटी ये तो रहे थे आपसे क्वेश्चंस, आपने एंजॉय किया?
9: हाँ जी हाँ जी।
6: तो मोंटी आपने जैसा कि हमने कहा था कि आपको देने हैं गलत जवाब, आपने सारे सवालों के गलत जवाब दिए हैं, तो आप बनते हैं विनर। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कैसा लगा आपको हमारे सेगमेंट से जुड़कर?
9: बहुत बढ़िया लगा मुझे।
6: तो दोस्तों इसी के साथ हमें हमारे एक और युवा साथी दिख रहे हैं, तो चलते हैं उनके पास और जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
10: अभिषेक कुमार।
6: तो अभिषेक आप स्टूडेंट हैं, तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम?
10: अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं।
6: कंपटीशन के साथ साथ ग्रेजुएशन वगैरह भी चल रही होगी?
10: हाँ जी, ग्रेजुएशन में बीए कर रहे हैं सहजन कॉलेज से, नजीबाबाद से।
6: ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि मोंटी ने हमारे इस सेगमेंट को बहुत अच्छे से खेला, तो आप भी रेडी हैं?
10: हाँ जी।
6: तो अभिषेक बताइए कुर्सी के कितने पैर होते हैं?
10: कुर्सी के 5।
6: टायर का कलर कैसा होता है?
10: टायर का होता है नीला।
6: आपने किस रंग की शर्ट पहनी है?
10: मैंने पहनी है सफेद।
6: इंसान के कितने कान होते हैं?
10: इंसान के 4 कान।
6: मनुष्य के सर पे कितने बाल होते हैं?
10: मनुष्य के सर पे बाल होते हैं 1।
6: तो अभिषेक आपने भी हमारा ये सब सेगमेंट बहुत अच्छे से खेला, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कुछ सजेशन देना चाहेंगे आपको, कैसा लगा ये सेगमेंट?
10: मुझे बहुत अच्छा लगा ये खेल खेल कर, मैं फिर से दोबारा अगर कभी होगा तो फिर से खेलना चाहूंगा।
6: जरूर, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम हर वेडनेसडे लेकर आते हैं यूथ कनेक्ट, जिसमें हम ये सब सेगमेंट लेकर आते हैं, तो हम आगे आपसे जरूर जुड़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे एक और युवा साथी दिख रहे हैं, तो चलिए चलते हैं उनके पास और पूछते हैं हमारे अगले सब सेगमेंट के बारे में, जो है हूबहू। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सेगमेंट है हूबहू, जिसका मतलब है कि हम अपनी लाइफ में किससे प्रेरित हैं या किनके जैसे बनना चाहते हैं, किसको हमने अपना हीरो माना हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे हमारे युवा साथी से कि वो किसके जैसा बनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
11: मेरा नाम अमित कुमार है।
6: तो अमित आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं?
11: BSc प्लस कंपटीशन की तैयारी।
6: ओके, अमित आप BSc कर रहे हैं, तो आपका मेन पर्पस BSc करने का क्या है? आपकी लाइफ में कोई ऐसा आइडल या कोई हीरो जिसको देखकर आपको लगता है कि मुझे इनके जैसा बनना है, या जिन्हें देखकर आप प्रेरित होते हैं?
11: हमारे यहाँ जो पढ़ाते हैं मानसिंह सर, उन्हें देख के बहुत प्रेरित हूँ और मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ।
6: तो आपने बोला कि आप मानसिंह सर से प्रेरित हैं, तो मतलब मानसिंह सर क्या करते हैं जिन्हें देखकर आपको लगा कि आपको उनके जैसा बनना चाहिए?
11: SSC सीजल निकाल रखा उन्होंने और वे इनकम टैक्स ऑफिसर थे और अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ।
6: तो इसका मतलब आपका एम है कि आप लाइफ में आगे जाकर इंस्पेक्टर बने और मतलब मानसिंह सर का नाम रोशन करें?
11: जी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बच्चों के बारे में हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, कभी कोई बात होती है प्रॉब्लम होती है हम सर से बताते हैं, हमारी वो हर तरीके से मदद करते हैं किसी भी चीज में।
6: तो दोस्तों ये तो था हमारा सब सेगमेंट हूबहू, तो इसी के साथ हम अमित कुमार को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे कि वो हमारे सब सेगमेंट से जुड़े। अमित आपको जुड़कर कैसा लगा?
11: बहुत ही अच्छा लगा मुझे।
6: तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे अगले युवा साथी की ओर और चलते हैं बढ़ते हैं हमारे अगले सब सेगमेंट की ओर,
12: अरे दीवानों मुझे पहचानो की ओर। और हमें हमारी एक दोस्त मिल भी गई है, तो उनसे मिलने से पहले हम जान लेते हैं हमारे इस सब सेगमेंट के बारे में कि ये क्या है। तो इस सब सेगमेंट में हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कुछ ऐसे सवाल जिनसे उनकी जो अंदर की अच्छाई और बुराई है हमें उसकी एक झलक मिलती है, उनकी अच्छाई या उनकी छोटी मोटी कमियां, उनकी आदतें और उनकी खास बातें। हो सकता है कुछ जवाब दोस्तों आपको अपने जैसे लगे और कुछ जवाब आपको मुस्कान दे जाए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी होती है और आज हम उसी कहानी को थोड़ा सा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब वक्त है खुद को पहचानने का और दूसरों को पहचानने का। आइए शुरू करते हैं हमारा ये मजेदार सा सब सेगमेंट, अरे दीवानों मुझे पहचानो। और हमें हमारी एक दोस्त मिल भी गई है, तो सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। तो दोस्त क्या नाम है आपका?
13: मेरा नाम आफिया है।
12: आफिया क्या करती हैं आप?
13: मैं अभी बीएससी कर रही हूँ साउदर्न कॉलेज से।
12: आफिया हमारा एक सेगमेंट जाता है यूथ कनेक्ट, जिसके अंतर्गत हमारा एक और सब सेगमेंट जाता है अरे दीवानों मुझे पहचानो, जिसमें हम आपसे पूछेंगे आपकी दो अच्छाइयाँ और आपकी दो बुराइयाँ। तो तैयार हैं आप?
13: जी बिल्कुल।
12: तो भी ठीक है, हमें अपनी दो अच्छाइयाँ बताइए।
13: मेरी अच्छाइयाँ, मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं।
12: तो आप हमें सबसे पहले उनमें से दो बता दीजिए जो आपकी सबसे बेस्ट अच्छाइयाँ हों।
13: ओके, मेरी एक अच्छाई है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ और दूसरी है कि मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करती हूँ।
12: आपकी दोनों ही जो अच्छाइयाँ हैं दोनों ही बहुत ही बेस्ट है। तो अब आप हमें अपनी दो कमियाँ बता सकती हैं?
13: हाँ जी जरूर, कमियाँ भी गिनवाएंगे जब अच्छाइयाँ गिनवाई हैं तो।
12: बिल्कुल बताइए।
13: कमियाँ तो ये है कि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है और कभी कभी मैं आलसी भी हो जाती हूँ।
12: आफिया आपने हमें अपनी दो अच्छाइयाँ बताई दो बुराइयाँ बताई, तो आपके दोस्तों के हिसाब से आपकी एक अच्छाई क्या है?
13: मेरे दोस्तों के हिसाब से मेरे अंदर ये अच्छाई है कि मैं बहुत अच्छा सुनती हूँ, उनकी बातें बहुत अच्छे से सुनती हूँ और उनको बहुत अच्छे से हंसाती भी हूँ।
12: ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि दूसरों को सामने से एकदम जो है रुक के सुना जाए, उनकी बात को समझा जाए।
13: जी जी।
12: और वो बुराई क्या है जो आपके दोस्तों को लगता है कि आपके अंदर वो एक बुराई है?
13: मुझे मेरे दोस्तों को लगता है कभी कभी मैं हंसती हंसती बहुत जल्दी से शांत हो जाती हूँ, उनकी बातों का बहुत जल्दी से बुरा मान जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे कहते हैं ना कि तुम बहुत हंसाती हो ये करती हो, मतलब इसलिए मैं जल्दी से चुप हो जाती हूँ।
12: तो आपको भी लगता है कि वाकई ऐसा है?
13: जी बिल्कुल ऐसा है,
12: मतलब आपको जल्दी से किसी भी बात का बुरा लग जाता है।
13: जी।
12: तो आप भी मानती है कि आपके अंदर आपकी एक बुराई है?
13: जी बिल्कुल।
12: वैसे अगर आपसे देखा जाए तो ये एक तरीके की बुराई भी नहीं है, क्योंकि जब हमें सामने से कोई कुछ कहता है तो उसका बुरा तो वाकई लगता भी है।
13: जी जी।
12: तो आपको थोड़ा सा जल्दी लग जाता है बस?
13: मुझे बहुत जल्दी बुरा लगता है किसी का।
6: तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे अगले युवा साथी की ओर।
12: तो दोस्त क्या नाम है आपका?
14: मेरा नाम साइमा।
12: साइमा क्या करती हैं आप?
14: मैं एक हाउस वाइफ हूँ।
12: साइमा हमारा एक सेगमेंट जाता है यूथ कनेक्ट, जिसके अंतर्गत हमारा एक और सब सेगमेंट जाता है जिसका नाम है अरे दीवानों मुझे पहचानो, जिसमें हम अपने दोस्तों से जानते हैं उनकी दो अच्छाइयाँ और दो बुराइयाँ। तो हम आपसे भी वही पूछेंगे, तो तैयार हैं आप?
14: जी हाँ।
12: तो साइमा सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपके अंदर की अच्छाई क्या है?
14: मुझे लगता है कि जहाँ मेरी गलती होती है मैं उसे मान लेती हूँ।
12: ये तो बहुत अच्छी बात है साइमा, और मुझे लगता है कि लोगों के अंदर ये वाली बात होनी भी चाहिए। अगर लोगों के अंदर ये बात होना कि जहाँ उनकी गलती और वो मान ले, तो मुझे लगता है जो आपस के झगड़े हैं ना 80% झगड़े तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो साइमा हमने आपके अंदर की जो अच्छाई है जो वाकई बहुत ही अच्छी अच्छाई है वो तो हमने जान ली, अब आप हमें बताइए कि आपके अंदर की जो बुरी आदत है, आपको लगता है कि आपके अंदर ये बुराई है, वो क्या है?
14: बुराई तो कुछ नहीं है, मगर मैं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हूँ।
12: साइमा आपको लगता है कि आप बहुत छोटी छोटी बातों पर एकदम परेशान हो जाती हैं?
14: जी हाँ।
12: मुझे लगता है साइमा ये आप ही के अंदर नहीं, ये सभी लोगों के अंदर कॉमनली बहुत ज्यादा लोगों के अंदर ये चीजें होती है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो मुझे भी लगता है मैं भी बहुत छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हूँ। तो साइमा हमें तो आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा, तो साइमा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
14: जी आपका भी शुक्रिया।
15: तो दोस्तों अभी तो हमने सुना यूथ कनेक्ट, जिसमें हम मिले अपने दोस्तों से और हमने जाना कि किसके अंदर क्या कमी है, किसकी क्या बुराई है और क्या अच्छाई है और कौन बनना चाहता है किसके जैसा।
16: दोस्तों कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो दर्द से पहले उम्मीद दे जाते हैं, कुछ हाथ ऐसे होते हैं जो दवा से पहले हौसला दे जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि जिंदगी का रखवाला कहते हैं।
15: जी हाँ, दोस्तों आज का दिन उन लोगों के नाम है जिनकी वजह से ना जाने कितनी जिंदगियां हर दिन मुस्कुराती हैं। आज है 1 जुलाई यानी राष्ट्रीय डॉक्टर डे।
16: जब भी हमें कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो होता है डॉक्टर। कई बार परिवार से दूर रहकर अपनी नींद, अपनी छुट्टियां, अपने आराम की परवाह किए बिना डॉक्टर सिर्फ एक ही काम करते हैं और वो है किसी की जान बचाना।
15: कोविड जैसे टाइम में हमें एहसास हुआ कि असली हीरो सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, असली हीरो तो वो भी थे जो पीपीई किट पहनकर घंटों अस्पतालों में डटे रहे, अपने परिवार से दूर रहकर भी दूसरों के परिवार को सेफ रखने में लगे रहे।
16: और उनके इसी समर्पण को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस महान डॉक्टर डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाना शुरू किया।
15: बिल्कुल दोस्तों, आज उनका जन्म है और उनकी मृत्यु 1 जुलाई यानी आज ही के दिन हुई थी।
16: उजमा सच कहूं तो डॉक्टर सिर्फ दवा नहीं देते बल्कि वो भरोसा देते हैं। कई बार उनकी एक मुस्कान ही मरीज के मन में आधा डर खत्म कर देती है।
15: बिल्कुल सलोनी, दोस्तों को जरा ये सोचने दो, जब पूरा शहर सो रहा होता है तब भी किसी ना किसी हॉस्पिटल में कोई ना कोई डॉक्टर किसी ना किसी की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा होता है ना?
16: और हम अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर की राइटिंग समझ नहीं आती।
15: बिल्कुल, लेकिन उनकी मेहनत और नियत पूरी दुनिया समझती है।
16: तभी तो डॉक्टर न सिर्फ एक पेशा है बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
15: और शायद इसीलिए ही कहा जाता है कि जहाँ उम्मीद खत्म होने लगती है वहीं से डॉक्टर की कोशिश शुरू होती है।
16: तो आज के इस खास दिन से ज्यादा तो कोई अच्छा दिन हो ही नहीं सकता उनकी इस कोशिश और जज्बे को सलाम करने का।
15: तो आज के दिन आइए उन सभी डॉक्टर्स का दिल से धन्यवाद करते हैं, दिल से थैंक्स बोलते हैं, जो हर दिन किसी न किसी की जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आते हैं, नई रोशनी लेकर आते हैं।
16: चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल या गांव का छोटा सा क्लिनिक, हर डॉक्टर सम्मान और आभार का हकदार है।
15: बिल्कुल, सफेद कोट में सिर्फ एक पहचान नहीं होती, हर धड़कन की एक उड़ान होती है। जो हर दर्द में उम्मीद जगा दे वही डॉक्टर हमारे जीवन की मुस्कान होती है।
16: तो आज आकाशवाणी परिवार की ओर से सभी डॉक्टर्स को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारा ये अगला प्यारा सा गीत डॉक्टर्स के नाम।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: ठीक है बच्चों, आज की क्लास यही खत्म होती है। किसी का कोई डाउट?
5: नो मैम।
4: और किसी को कुछ पूछना है?
5: मैम मैम।
4: हाँ बताओ बंटी।
5: मैम कल आप क्या पढ़ाएंगी?
4: बंटी कल मैं सूरज पर लेक्चर लूंगी, तो अच्छे से रेडी होकर आना, ठीक है ना?
5: लेकिन मैम मैं नहीं आ पाऊंगा।
4: क्यों, तुम तो कभी छुट्टी नहीं मारते, तो तुम क्यों नहीं आओगे कल की क्लास में?
5: वो क्या है ना मैम, मेरी मम्मी ने मुझे इतनी दूर जाने नहीं देंगी।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
6: तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और लेके आते हैं आपके लिए एक और प्यारा सा सेगमेंट। और हमारे सेगमेंट का नाम है कहानी के उस पार, जो कि आप लगातार सुन ही रहे हैं, जिसका है आज एपिसोड नंबर 3। और किसका एपिसोड नंबर 3? एपिसोड नंबर 3 है हमारी कहानी कानों में कंगन का। तो चलिए सुनते हैं कि आज इस एपिसोड नंबर 3 में आखिर क्या होने वाला है।

नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय त्यागी और आप सुन रहे हैं कहानी के उस पार में एपिसोड नंबर 3, बदलते रिश्ते। लेकिन दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं पिछले एपिसोड पर। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि ऋषिकेश के शांत वन में स्थित योगेश्वर के आश्रम में नरेंद्र की शिक्षा पूरी

हुई। गुरु दक्षिणा के रूप में लाए गए उपहारों में से योगेश्वर ने सब लौटा दिया, लेकिन किरण ने प्रेम से उन कंगनों को अपने पास रख लिया। फिर एक ऐसा

जिम्मेदारी उसे दे दी। नरेंद्र के मन में अनेक प्रश्न थे, लेकिन समय किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कहानी का अगला अध्याय, जहां समय के साथ बदलती है जिंदगी, बदलते हैं रिश्तों के रंग और शुरू होती है एक नई यात्रा की। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरी चंदन के पल्लुओं की छाया भूलोक पर कहां मिली, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी घाम निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिनके वृक्षों के साए में घड़ी घाम निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थीं, वहां के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंदनों पवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैयां कहां मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शत शत देवांगनाओं ने पारिजात की फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर दो घड़ी वंशी के टेर दें, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि एक दो भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वो प्रमोदवन के विलास निकंजो जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरों की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा वन की निविड़ योग निद्रा वही देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर ये चंचल चित क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण? इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर योगेश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनके चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वो बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वो लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मले वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोग का प्रतिनिधि था, मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मृत्यु राज्य से खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी, उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णा होती थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर 5 स्वर मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वो क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया, वो किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है,

कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कानों पर दो बूंदे निकल कर झाँक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वो ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया और किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया, वन वायु भी चुप हो चली, हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, ये क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? एक और गुरु का अटूट विश्वास, दूसरी ओर नरेंद्र के मन में उठते अनगिनत सवाल। दोस्तों, वन की निर्वरता तो टूट गई थी, लेकिन दोनों के भीतर पसरा सन्नाटा अब भी वैसा ही था। क्या सचमुच ही एक नई शुरुआत थी? क्या जंगल की निश्चल किरण संसार के रंगों में भी अपनी वही मासूमियत बचा पाएगी? और क्या नरेंद्र उस विश्वास की रक्षा कर पाएगा जो योगेश्वर अपनी अंतिम विदाई में उसके हाथों में सौंप गए थे? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, क्योंकि नियति ने इन दोनों के लिए एक ऐसी राह चुनी है जहाँ प्रेम की परीक्षा भी होगी, मोह का आकर्षण भी और समय का सबसे कठिन फैसला भी। तो आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनना मत भूलिए कहानी के उस पार का अगला एपिसोड कल शाम ठीक 5:15 बजे।

दोस्तों कहीं कहानी के इमोशंस में आप तो नहीं बह गए? और अगर कहानी के इमोशंस में आप बह गए हैं तो मैं आपको वापस ले आती हूँ और याद दिला दूँ कि ये प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने आपसे पूछा था एक सवाल अपने बोझो तो जाने के अंतर्गत, और हमारा सवाल था चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था, जिसका सही जवाब हमें मिलने लगे हैं। और इसका सही जवाब है असहयोग आंदोलन, और सही जवाब देने वालों के नाम हैं सुदर्शन शाह, नानक खन्ना, जॉन डी कैस्ट्रो, भगवत चौबे लाडला जी, नरेन नेताम, रामकुमार रेवाड़, मोहम्मद आमिर अंसारी, दिग्दर्शन गौड़, धर्मेंद्र छीपा, महेंद्र मोदी, विजय सुरेलकर, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, बीपी गौतम, अरविंद कुमार, राजेश वर्मा, गंगा सिंह रावत, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, गुरमीत

महात्मा संजय डींगिया, मशरूर हसन, देवशंकर तामुरिया। तो आइए दोस्तों, अब हम अरे इन साथियों ने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो इनको एक इनाम दिया जाए। इनाम के तौर पर हमें सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें आपने आज सुना कुछ खास है। आज में नेशनल डॉक्टर्स डे, यूथ कनेक्ट में हमारे युवाओं की आवाज़ और एक प्यारी सी कहानी का तीसरा पार्ट, और साथ ही आपने सुने बूस्टर्स। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारा आज का पूरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए भी बता सकते हैं। और आपको तो पता ही है खत के लिए हमारा पता, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 2467 63।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @ आकाशवाणी नजीबाबाद।

0: सुबह बाद साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानियां आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी उज्मा और
1: सलोनी को दीजिए इजाजत कार्यक्रम संपन्न करने की।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साह ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:05 हो रहे हैं। किसान भाई सुने अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया हिमांशु रंजन की राम राम। और सुनाइए किसान भाइयों, कैसे हालचाल हैं आपके? भाई देखो, हालचाल तो ठीक होंगे, और भैया थारी खेती किसानी भी ठीक चल रही होगी। और भैया देखो, हमारे क्षेत्र में यानी कि भैया बिजनौर जिले में भैया सुबह जो है थोड़ी सी बारिश हुई है, तो भैया उम्मीद है किसान भाइयों की फसल में थोड़ी बहुत सिंचाई हो गई होगी। और भाई हमारे किसान भाई देखो खेती बाड़ी करते हैं और साथ में भैया पशुपालन भी करते हैं और भैया अन्य व्यवसाय भी करते हैं, लेकिन भैया जब अपने स्वास्थ्य की बात आती है तो भैया हमें अपना स्वास्थ्य भी रखना, चाहे भैया मौसम गर्मी का हो, बरसात का हो, या भैया जाड का हो। तो भैया आज सबसे पहले हम बात करेंगे, आज 1 जुलाई 2026 है, यानी कि आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। भाई भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के महान चिकित्साविद, स्वतंत्रता सेनानी तथा पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय जी की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की है। किसान भाइयों, चिकित्सक समाज का एक ऐसा महत्वपूर्ण स्तंभ है जो लोगों के जीवन की रक्षा और स्वास्थ्य सुधार के लिए दिन रात कार्य करता है। डॉक्टर केवल बीमारियों का उपचार नहीं करते, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, रोगों की रोकथाम, टीकाकरण, स्वच्छता और संतुलित आहार के प्रति भी जागरूक करते हैं। किसान भाइयों, आपातकालीन परिस्थितियों में, या भैया प्राकृतिक आपदाएं हैं या महामारी के समय, डॉक्टरों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और भैया राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कि इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, डॉक्टरों के समर्पण, सेवा भावना और मानवता के प्रति उनके योगदान का सम्मान करना है। तो भैया ये दिवस हम मना रहे हैं, और इस दिवस जो हम मना रहे हैं भैया राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, तो इसकी सभी हमारे किसान भाइयों को, सभी चिकित्सकों को भैया ढेर सारी शुभकामनाएं। और भैया आगे हम बात करते हैं फसलों में सामयिक कार्य के विषय में, क्योंकि भैया देखो हमारा जो कार्यक्रम है वो खेती किसानी से संबंधित है, और भैया हमारे किसान दिन रात भैया खेतों में डटे रहते हैं, अपनी फसलों की देख रेख करते हैं, और भैया करनी भी चाहिए, क्योंकि देखो अगर उससे अच्छा लाभ हमें कमाना है तो हमें जो हमारी फसल है उसकी देखभाल करनी है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं भैया वो ये है कि हम अपनी फसलों में कौन कौन से सामयिक कार्य कर सकते हैं। तो देखो भैया, कृषि में अगर हमें अच्छी उपज प्राप्त करनी है तो केवल भैया समय पर बुआई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि फसल की बढ़वार के लिए समय समय पर किए जाने वाले कृषि कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें सामयिक कार्य के नाम से भैया हम जानते हैं। यदि किसान सही समय पर आवश्यक कार्य करते हैं तो फसल स्वस्थ रहती है, उत्पादन बढ़ता है तथा खेती लाभदायक बनती है। सबसे पहले सामयिक कार्य भैया फसल की नियमित निगरानी कहलाता है। किसान को प्रतिदिन अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के कीट, रोग या पोषक तत्वों की कमी का समय रहते पता चल सके। समय पर पहचान होने से नुकसान कम होता है और भैया खर्च भी कम हो जाता है। अब भैया सामयिक कार्य की बात करें तो भैया इसमें खरपतवारों का नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें अपने खरपतवारों का नियंत्रण ठीक ढंग से करना है। साथ ही भैया मौसम जब भैया ऐसा होता है कि हमारी फसल के अनुकूल नहीं होता, तो उस समय हमें अपनी फसल की देखरेख करनी चाहिए। अब जैसे भैया अभी कुछ दिनों तक भैया बारिश नहीं पड़ी, तो हमारे किसान भाइयों ने अपनी फसलों में सिंचाई बना के रखी होगी। साथ ही भैया फसल की बढ़वार के दौरान हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारी मिट्टी है भैया वो भुरभुरी है, उसमें भैया कहीं खरपतवार तो नहीं जम रहे हैं, साथ ही भैया उसमें ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारे जो पेड़ हैं वो सूख रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो पौधे हैं उसमें किस पोषक तत्व की कमी है, किस पोषक तत्व की अधिकता है। साथ ही भैया मिट्टी की जाँच करना भी भैया एक सामयिक कार्य में आता है। तो भैया अंत में ये कहा जा सकता है कि फसलों में सामयिक कार्य कृषि सफलता की कुंजी है। समय पर सिंचाई, संतुलित पोषण, खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा नियमित खेत निरीक्षण से फसल स्वस्थ रहती है और भैया उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। तो भैया ये तो बात हुई फसलों में सामयिक कार्य की, और भैया अब हम कार्यक्रम में ले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुन लेते हैं कुछ ही जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
4: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
3: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
4: खुशहाली का नया प्रयोग।
5: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
0: किसान भाइयों, अभी आपने सुने कुछ ही जरूरी संदेश, और भैया अब चलते हैं फिर से खेती किसानी की ओर। और किसान भाइयों देखो, आज के कार्यक्रम में हम किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं भैया एक रेडियो रिपोर्ट, जो कि भैया एपीडा द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में आयोजित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट है। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं ये रेडियो रिपोर्ट।

0: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, कल विगत दिनांक 30 जून 2026 को एपीडा यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर में किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक खेती, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, रासायनिक उर्वरक का कम और संतुलित उपयोग, समेकित पोषण प्रबंधन, समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण तथा कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन के बारे में जानकारी देना था। इन विषयों पर जानकारी देने के लिए बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद तोमर तथा डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी मौजूद रहे। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र नगीना के इंचार्ज डॉक्टर के सिंह के साथ अन्य वैज्ञानिकों ने इस प्रशिक्षण में जनपद के विभिन्न विकास खंडों से आए सैकड़ों किसान भाई एवं किसान बहनों को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम स्थल पर किसानों में नई तकनीकों को सीखने और उन्हें अपने खेतों में अपनाने का विशेष उत्साह दिखाई दिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम अधिशासी श्री अंकित सैनी जी ने मंच पर उपस्थित सभी वैज्ञानिकों, अतिथियों एवं किसानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया और अपने स्वागत भाषण में किसानों को उद्बोधन करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों और वैज्ञानिकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। यहाँ विकसित होने वाली वैज्ञानिक तकनीकों को खेत तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है ताकि किसान कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके और उनकी आय में वृद्धि हो। साथ ही यह भी बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो किसान प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हो पाए हैं वे भी रेडियो के जरिए इस महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ उठा सकेंगे और अपने स्वास्थ्य और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार कर अधिक आमदनी प्राप्त करने जैसी बातों पर चर्चा की। साथ ही किसान अपने प्रश्न पूछकर भी अपनी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिकों से पा सकते हैं। स्वागत भाषण के बाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता BDEF से पधारे डॉक्टर प्रमोद तोमर जी ने किसानों को संबोधित करते हुए एपीडा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि निर्यात क्या है और किसान भाई किस प्रकार और कौन कौन सी फसलों का निर्यात कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि यह संस्थान कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य करता है।
1: हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम जो पैदा करते हैं उसमें कुछ खाद्यान्न, कुछ फल, कुछ सब्जियां, कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको हम सारे अपने देश में कंज्यूम नहीं कर पाते, तो हम उन चीज़ों को विदेश भेजते हैं। जब उसको विदेश भेजते हैं वो होता है निर्यात। ठीक, कई बार अपने देश में कुछ फसलें कम पैदा होती है, कई बार वातावरण के प्रभाव से डैमेज हो जाती है, तो उन फसलों की अपने देश में पूर्ति करने के लिए, तो इसलिए विदेश से समय से मंगा कर कृषि उत्पादों को आपके बीच में लाया जाता है, उसको कहते हैं आयात। और कृषि क्षेत्र के आयात और निर्यात को देखने वाली संस्था का नाम है एपीडा। भारत से कृषि उत्पाद कई बोर्ड भी निर्यात करते हैं, क्योंकि सारा एपीडा हैंडल नहीं करता। जैसे कि टोबैको बोर्ड बनाया है, टोबैको मतलब तम्बाकू बोर्ड, टोबैको के जितने प्रोडक्ट है वो टोबैको बोर्ड देता है। कोकोनट बोर्ड बना है, टी बोर्ड बना है, तो इस तरह से बोर्ड बने ना। बाकी एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को एपीडा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। यदि टोटल भारत के कृषि निर्यात में एपीडा के शेयर की हम बात करें लगभग 50% से ज़्यादा है, तो इस तरह से आप निर्यात में जा सकते हैं।
0: आगे उन्होंने FPO के बारे में भी बताया कि किस प्रकार किसान अपना FPO बनाकर इंटरनेशनल बाजार से जुड़ सकते हैं और साथ ही जानकारी दी कि NPOP क्या है।
1: आप अपना FPO बनाकर, क्योंकि भारत सरकार का कॉन्सेप्ट है कि अपने किसानों को सीधे इंटरनेशनल मार्केट से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे किसान मेहनती तो है, लागत लगा देंगे, लेकिन थोड़ा सा मार्केटिंग करना नहीं जानते। ऐसा ही एक एपीडा का कॉन्सेप्ट चला है NPOP। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पूरे भारत में चला हुआ है। आप लोग यदि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में जा रहे हैं तो उस आपके हर स्टेट में एक एजेंसी को नॉमिनेट किया हुआ है कि वो आपको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट दे देगी, आप डोमेस्टिक में अपने उत्पाद को सेल कर सकते हो। यदि आपको बाहर एक्सपोर्ट करना है तो फिर NPOP आपको एज ए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट दे देगी एक्सपोर्ट करने के लिए अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो एपिडा आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में भी सहायता करेगा।
0: इसके साथ ही किसानों को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रमोद तोमर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 1 जून से 30 जून तक चलाए गए खेत बचाओ अभियान के बारे में बताया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों की उर्वरता, मिट्टी की गुणवत्ता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है।
1: हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट वे में हमारे खेती से लगभग 60% से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जिनकी आजीविका है। और याद करो आप 2020 का टाइम, जिस समय कोरोना दौर चल रहा था, उस समय हमारे देश को पता चला था कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो कृषि है। खेत में किसान काम कर रहे थे, अस्पताल में डॉक्टर और सड़क पे पुलिस, बाकी सब अपने घर से काम कर रहे थे। और ऐसा कोई नहीं था जिसके घर पे अन्न ना पहुंचा हो, फल ना पहुंचे हो, दूध ना पहुंचे हो। किसानों ने अपना बिल्कुल अन्नदाता वाला रूप उस समय दिखाया था। ऐसा ही सपना लेके खेत बचाओ अभियान चला है, क्योंकि खेत यदि आपका बच गया, खेत बचने का मतलब ये है कि उसमें जो शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति अब नहीं रही।
0: आगे गौ आधारित खेती के बारे में बताते हुए डॉक्टर प्रमोद तोमर जी बताते हैं कि वर्तमान समय में लगातार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के असंतुलित प्रयोग के कारण मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा कम होती जा रही है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही मित्र कीटों की पहचान करके हमें मित्र कीटों का संरक्षण करना है, तो इन्होंने मित्र कीटों की पहचान करने पर भी बल दिया।
1: हम अपनी जमीन को जिंदा रखने के लिए कार्बनिक पदार्थ डालते थे, लेकिन आप प्रैक्टिकल करोगे, हमारे किसानों के पास में पशुओं की संख्या धीरे धीरे धीरे कम होती जा रही है। यदि आप अभी नहीं संभले, क्योंकि जो आपका बायो पेस्टिसाइड था, पशुओं का मूत्र जिसको हम बोलते हैं, ज्यादातर किसानों का नालियों में जा रहा है। गौ आधारित खेती की तरफ आपको इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारी जमीन की शक्ति यदि खत्म हो गई तो आप में भी शक्ति नहीं रहेगी। हमने पैदावार तो खूब कर लिया और इंटरनेशनल बाजार में जब हम उसको लेके गए हैं ना, पैदा किए गए उत्पाद को, तो उसका मूल्य नहीं मिल पाता, वो गुणवत्ता उसमें नहीं है जो इंटरनेशनल मार्केट चाहता है। कितने किसान उसकी पहचान करते हैं कि ये नुकसान कीड़े के द्वारा हुआ है कि बीमारी के द्वारा हुआ है। यदि यहाँ भी आपने पहचान कर ली तो दवाइयाँ कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जितनी फसलें आप बोते हो उसको बोने के तुरंत बाद आपके खेत में दो तरह के कीट दिखाई देंगे, एक आपकी फसल को नुकसान करने वाले और एक उनको खाने वाले। यदि इतना अंतर भी आपने कर लिया तो मित्र कीटों की पहचान करना, संतुलित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना, वैज्ञानिकों की सलाह लेकर दवाइयों को प्रयोग करना, ये सब चीजें हमें रसायन अवशेष मुक्त कृषि उत्पाद पैदा करने की तरफ अग्रसर करेगी और यही आज की कार्यशाला का मेन उद्देश्य है।
0: इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर पिंटू कुमार ने किसानों को खरीफ फसलों में लगने वाली प्रमुख कीट एवं रोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से धान का पीला धब्बा रोग, हॉपर कीट तथा गंदीबग के विषय में विस्तार से बताया।
2: देखिए, अगर मैं धान की फसल की बात करता हूँ तो इसमें कई ऐसे कीड़े हैं जो हमारी फसल को प्रभावित करते हैं और कई ऐसे रोग भी हैं जिनसे पूरी फसल हमारी कई बार खत्म हो जाती है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं जो सबसे महत्वपूर्ण कीट है, इसमें येलो स्टेम बोरर धान में लगने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीट है और अगर अच्छी अनुकूल परिस्थितियां इसको मिल जाएं तो लगभग 40-60% तक भी नुकसान कर सकता है। नॉर्मली 5-10% तो करता ही है। अब इसको हम नियंत्रित कैसे करें, किस तरह से इसके लक्षण होते हैं? जो हमारा ये येलो स्टेम बोरर है, जैसे आपका गन्ने में कंसुआ, इसमें क्या होता है, मादा कीट के द्वारा पत्ती की जो है सतह पर अंडी दिए जाते हैं, वहाँ से सूंडी निकलकर तने में छेद बनाकर नीचे घुस जाती है। घुसने से क्या होता है, जो हमारा एक वाटर का फ्लो था वो ब्रेक हो जाता है। अगर पौधा बढ़वार की अवस्था में है तो बीज की गोब सूख जाती है, और अगर बाली बाहर आ गई है तो समय से पहले ही बाली सफ़ेद हो जाती है। ये इसके मुख्य लक्षण हैं। अगर आपके खेत में बढ़वार की अवस्था में एक वर्ग मीटर में आपको एक तितली दिखाई दे रही है, या दो एग मास एक वर्ग मीटर में आपको दिख रहे हैं, या आपने फेरोमोन ट्रैप लगाया है उसमें लगभग 25 तितलियां एक हफ्ते में आ रही हैं, तो आपको नियंत्रण की आवश्यकता है। तो इस समय नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है। अब नियंत्रण करें हम कैसे, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं? अगर मैं विधियों की बात करता हूं तो सबसे पहले जब हमारी जो फसल है 15 से 25 दिन की होती है, उस समय आप 12 से 18 किलोग्राम का एक पाटा इसमें चला सकते हैं पानी भर के। क्या होता है, ये नर्सरी से लेके आखिरी स्टेज तक हमारी फसल को प्रभावित करता है, कि नर्सरी में भी आता है और बाद की अवस्थाओं में भी पकने की अवस्था में। तो लगाने के 15 से 25 दिन के बीच में एक 12 से 18 किलोग्राम का पाटा ले लें, खेत में पानी भरा हो तब इसको चलाएं। अगर सूखे खेत में चला देंगे तो पौधे टूट जाएंगे, पानी रहेगा तो वो उसके नीचे से जैसे गुजरेंगे फिर से खड़े हो जाएंगे। इससे कई फायदे होंगे, एक तो जड़ें जब हिलेंगी तो टिलरिंग अच्छी होगी खेत में, दूसरा अगर कीट ने अंडे दे रखे थे तो वो कहीं ना कहीं रगड़ से गिरने का काम भी करेगा, तीसरा अगर लीफ फोल्डर की इसमें सूंडी कहीं थी ऊपर बैठी थी पत्तियों पर तो वो भी इसकी रगड़ से पानी में गिर जाएगी, और कहीं ना कहीं गिरने के बाद में उसका इन्फेक्शन भी कम होगा। तो इसके कई फायदे हैं। मिट्टी लूज हो जाएगी तो जो छोटे मोटे खरपतवार उग रहे हैं वो भी आपके डैमेज होंगे, तो उनका भी नियंत्रण होगा। तो कई सारे फायदे इससे देखने को मिलेंगे आपको।
0: इसके बाद कार्यक्रम के अगले वक्ता डॉक्टर सिद्धार्थ त्रिपाठी ने किसानों को धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अच्छी फसल की शुरुआत अच्छे बीज और सही खेत की तैयारी से होती है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि धान की रोपाई से पहले खेत में मजबूत मेन बनाए ताकि सिंचाई का पानी खेत में सुरक्षित रहे। साथ ही ट्रांसप्लांटिंग से पहले क्या क्या किसान भाई सावधानी बरत सकते हैं इस पर उन्होंने चर्चा की। साथ ही किस प्रकार से किसान भाई अपनी जो पौध है उसको उपचारित कर सकते हैं इस पर उन्होंने किसानों को बताया।
3: इस समय जो हमारी पैडी की धान ट्रांसप्लांटेशन का टाइम चल रहा है, कुछ लोगों ने जो सीडलिंग पहले तैयार कर लिया होगा, कर भी दिया होगा, या आगे आने वाले 20-25 जुलाई तक ये ट्रांसप्लांट होता ही रहेगा, 20 जुलाई तो मैक्सिमम मान के चलिए। ट्रांसप्लांटेशन में सबसे बड़ी जो आप ध्यान देना है, इसमें क्या करना है कि ट्रांसप्लांटिंग के पहले उस नर्सरी एरिया में पानी चला दें, क्योंकि पानी चला देने से फ़ायदा ये रहेगा कि जब उसकी आप पौध निकालोगे तो पौध ईजिली निकल जाएगा। दूसरा क्या है, उसे एक बार सीडलिंग को ट्रीटमेंट करिए, जो सीडलिंग में कोई भी सॉयल बॉर्न डिजीज फंगीसाइड जो भी ट्रांसप्लांटिंग में जा रही है पौध से पौध, बीज में तो आपने वो किया ही है उपचार, बीज के बाद में अब ट्रांसप्लांटिंग जो किया कर रहे हैं उस पौध से, जो 20-25 दिन का एक उसको टाइम मिला है उसमें कई फंगस अटैक कर सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा अपने उसी एरिया के आसपास खेत में एक फिट का 1.5 फिट का एक हौद बना लें, और ट्राइकोडर्मा कम से कम आप 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा पानी में डाल दें। इससे फ़ायदा क्या हुआ, आधे से एक घंटे के लिए सारे सीडलिंग को जितने को आपको पौध ट्रांसप्लांटिंग करना है उसे आप एक घंटे मैक्सिमम या 40 मिनट तक रख दें, डुबो दें उसमें, फिर आप ट्रांसप्लांटिंग करें। कोशिश करें कि एप्लीकेशन जो है फर्टिलाइज़र का कम से कम करें, जितना डिमांड है उससे भी कम आए। अगर पहले आपने FIM फार्म मैन्योर का यूज किया है तो ऑटोमेटिक आपको नाइट्रोजन हो गया, DAP हो गया, उनकी पूर्ति उससे हो जाएगी। दूसरा क्या करना है, ये हालांकि सारे चीज़ें आप जान रहे हैं मुझे पता है, फिर भी कई बार आप चूक होती है, तत्पश्चात क्या करें, 20 से 25 दिन अगर प्लांटेशन आपका हो गया है तो उसमें पानी लगा के एक पाटा, जो अभी डॉक्टर साहब ने बोला पाटा की विधि, वो बहुत ही कारगर है। कई चीज़ें उसमें, एक तो कल्ले का उत्पादन अधिक से अधिक होगा, दूसरा कई इंसेक्टिस अगर यूज हुए हैं तो वो ऑटोमेटिक डेड हो जाएंगे पाटा चलने से। उसमें सबसे ज़्यादा अटैक जो होता है स्टेम बोरर का और लीफ फोल्डर का होता है ट्रांसप्लांटिंग से 10 से 15 दिन के बीच में। उसमें आप फेरोमोन ट्रैप का हो गया, ट्राइकोग्रामा कार्ड का, दो मैक्सिमम यूज कर

0: इसके पश्चात डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता ने किसानों को मिट्टी की जांच के बारे में बताया, साथ ही जलवायु परिवर्तन के संबंध में भी किसानों को जानकारी दी और उन्होंने बताया कि अगर हमारे किसान भाई उर्वरकों का संतुलित उपयोग करते हैं अपने खेत में तो उन्हें अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही फसल विविधीकरण के बारे में उन्होंने बताया, नई तकनीकों के बारे में उन्होंने जानकारी दी, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर का प्रयोग हमारे किसान भाई अपनी फसल में कर सकते हैं। साथ ही बताया कि फसल के अंदर तकनीकों का प्रयोग करने से हमारी जो फसल है वो अच्छा मुनाफा देती है। किसान भाई किस प्रकार से फसल के अंदर तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं, इस बारे में उन्होंने जानकारी दी।
1: हमें क्या करना है कि जैसे हम अपना चेकअप कराते हैं उसी प्रकार से हम मिट्टी की हर 2-3 वर्ष, हर साल नहीं कह रही, हर 2-3 वर्ष के बाद आपको मिट्टी की जांच, जो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना है उसके अनुसार आप उर्वरकों का प्रयोग करें, तभी आपकी जो फसल है वो अच्छा आपको आय देगी। क्योंकि हमारी जो खेती है, खेती में कई चुनौतियां हैं, आप भी देखते होंगे, आप खेती करते हैं, चाहे वो आपका जलवायु परिवर्तन हो, जलवायु परिवर्तन में जिस समय आपका धान कट जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, जब आपके घर लाने का टाइम होता है तब बारिश हो जाती है, तो एक समय का निश्चित नहीं है कि किस समय वर्षा होना है या किस समय क्या करना है, तो ये जलवायु परिवर्तन है। हमारा भूमि का जो जल स्तर है वो भी बहुत दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तीसरा, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग ना करना, हम एक अनुमान पे चले आ रहे हैं, एक पैमाने पे चले आ रहे हैं, तो कम से कम आप जो उर्वरक है उनका संतुलित प्रयोग करें, उपयोग करें। वो कैसे करेंगे, जब आप मिट्टी की जांच कराएंगे उसी में पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, कि फास्फोरस की कमी है, कि जिंक की कमी है, कि बोरान की कमी है। तीसरा, आप जो भी खेती कर रहे हैं, हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर, हमारे यहाँ गन्ना बहुत ज़्यादा होता है। गन्ने की खेती हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मील है, हमारे पास मार्केट है, तभी हम गन्ने की खेती कर रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन यदि मैं पूछूं कि गन्ने की खेती करने के बाद भी हम क्या फसल चक्र अपनाते हैं, यदि 10 बीघा हमारे पास जमीन है, मैं 10 बीघा इसलिए कह रही हूँ, ज़्यादातर कृषक बंधुओं के पास 10 से 20 बीघे के बीच में रहता है, वैसे तो आपके पास 80 बीघे भी है, 100 बीघे भी है, लेकिन मैं एक एवरेज बात कर रही हूँ। यदि हमारे पास 10 बीघे जमीन है तो हम 10 बीघे जमीन में पूरे में गन्ना लगाते हर वर्ष, तो हम उसमें फसल चक्र, अगर आपके पास 10 बीघे जमीन है, आप प्रयास ये करिए, कोशिश ये करिए कि 9 बीघे में इस वर्ष आप गन्ना लगाइए, 1 बीघा खाली छोड़ दीजिए, उसमें चाहे आप दलहनी फसल लें, चाहे आप तिलहनी फसल लें, चाहे आप उसमें सब्जी लगाएं। मेरा कहने का अर्थ ये, इस प्रकार से हर वर्ष जिस बीघे को आपने इस वर्ष छोड़ा, भी अगले वर्ष उस बीघे को मत छोड़िए, दूसरे बीघे को छोड़िए। तो अगर आप गन्ना भी लगा रहे हैं तो उसमें भी फसल चक्र ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से एक आध बीघे में आपको दूसरी फसल लगाना है, एक तो मृदा की उर्वरता भी बढ़ेगी और मिट्टी की कंडीशन भी अच्छी होगी। दूसरा, जो भी खेती हम कर रहे हैं उसमें क्या तकनीकी हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे मैंने पानी की बचत की बात की, कम पानी में अधिक सिंचाई हो जाए, अगर आप कोई दूसरी फसल कर रहे हैं या तो उसमें ड्रिप का भी प्रयोग करिए या स्प्रिंकलर का प्रयोग करिए। इससे क्या होता है, हमारे कृषक बंधु लाखों लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं, तो उस पानी का उपयोग हो कि लाखों लीटर पानी पूरा वर्ष हम सिंचाई कर सके।
0: इसके बाद डॉक्टर शिवांगी ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य एवं संतुलित पोषण प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिट्टी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसकी उर्वरता बनाए रखना प्रत्येक किसान की जिम्मेदारी है। उन्होंने किसानों को फसलों में विविधता अपनाने, जलवायु परिवर्तन के अनुसार खेती की तकनीक में बदलाव करने तथा जैविक एवं देसी खादों का अधिक उपयोग करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से हमारे किसान खेत की तैयारी कर सकते हैं।
2: मिट्टी का स्वास्थ्य साथ ही साथ जुड़ा है फसल का स्वास्थ्य। आप पेपरों में पढ़ रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि इस बार बारिश लेट कम, मानसून में कुछ अंतर आने वाला है, उसके साथ बदलाव, उसके साथ थोड़ा सा पोषक तत्व प्रबंधन, सब में बदलाव की एक ज़रूरत है। तो सबसे पहली शुरुआत है कि जिन किसान भाइयों के यहाँ धान नहीं रोपा गया है, शुरुआती जो बेसल डोज होती है, पहले तो खेत की अच्छे से तैयारी करें, जितना आप पे उपलब्ध है अच्छे से अच्छा, या फिर आने वाला गन्ना, गन्ने को भी इसको ले लीजिए, अक्टूबर का गन्ना भी ले लीजिए, या जनवरी फरवरी वाला, जो फरवरी मार्च वाला आप गन्ना बोते हैं उसको भी ले लीजिए, सबके लिए है। आप पता लगा लें उसमें कितनी देसी खाद पड़नी है, उसका इंतजाम शुरू से रखें। अगर कहीं बाहर से लेनी है कुछ, उसी को अलग करना है, तो इसकी जानकारी लेके सही पूरा डोज देसी खाद का लें, क्योंकि जो आने वाला नमी की कमी, जल की कमी, उसके साथ इसको पाल पाने का एक बहुत अच्छा सलूशन होगा, एक बहुत अच्छा निवारण होगा, यदि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अपने आप पौधा उसको झेल जाएगा। तो पहली चीज़, फसल स्वास्थ्य एवं मृदा स्वास्थ्य दोनों के लिए जमीन में पर्याप्त देसी खाद का प्रयोग करें। जो भी देसी खाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कोशिश करें घन जीवामृत के रूप में इस्तेमाल करें। अब तीसरी चीज़ ध्यान में रखने की है, संतुलित और पूर्ण पोषक तत्व, वो ये है पोटाश की पूर्ति करना। जो पोटाश की मात्रा है, जितनी भूख है फसल की, वो पूर्ति हम नहीं कर रहे हैं। मृदा कुछ चीज़ों को बफर करती है, यानी वो देती है फसल को, उसकी जितनी क्षमता होती है उस क्षमता तक मृदा पोषक तत्व प्रदान करती है। उसी बेसिस पे कहा जाता है उसकी उपलब्धता लो है, मीडियम है या हाई है।
0: अंत में कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह ने सभी वैज्ञानिकों के विचार का सार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि खेत बचाओ अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि किसानों के भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे वैज्ञानिक खेती अपनाएं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें तथा मिट्टी और पानी को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करें। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में उन्होंने किसानों को बताया।
3: किसान साथियों, आज हम लोग खेत बचाओ अभियान के अंतिम पड़ाव पर हैं। मतलब आज खेत बचाओ अभियान जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया 1 जून से 30 जून तक, इस बीच में धन्यवाद हम देंगे आकाशवाणी को कि आपने इस कार्यक्रम का कवरेज किसी विज्ञान के नरगिना टेलीकास्ट आप कर रहे हैं, साथ ही बासमती जो एक्सपोर्ट फेडरेशन है मेरठ, उनको भी धन्यवाद कि आप भी यहाँ पर शामिल हुए इस कार्यक्रम में। अगर हम खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम की बात करें तो एक महीने में लगभग 100 से ज़्यादा कार्यक्रम किए और लगभग इतने ही गाँव में हम लोग पहुँचे हैं, और साथ ही साथ अगर हम किसानों की बात करें तो लगभग हम लोगों ने 20,000 किसानों से वार्ता किया इस बीच में। और इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ICR को भी धन्यवाद कि आपने ऐसे कार्यक्रम को रखा जो किसानों से रूबरू होने के लिए और किसानों की समस्याओं को, खेती संबंधी बातों को करने के लिए। अब देखिए, रही बात खेत बचाओ अभियान की, इसके बारे में हमारे साथियों ने विस्तृत चर्चा किया, सब कुछ बता दिया, बस हम 2-3 बातों पर विशेष ध्यान देने की बात रखते हैं आपसे। कि पहला तो ये है कि खेत बचाओ का मतलब ये हम सीधी सीधी भाषा में जान लें कि 10-15 साल पहले हम 10 किलो जो यूरिया लगाते थे या 10 किलो जो खाद लगाते थे, पैदावार 10 कुंटल होती थी, और आज हम 20 किलो रासायनिक खाद लगा रहे हैं, पैदावार 5 कुंटल हो रही है। इसका रहस्य समझने की जरूरत है हमको। ये रहस्य क्या है कि हमारे जमीन का 10 से 15 साल पहले जो ऑर्गेनिक मैटर था, जीवांश कार्बन जो था, वो 0.75 के ऊपर था, और आज हम बिजनौर की अगर हम बात करें तो बिजनौर का जो ऑर्गेनिक मैटर है 0.3 के आसपास है। यानी बिजनौर के खेत की मिट्टी जो है, यह जो है अलार्म दे रहे हैं कि खेती अच्छी नहीं हो सकती। इसके लिए हमको 0.3 जो कार्बनिक ऑर्गेनिक कार्बन है या जीवांश कार्बन है, इसको 0.7 तक पहुंचाने के लिए जो भी उद्यम अपनाने पड़े, जो तरीके अपनाने पड़े, जैसे हरी खाद का प्रयोग करना, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा अभियान चला रखा है हरी खाद लगाने के लिए, और साथ ही साथ गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट की खाद, या प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के आयाम को अपनाने करके ही आप अपने खेत की मृदा उर्वरता यानी जीवांश कार्बन को बढ़ा सकते।
0: कार्यक्रम के अंत में कुछ किसान भाइयों ने अपने प्रश्न डॉक्टर प्रमोद तोमर जी से भी साझा किए। सबसे पहले श्री शरद कुमार जी, ग्राम वे पोस्ट हरगनपुर, तहसील नगीना के निवासी हैं। डॉक्टर प्रमोद तोमर जी से इन्होंने जानना चाहा कि FPO एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं। साथ ही इनका जो दूसरा प्रश्न था वो ये था कि हमारे क्षेत्र में बासमती ना होने का क्या कारण है।
4: बिजनौर जिला बासमती के नाम से पहले से फेमस था। इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड है वो है क्वालिटी प्रोडक्ट। जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो मंडी बेस हैं, मंडी से प्रोडक्ट लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इश्यूज बनते हैं, इश्यूज को लेके हम लोग आपके बीच में आते हैं। उन इश्यूज को दूर करने का सबसे आसान, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है FPO। ठीक। ऑर्गेनिक में गन्ने की भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं वो FPO कर रहे हैं। FPO के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि आप अपने आप ही एक्सपोर्टर बन जाओगे, और जो हमारे एपिडा BSM कराता है, बायर सेलर मीट, बायर सेलर मीट में क्या होता है, वो क्वालिटी देखता है और आपसे क्वांटिटी पूछता है, और यदि आप क्वालिटी दे रहे हो तो आपके रेट अपने रेट होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट लेके आपको लाए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जब हमारे FPO छाना शुरू हो जाएंगे तो उनकी एक आइडियल पहचान होगी, आइडेंटिटी होगी कि भाई नगीना का बासमती है।
0: इसी क्रम में हमारे दूसरे किसान भाई श्री ऋतुराज सिंह ग्राम में पोस्ट उमरी तहसील धामपुर जिला बिजनौर के निवासी हैं। इन्होंने डॉक्टर प्रमोद कुमार तोमर जी से प्रश्न किया, ये ड्रैगन फ्रूट की मिक्स खेती करते हैं, वैज्ञानिक और जैविक तरीके से इसको उगाते हैं। ये डॉक्टर प्रमोद तोमर जी से जानना चाहते हैं कि ये अपनी फसल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस संबंध में उनका प्रश्न है।
4: जब हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं तो भारत सरकार ने एपिडा के द्वारा एक NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन चलाया हुआ है, पूरे भारत में चल रहा है। वो फैसिलिटेटर का काम करते हैं, आपको जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो उसके लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा क्या है, यदि आप एपिडा से जुड़े हो, IEC और RCMC आपने करा लिया है, तो तमाम बायर सेलर, क्योंकि आजकल ये जो बहुत बड़ी चीज़ है, आपको दिल्ली तक दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन सबको सर्च करते हो। मैं आपको बता दूँ, भारत में ही 3 इंटरनेशनल ट्रेड लगाए जाते, लेकिन डिफरेंट फ्रूट डिफरेंट प्रोडक्ट को लेके इंटरनेशनल मार्केट में जाकर भी अभी जर्मनी में लगा था, और आपके उत्तर प्रदेश से भी 2-3 FPO को भेजा गया था वहाँ पे, क्योंकि मार्केट तो सर्च करना पड़ता है।
0: तो किसान भाइयों, ये तो था एपिटा द्वारा कृषि विज्ञान के नगीना जिला बिजनौर में आयोजित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग हिमांशु रंजन, प्रस्तुतकर्ता अंकित सैनी। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे एपिडा द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में आयोजित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। तो उम्मीद है भाई, इस रेडियो रिपोर्ट से किसान भाई जानकारी से भैया लाभ कमाएंगे, और भैया देखो लाभ एक और चीज़ से होता है भैया, वो है गीत संगीत, वो है मनोरंजन। क्योंकि भैया शाम का समय हो रहा है और भैया हमारे किसान भाई इंतजार कर रहे होंगे कुछ मनोरंजन का, गीत संगीत का। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए सुनते हैं भाल सिंह की गाई ये प्यारा सा लोकगीत।

हरी भरी तरकारी ले लो। किसान भाइयों ने अभी भाल सिंह की गाय यू प्यारा सा भैया लोकगीत सुना, उम्मीद है भैया किसान भाइयों का मनोरंजन हो गया होगा। और भैया अब बारी है मौसम की चिट्ठी की, जो कि हमें प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ से। भाई इसमें दी गई जानकारी के अनुसार बिजनौर जिले का जो भैया मौसम रहेगा वो अगले चार दिन भैया बिजली गरज आंधी और तेज हवा के साथ भैया मध्यम से भारी बारिश की भैया संभावना है। और भैया किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भैया यदि आपकी धान की पौध तैयार हो गई हो तो रोपाई की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि भैया आने वाले जो चार दिन हैं भैया वर्षा की संभावना है। तो किसान भाई अपनी धान की रोपाई की तैयारी करें। और भैया अब घड़ी भी इस ओर इशारा कर रही है कि भैया और बातचीत नहीं, तो किसान भाई उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारे कार्यक्रम का पता। पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन है भैया 2467 63। साथ में भैया एक हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप हमें अपने व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं, तो नंबर है 9457072888। और भैया अब अपने भैया हिमांशु रंजन को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:45 हो रहे हैं। विविधा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है हरित भारत की दिशा में सुदृढ़ कदम के रूप में वन महोत्सव। वार्ताकार हैं डॉक्टर विकास कंडवाल।
1: जब हम हरित भारत की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जैसे नीले आकाश के नीचे लहराते हरे भरे पेड़, कल कल बहती नदियां, चहचहाते पक्षी और एक स्वच्छ शुद्ध वायुमंडल। लेकिन आज यह दृश्य केवल कल्पना मात्र बनता जा रहा है। वनों की कटाई, प्रदूषण और शहरीकरण से इस हरियाली को दिन प्रतिदिन सिकोड़ दिया गया है। ऐसे समय में जब पृथ्वी के पर्यावरणीय संकट दिन ब दिन गहराते जा रहे हैं, वन महोत्सव हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी धरती के साथ अपने संबंधों को पुनः जोड़ना होगा। वन महोत्सव केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन है, एक सोच है, एक ऐसा प्रयास है जो प्रकृति और मानव के बीच संतुलन को पुनर्स्थापित करता है। इस महोत्सव की शुरुआत 1950 में हमारे देश के तत्कालीन कृषि मंत्री श्री के एम मुंशी जी ने की थी। उन्होंने यह महसूस किया कि स्वतंत्र भारत की खुशहाली और स्थायित्व का रास्ता वनों के संरक्षण और संवर्धन से होकर जाता है। तभी से प्रतिवर्ष जुलाई के पहले सप्ताह को वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। लेकिन एक सवाल हम सबके मन में उठता है, क्या केवल एक सप्ताह में कुछ पेड़ लगाकर हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं? मित्रों, इसका उत्तर है नहीं। वन महोत्सव केवल एक आरंभ है, एक चेतना का बीज है जो पूरे वर्ष भर हमारी सोच और व्यवहार में हरियाली घोलता है। एक वट वृक्ष अपनी छांव में न जाने कितने पक्षियों को आश्रय देता है, कितने राहगीरों को थकान से मुक्ति दिलाता है और प्रतिदिन लगभग 20 किलो ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है जो लगभग 4 लोगों के लिए पर्याप्त होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वृक्ष चुपचाप कितना कुछ दे जाता है? जब आप एक वृक्ष लगाते हैं तो आप केवल एक बीज नहीं रोपते हैं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए जीवन, हवा, छाया, जल और जैव विविधता की नींव रखते हैं। भारत जो कि एक समय पर वनों से भरपूर था, आज वनाच्छादन के क्षेत्र में चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ यह भी सच है कि जन जागरूकता और कार्यक्रमों के माध्यम से आज लाखों लोग वृक्षारोपण से जुड़ चुके हैं। वन महोत्सव यानी वृक्षों का पर्व, यह कोई धार्मिक या पारंपरिक पर्व नहीं है, बल्कि जीवन से जुड़ा, धरती की धड़कनों से जुड़ा पर्व है। इस आयोजन की विशेषता यह है कि यह सभी वर्गों को साथ लेकर चलता है। विद्यालयों के छात्र हों, गांव के किसान हों या फिर शहरों के कामकाजी लोग हों, वृक्षारोपण अब एक सामाजिक उत्सव बन चुका है जिसमें भाग लेना प्रत्येक के लिए गर्व की बात मानी जाती है। क्या आपने कभी किसी विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों को वृक्ष लगाते देखा है? उनका वह उत्साह, वह मुस्कान और वह अपनापन यही दर्शाता है कि प्रकृति से संबंध केवल वैज्ञानिक नहीं, भावनात्मक भी है। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम, सरकारी योजनाओं जैसे मिशन लाइफ, राष्ट्रीय वन योजना और ग्राम हरियाली योजना के साथ मिलकर देश को हरियाली की ओर ले जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया के इस युग में भी अगर हमें हरित भारत का सपना साकार करना है तो हमें अपनी मिट्टी से जुड़ना होगा। पर्यावरण के प्रति हमारी लापरवाही का परिणाम हम देख चुके हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अमेजन जैसी जंगलों की आग, जल संकट और अनेक जीवों की विलुप्ति। ऐसे में यदि हम अब भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। हरित भारत कोई केवल सपना नहीं, यह एक आवश्यकता है। एक ऐसा भारत जहां नदियां शुद्ध हों, जहां खेतों में हरियाली हों, जहां बच्चे बिना मास्क के सांस ले सकें और जहां पेड़ कटने की बजाय बढ़ें। वन महोत्सव उस हरित भारत की नींव है। यह केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं है, यह एक सामाजिक जागरण है। हमें यह बताने का अब भी समय है, अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले कल में अपनी स्मृतियों को नहीं बचा पाएंगे। वन महोत्सव के सामने कई चुनौतियां हैं दोस्तों, जैसे पौधे लगाना तो आसान है परंतु उन्हें जिंदा रखना मुश्किल, जलवायु देखभाल की कमी, पशु क्षति और मानव लापरवाही के कारण लगभग 60% से अधिक पौधे एक साल भी नहीं टिक पाते हैं। भागीदारी की सतर्कता, महोत्सव के समय तो लोग आते हैं पर साल भर वे पौधों की सुध नहीं लेते हैं। शहरीकरण का दबाव, जहां जमीन बची है वहां इमारतें बन रही हैं, वृक्षों के लिए जगह ही नहीं बचती और संसाधनों की कमी, जैसे जल, जैविक खाद और पौधों की देखरेख के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की कमी, इन सभी समस्याओं से पार पाने के लिए कुछ बेहद व्यवहारिक और जरूरी कदम हैं। स्थानीय निगरानी समितियां बनाना, हर मोहल्ले हर गांव में पौधा पालक समूह हों, स्कूलों की जिम्मेदारियां देना, हर बच्चा एक पौधा लगाए और उसका संरक्षक बने, जागरूकता अभियानों को सतत करना, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार संदेश भेजना, सरकारी योजनाओं को स्थानीय जुड़ाव से जोड़ना, जैसे मेरा पौधा मेरी पहचान योजना, एक पेड़ को परिवार का सदस्य माने, नाम दें और जन्मदिन मनाएं। हम मानव हमेशा खुद को सबसे शक्तिशाली समझते आए हैं, लेकिन कोरोना महामारी ने यह साफ कर दिया है कि एक अदृश्य वायरस भी हमें घुटने पर ला सकता है। तब हमें यह भी याद आया कि शुद्ध हवा, हरे पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधन ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। वन महोत्सव यह शिक्षा देता है कि विकास और प्रकृति का संतुलन ही सच्ची प्रगति है। वन महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि यह एक चेतना है। यह प्रकृति से जुड़े हमारे रिश्ते को गहरा करता है और पर्यावरणीय संतुलन की ओर एक सामूहिक पहल को दर्शाता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहाँ हरित आच्छादन को बनाए रखना एक चुनौती बनता जा रहा है, वहाँ वन महोत्सव एक ऐसा पर्व है जो कि सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं।

0: ऐसे अभियानों को केवल प्रतीकात्मक न मानकर उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी उतनी ही निष्ठा से करें। पेड़ लगाना केवल धरती को हरा करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक सांस लेने लायक भविष्य सौंपना है। सिर्फ सरकार ही नहीं, हर नागरिक जिम्मेदारी है कि वह धरती माँ के लिए कुछ करे। आइए संकल्प लें, हर साल एक पौधा अवश्य लगाएं, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसे जीवित रखें। क्योंकि अगर हर व्यक्ति सिर्फ एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे तो देश में 140 करोड़ पेड़ लग सकते हैं और तब सच में भारत हरित हो सकता है।
1: हरित भारत की दिशा में सुदृढ़ कदम के रूप में वन महोत्सव, ये पूर्व प्रसारित वार्ता प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर विकास कंडवाल। इसी के साथ विविधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:55 हो रहे हैं। समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम छाया गीत का। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से लता मंगेशकर के स्वर में, हसरत जयपुरी का गीत संगीत निर्देशन शंकर जय किशन का।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: छाया गीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आशिक हूं बहारों का फिल्म से गीत, किशोर कुमार के स्वर में, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का गीत राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर से, काला पत्थर फिल्म में।

इस गीत के साथ ही छायागीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। 7:10 हो रहे हैं, प्रस्तुत है देशगान।

आप सुन रहे थे देश गान। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। शाम 7:32 पर कानून की बात कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। चर्चा का विषय है कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 9:30 पर। व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपीयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया लेकर आएंगे आपके लिए रात्रि 10:00। ये थे आज के कार्यक्रम और एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। वन महोत्सव पर विशेष काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे राजीव शर्मा प्रातः 6:45 पर। ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनिएगा कल प्रातः 7:32 पर। जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल प्रातः 9:15 पर। शाम 4:00 संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली केंद्र से ही कल रात्रि 10:00 रिले करेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कल दिन में 1:45 पर महिला जगत कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे वार्ता। विषय रहेगा महिलाओं के लिए किचन गार्डन। वार्ताकार होंगी नीरज कुमारी। कल शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, जहर मुक्त खेती और व्यसन मुक्त व्यक्ति। इस विषय पर महिपाल सिंह से बातचीत करेंगे जितेंद्र कुमार। जनपद बिजनौर के प्रमुख साहित्यकार विविधा के अंतर्गत ये वार्ता आपको सुनवाएंगे। वार्ताकार होंगे महेंद्र सिंह त्यागी। समय रहेगा कल शाम 6:45। कल रात्रि 9:30 पर आपको सुनवाएंगे नाटक उदास चबूतरा। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBL Life इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBL Life की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ के विकास को और गति देगा।
2: दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने

0: सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
1: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20 फीसदी था घट करके आज 3-4 फीसदी तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए SIT ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने SIT को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को SIT के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BVGRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनमोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, DBT, UPI, डिजीलॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित कर

0: का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBG राम जी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।

0: श्रोताओं, शाम के 7:31 हो चुके हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं भ्रष्टाचार रोकने में जन सहयोग, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे हैं एडवोकेट हाईकोर्ट से कुंवर शशांक और भेंट करता है अतिश कुमार श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है, मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, हम सभी ने देखा है कि जो भ्रष्टाचार है वो हमारे जड़ जड़ में समाया हुआ है। कहीं भी आप जाएं कोई काम कराने तो कुछ भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ता है, तो हमारा काम होता है। तो इसी विषय पर अधिक बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है कुंवर शशांक को, जो कि एडवोकेट है यहाँ हाईकोर्ट लखनऊ में। और इनसे विषय जिस पर हम बातचीत करेंगे वो हमने रखा है कि भ्रष्टाचार रोकने में जन सहयोग, आम आदमी की क्या भूमिका है और कैसे वो इससे परेशान भी होता है और रोकने की इच्छा भी रखता है। कानून ऐसे हैं जो हमें मदद कर सकते हैं भ्रष्टाचार रोकने में। तो स्टूडियो में आपका स्वागत है शशांक।
2: धन्यवाद सर।
1: तो क्या आपके दिमाग में आता है कि भ्रष्टाचार में जो जन सहयोग है वो किस हद तक है, और इसको बातचीत हम बाद में करेंगे कि इन सब पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, कैसे रोका जा सकता, आप बताएं हमारे श्रोताओं।
2: धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत सालों से है और काफी अंदर तक शामिल हो चुका है। ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लोगों के अंदर एक स्वाभाविक एक बात आती है कि हाँ चलता है, नहीं इतना तो पैसा देना पड़ेगा, इतना तो अगर जल्दी कराना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। ये जो यही चलता है का जो हमारा एक एटीट्यूड है, इसे हमें रोकना पड़ेगा। क्योंकि आम जनता जब तक उस किसी चीज के लिए आवाज नहीं उठाएगी तब तक उसे सरकार भी अनसुना ही मानेगी। हमारे पास कानून में बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस या निवारण हैं जिसके द्वारा आम जनता भ्रष्टाचार को पूरी तरह तो नहीं पर किसी हद तक तो रोकने में सहयोग कर सकती है।
1: शशांक, उसमें जन सहयोग की ज्यादा जरूरत है कि आदमी जब पैसा देने को तैयार नहीं होगा, भ्रष्टाचार करने को तैयार नहीं होगा, तो दूसरा भी रुकेगा, क्या आप क्या समझते हैं?
2: जी, अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है, अगर जनता ही मना करे कि नहीं हम ये पैसा दे के काम नहीं करवाएंगे, हम इसको सही तरीके से ही ये काम करवाएंगे, तो सामने वाला भी मजबूर हो जाएगा कि हाँ, कि जब हमारे पैसे बार बार मांगने पे भी अगर आम जनता पैसे देने को तैयार नहीं हो रही तो शायद उनके अंदर भी एक संकोच आएगा कि हाँ अब शायद हमें अपने काम को, अब जिस जो काम हमें उन्हें सौंपा गया है उसे वो बिना पैसे के द्वारा या बिना रिश्वत लिए करना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि जनता इसलिए जागरूक हो कि वो कैसे इसके लिए कंप्लेंट करें। कंप्लेंट मतलब कि वो कैसे इसके लिए आवाज उठाएं कि हाँ उनके साथ पैसा मांगा गया है या रिश्वत की मांग रखी गई है।
1: लेकिन कभी कभी शशांक ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे कभी अस्पताल में गया, उसको किसी को दिखाना है, कोई मरीज है, कोई तबीयत खराब है, ये भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो भ्रष्टाचार का सहारा लेता है।
2: जी सर।
1: है कि वो अलग से बिना नंबर के अपनी लाइन आगे बढ़ाता है या किसी को कुछ थोड़ी सी रिश्वत दे के अपना काम आसान कराता है कि उसके जो जो उसका पेशेंट है उसको सुविधा हो जाए, उसको दवा मिल जाए, तो इसको कैसे रोका जा सकता है?
2: सर, इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप, मैं और जो भी आम जनता है, जब भी हम किसी भी दुविधा में पड़ते हैं हमें ये लगता है कि हमारा काम पहले हो जाए उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। जब भी कोई आम आदमी अस्पताल जाता है, मान लीजिए उसे अपने मरीज को दिखाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वहां पे उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर मैंने पैसे दे के अपना नंबर पहले लगवाया है, इसका अर्थ ये है कि किसी और के नंबर, जिसका पहले मेरे से पहले नंबर आना था, उसके जगह पे मैं जाऊंगा। यदि आप अपना हक पहले रखना चाह रहे, यानी आपके द्वारा किसी का हक मारा जा रहा है, इसे हम करप्शन में आप ही इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, इसके द्वारा अब आप भी उनमें शामिल होगे, जिसके वजह से किसी आम आदमी की एक जो पर्सनल राइट है उसका हनन हुआ है। हमें अगर इस बात को आम आदमी ध्यान रखेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपका अंतर्मन ही आपको ये करने के लिए अनुमति देगा।
1: तो इस विषय में BNS हमारा जो है IPC का जो नया रूप है वो क्या कहता है?
2: सर, BNS में बहुत सारी चीजें हमारी दी गई हैं। सबसे पहले तो हमने यही बता रखा है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, ताकि हमें ये पता रहे कि जो हमसे पैसे की मांग कर रहा है क्या उसके ऊपर जो कानूनी रूप से हमारे पास जो निवारण दिए गए हैं क्या उस पर लागू होंगे या नहीं होंगे। तो बिजनेस में हमने पब्लिक सर्वेंट डिफाइन किया है, पर साथ साथ मान लीजिए कि आपसे कोई पैसे की मांग रखता है तो आप इसमें FIR भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि उससे कोई भी आपको निवारण नहीं मिलेगा तो आप मजिस्ट्रेट के पास एक प्राइवेट कंप्लेन भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा उस जिस मैटर में आपसे पैसे की मांग करके जा रही थी, मान लीजिए कोई अफसर है जो कि आप कहीं काम करने के लिए, आप कहीं कोई एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए जो कि इलीगल नहीं है, जो कि उसके पब्लिक ड्यूटी के अंदर आता था कि उसको वो काम करना ही था, परंतु उसमें आनाकानी कर रहा है वो, तो इसकी आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन भी कर सकते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये काम नहीं कर रहे हैं। बाकी आपके पास इसके लिए अदर तरीके भी हैं कि आप कोर्ट भी जा सकते हैं, पर वो आम जनता मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी 2,000-5,000 के लिए कोर्ट जाना चाहेगी। परंतु मैं उनको ये सूचित करना चाहूंगा कि आपको अगर ऐसा कभी लगे तो आपके पास कोर्ट जाने का भी उपाय हमेशा से अवेलेबल है।
1: तो क्या विजिलेंस कमीशन जो है वो भी कुछ मदद करता है?
2: विजिलेंस कमीशन आपकी इसमें बहुत मदद करता है। देश में सबसे प्रीमियर जो हमारे पास करप्शन को रोकने के लिए कमेटी है, उनमें सेंट्रल विजिलेंस कमेटी सबसे आगे है। CVC ने हमारे एक सबसे अच्छा प्रोग्राम दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं PIDPI, जिसका अर्थ है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स। इसके तहत सबसे अच्छी बात क्या है कि आम नागरिक को क्या लगता है कि यदि हम इस जो हमसे रिश्वत की मांग की गई है इसकी हम अगर आवाज उठाएंगे, तो क्योंकि जिनके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं वो सरकारी मुलाजिम है, तो हो सकता है कि सरकार की बाकी मशीनरी द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाया जाए, हमें किसी तरह से प्रताड़ित किया जाए। इस डर की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि आम जनता, आम नागरिक कभी बार कंप्लेन नहीं करती है। इसी को देखते हुए CVC ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जो कि 2004 में आया था। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो आप उसको PIDPI के नाम से फ्लैग कर सकते हैं, जिसके द्वारा क्या होगा कि जो आपकी कंप्लेन होगी उसकी कंप्लेन में जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको कभी भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा।
1: तो फ्लैग करने का मतलब है कि हम कंप्लेन जिस कागज पर लिखी है उस पे ऊपर लिख दें?
2: हाँ, उस पे अगर आपने ऊपर लिख दिया है,
1: अगर हम मेल से कर रहे हैं
2: तो हम आपके टाइटल में अगर हम डाल देंगे ऊपर जो सब्जेक्ट का हमारे ऑप्शन आता है उस मेल के अंदर, अगर हम उसके अंदर लिख देते हैं PIDPI, तो इसके द्वारा भी CVC को पता चल जाएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हमें इसमें जो हमारे जो कंप्लेनेंट है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज नहीं करनी।
1: ये नहीं पता चलेगा कंप्लेन किसने किया है।
2: किसी ने?
1: ये खैर इसका भी बहुत ज्यादा भय होता है
2: लोगों में बहुत भय होता है इस बात का
1: कि अगर हमने कर दिया तो मेरा जब काम आएगा तो फिर उस पर आनाकानी होगी या हमें
2: जी बस इसीलिए ये रखा गया है कि जो इन्फॉर्मेंट है, जो कि आदमी इस बारे में कंप्लेन कर रहा है उसकी नाम पता किसी को भी पता ना चलने पाए, ताकि कभी भी वो उसको ये अभाव ना लगे कि भाई जब मेरे कोई काम आएगा तो वही अफसर मेरा काम कैसे करेगा जिसके खिलाफ मैंने कोई कंप्लेन डाल रखी है, जिस विभाग में मैंने कंप्लेन डाल रखी है उसमें मेरा काम कैसे होगा। ये बहुत जरूरी चीज है। हम मंदिरों की बात करते हैं, जो मंदिरों में लाइनों में लगाने का जो भ्रष्टाचार है कि हम आपको एक स्पेशल एंट्री दिला देंगे, कानूनी रूप से हम इसमें कुछ रोक नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें कोई पब्लिक ऑफिशियल इन्वॉल्व नहीं है जिसके खिलाफ हम कंप्लेन के केस दर्ज करा सकें। यहाँ पे क्या है, इसमें आता है हम आप जो आम नागरिक है उनका अंतर्मन, उनकी जो खुद की कंप्लेन करने की जो वो है कि अगर आपसे कोई मंदिर के अंदर ये डिमांड करता है कि आप मुझे 500 रुपया दीजिए, हम आपको उधर स्पेशल लाइन मिल जाएंगे, तो आप उसको वहीं पे आपको क्वेश्चन करना है कि तुम ये काम कर क्यों रहे हो पे हैं। तो भगवान तो सर्वव्यापी हैं, तो उनको तो सारे दुख सारे चीजें पता है। आप उन्हीं के अगर मंदिर के अंदर जाने के लिए आप पैसे लेंगे तो ये आम आदमी खुद ही रोक सकता है। इसके लिए जो मंदिरों में ऐसी जगहों पे जो भ्रष्टाचार है इसको रोकने के लिए जनता का खुद जागरूक होना बहुत जरूरी है। वो उसको ये समझना जरूरी है कि हमें अपने समय के लिए बार बार पैसे देने की क्यों जरूरत पड़ रही है। एक फीलिंग रहनी चाहिए समानता कि हम सब बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर हम लाइन में लगे हैं तो हम सब समान हैं। बाकी जगहों पे क्यों नहीं लागू करा सकते हैं?
1: अगर किसी कंप्लेन करना हो तो आपने बताया कि FIR कर सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं या मजिस्ट्रेट पे जा सकते हैं, तो क्या जो सेंट्रल विजिलेंस कमेटी है तो क्या इसका भी कोई ऑफिसर्स होते हैं?
2: सेंटर का जो ऑफिस है वो दिल्ली में भी है, लखनऊ के अंदर भी इनका ऑफिस अवेलेबल है, परंतु अगर आप ऑफिस पे नहीं जा पा रहे हैं तो आपके पास इनके टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं कि आप उस पर कॉल करके अपनी कंप्लेन दे सकते हैं।
1: टोल फ्री नंबर आप बता दीजिए।
2: जी सर, मैं इसका टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा। इसका नंबर है 1800-110-180, 1800-110-180। इस पे फोन करके तो आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं कि अगर आपको कंप्लेन करनी। CVC हमेशा अपने कंप्लेंस को संज्ञान लेती है उसका, कि जब आप कंप्लेन करेंगे तो आपसे पहले सुनिश्चित करेंगे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, कि आप जो कंप्लेन कर रहे हैं आप
1: अच्छा वो चेक करने के बाद
2: चेक करेंगे। हाँ, पहले कोई भी कंप्लेन आती है तो उसमें चेक किया जाता है कि जो कंप्लेनेंट है उसकी आइडेंटिटी क्या है, कि वो आदमी सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या तो किसी पब्लिक ऑफिशियल को बदनाम करने के लिए तो ये कंप्लेन नहीं की जा रही है, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार देखा जाता है।
1: बहुत अच्छा,
2: सबसे जरूरी ये होता है कि जो इन्फॉर्मेंट है उसकी हमें आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होता है कि हाँ जो आदमी कंप्लेन कर रहा है वो सच में ऐसा एग्जिस्ट करता है,
1: कभी
2: ऐसा
1: कभी
2: आदमी।
1: लोग फर्जी पतों से फेक आइडेंटिटी बनाते हैं फिर उससे कंप्लेन करते हैं।
2: यदि आप उससे कंप्लेन करेंगे तो ये बहुत चांसेस हैं कि आपकी कंप्लेन को सुनवाई ना हो, क्योंकि जब ऐसा कोई आदमी ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सर जो एजेंसीज है उनको भी लगेगा कि यहाँ पे जो कंप्लेन आई है क्या पता वो भी गलत हो। इसलिए जो हमने कहा कि अगर आपको डर है कि आपकी इंफॉर्मेशन ना लीक हो जाए, कि आपके बारे में सरकारी लोगों को पता ना चल, सरकारी ऑफिसों में आपका नाम ना चला जाए कि इन्होंने कंप्लेन की थी, इसीलिए हमने PIDPI का जो हमारे पास प्रोग्राम है उसको हमने यूज किया
1: पब्लिक
2: है,
1: इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड
2: एंड
1: प्रोजेक्शन
2: प्रोटेक्शन
1: ऑफ
2: ऑफ
1: इंटरेस्ट।
2: इन्फॉर्मर्स, कि हम लोग इन्फॉर्मर्स को प्रोटेक्ट करते हैं।
1: बिल्कुल
2: अगर
1: बिल्कुल
2: आपको ये डर है तो आप उसको फ्लैग करके कंप्लेन करिए, पर कंप्लेन जरूर करिए, हमारा कंप्लेन करना सबसे जरूरी है। अगर हम और आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये करप्शन जो अभी तक चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा।
1: शशांक जी, हमने बहुत सी बातें करी और विषय इतना बड़ा है कि सारी बातें इसमें समेट नहीं सकते हैं, तो इस प्रोग्राम के अंत में आप हमारे श्रोताओं से क्या अपील करना चाहेंगे?
2: सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आम जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो कोई भी ऐसा कोई केस देखते हैं जहाँ पे उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे रिश्वत या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करी जा रही है जो
1: चाहे
2: कि
1: उनके साथ खुद भी इन्वॉल्व ना
2: चाहे वो
1: हो।
2: खुद चाहे वो उनके साथ हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, अगर उनको पता भी चल रहा है किसी अन्य नागरिक के साथ भी हो रहा है, क्योंकि आज जो दूसरे के साथ हो रहा है वो कल को आपके साथ भी हो सकता है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप उसे कंप्लेन करें। और यदि जो मैंने बात कही कि आपको अगर डर है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, तो जब आप PIDPI के तहत कंप्लेन करते हैं CVC को, तो उसमें जो आपका लेटर रहता है अगर आपने उसके ऊपर PIDPI लिख दिया है, तो जो बाहर के लेटर पे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको ऑफिशियल मिलते ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपने इन्फॉर्मेशन दी, आपके जो अंदर की चीजें हैं उसको रख लिया जाता है, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे कि आगे चल के भी कभी भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो ही नहीं सकती है कि ये जो कंप्लेन करी गई थी ये किसके द्वारा करी गई थी। तो मैं आम जनता से ये कहना चाहूंगा, डरने की कभी भी जरूरत नहीं है। अगर आपका हक है तो आपको वो हक मांगना चाहिए। देंगे कैसे कंप्लेन फाइल करनी है, आप ऑनलाइन थ्रू भी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं, मतलब कि उनके पोर्टल पे जाके आप पोस्ट भी कर सकते हैं उनको, और यदि आपको ईमेल करना है आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आपको उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि डरे बिल्कुल भी नहीं, जहां आपको भ्रष्टाचार दिखे वहां उसकी कंप्लेन को रेज करें,
1: PIDPI का उपयोग करें।
2: PIDPI का तुरंत उपयोग करें। अगर आपको जरा सा भी डर है कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी, आप तुरंत PIDPI का यूज करें, डरें कभी भी नहीं। और यदि आपको बिल्कुल डर नहीं कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक भी हो जाए, तो आप अदर तरीके भी यूज कर सकते हैं, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर में आप कंप्लेन कर दीजिए कि मुझसे मांग रखी गई है, 7 दिन के अंदर आपको किसी भी अथॉरिटी को सूचित कर देना है कि मुझसे ये मांग रखी गई है। यदि आप 7 दिन के अंदर सूचित नहीं करते हैं तो आप भी उस करप्शन में शामिल हैं, ऐसा माना जाएगा।
1: जांग जी, बहुत सी बातें हम लोगों ने की हैं, उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं इस बात को सुनकर कुछ अमल करेंगे और वाकई किसी भ्रष्टाचार को देखेंगे तो डरेंगे नहीं और अपनी बात जरूर कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे। इस स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत धन्यवाद सर।
0: अभी आप सुन रहे थे भ्रष्टाचार रोकने में जन सहयोग, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे थे एडवोकेट हाईकोर्ट से कुंवर शशांक और भेंटकर्ता थे अतिश कुमार श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का कानून की बात ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 7:45 हो रहे हैं। सुगम संगीत के अंतर्गत लीजिए आज सुनिए शब्द। गायक कलाकार हैं कुलवंत सिंह।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शब्द। गायक कलाकार थे कुलवंत सिंह। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या।

आप थे उदित नारायण और अलका याग्निक फिल्म अंदाज में। समीर का गीत, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का। समीर के ही बोल आइए सुनते हैं। दिलीप सेन समीर सेन के संगीत निर्देशन में, कुमार शानू और अलका याग्निक के स्वर में, फिल्म आग से।

आग फिल्म के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं बाजीगर फिल्म से गीत, विनोद राठौर और अलका याग्निक के युगल स्वरों में गौहर कानपुरी का गीत, धुन अनु मलिक की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सोनू निगम के स्वर में बेवफा सनम फिल्म से गीत। सोनू निगम के ही बोल, संगीत से सवारा निखिल विनय ने।

सोनू निगम के स्वर में इस गीत के साथ ही गीत संध्या कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। समय है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। आज इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं साल 1965 में रिलीज फिल्म आरजू। प्यार, त्याग और गलतफहमी की एक इमोशनल ड्रामा फिल्म आरजू।

ये कहानी उस निश्चल मोहब्बत की, जहाँ एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की खुशी के लिए खुद की जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान दे देता है।

आरजू फिल्म के गीत निकले थे हसरत जयपुरी की कलम से, और उन गीतों को धुन दे करके तैयार किया था शंकर जय किशन ने। गीत को स्वर दिए थे मोहम्मद रफ़ी ने। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें स्वर सामग्री लता मंगेशकर की।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे आरजू फिल्म से गीत। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इस समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
3: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश

0: के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है।

0: मानी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची।

0: The 16th India-Japan annual summit tomorrow. In men's cricket, India to take on host England in first T20 international, a five-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। हुकूमत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की मालियत के शहराओं के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। विकसित भारत जी रामजी एक्ट आज से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। मरकज ने इस स्कीम के तहत उजरत की नजरे सानी शुदा शरहों को नोटिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के दावों में यकसानियत लाने की गरज से गाड़ियों के हादसे के मुतासरीन की आमदनी का तायुन करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल 16वें भारत जापान सालाना समिट में हिस्सा लेंगी। मर्दों के क्रिकेट में आज रात 5 मैचों की सीरीज में भारत और मेजबान इंग्लैंड पहले T20 बैन अक्वामी मैच में आमने सामने होंगे। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के अटलांटा में इंग्लैंड और DR कॉन्गो प्री क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज शाहराओं के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिस पर मुश्तरका तौर पर 14,114.81 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन प्रोजेक्टों में 6,969 करोड़ रुपए का दिल्ली में सुरंग से मुताल्लिक एक प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद बहुत ज्यादा ट्रैफिक को कम करना है। दूसरा प्रोजेक्ट 7,145 करोड़ रुपए के ग्रीन फील्ड शाहरा से मुताल्लिक है। ये शाहरा उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। मरकजी काबीना के फैसलों के बारे में कौमी राजधानी में मीडिया से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इन प्रोजेक्टों का मकसद PM गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सफर के वक्त को कम करना और इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देना है। काबीना ने दिल्ली में कौमी शाहरा 148 AE पर 6 लेन वाली 8.1 किलोमीटर तवील सुरंग की तामीर को मंजूरी दी है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। काबीना ने उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा नंबर 34 पर 117.7 किलोमीटर कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को भी मंजूरी दी है, जो 4 लेन वाली एक्सेस कंट्रोल राहदारी होगी, जिसका ढांचा इस तरह वजह किया जाएगा कि इसे आसानी से 6 लेन वाला बनाया जा सके।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 के तहत बढ़ी हुई उजरतों का इतलाक आज से मुल्क भर में हो गया है। देही तरक्यात की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बढ़ा दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि पहली मरतबा 300 रुपये यौमिया की उजरत की एक अबूरी बुनियादी शरह मुतारिफ कराई गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस प्रोग्राम के तहत कोई भी नोटिफाइड उजरत इस सतह से कम ना हो। विकसित भारत जी राम जी के तहत कौमी औसत उजरत MG नरेगा के तहत 298.80 रुपए यौमिया से बढ़कर 327.40 रुपए यौमिया हो गई है, जो कि 10% का औसत इजाफा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रहनुमा खतूत जारी किए हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की बुनियाद पर गाड़ी के हादसे में हलाक होने वाले मुतासरीन या दावा पेश करने वाले जख्मियों की सालाना आमदनी का तायुन अदालतें किस तरह करें। गाड़ियों के हादसे की सूरत में मुआवजों में यकसानियत लाने की गरज से एक अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तनख्वाह पाने वाले अफराद के लिए पिछले बरस की इनकम टैक्स रिटर्न ही सालाना इनकम का तायुन करने के लिए काफी होगी। अपना रोजगार आप चलाने वाले अफराद के सिलसिले में अदालत ने कहा है कि पिछले 3 बरस में दाखिल की गई ITR में बताई गई औसत आमदनी को ही आमतौर पर रेफरेंस पॉइंट बनाया जाएगा। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि मोटर गाड़ियों के एक्ट के तहत सालाना आमदनी का हिसाब किताब लगाने के लिए कोई एक तयशुदा फार्मूला नहीं हो सकता, इसलिए उसने तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन और अपना रोजगार खुद चलाने वाले अफराद के दरमियान वाजह तफरीक कायम की है ताकि उनकी अपनी अपनी ITR की बुनियाद पर मुआवजे का तायुन किया जा सके। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के सिलसिले में आला सतह की कमेटी से कहा है कि वो जल्द अज जल्द अपनी सिफारिशात पेश करे। नई दिल्ली में कमेटी के साथ एक मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने यह हिदायत दी। कमेटी ने वजीर दाखला को मुत्तला किया कि वो मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का दौरा करेगी ताकि आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के बारे में बर मौका इत्तलात हासिल कर सके और मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सके। कमेटी ने जनाब शाह को बताया कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुतालिका मालूमात हासिल करने की गरज से एक तफसीली सवालनामा पहले ही तैयार किया जा चुका है जिससे उनके ये दौरे ज्यादा बामानी और ज्यादा तामुल पर मबनी हो सकेंगे। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरपर्सन पीपी चौधरी ने लोकसभा और रियासती कानून साज असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ मुनक्किद करने की जरूरत पर जोर दिया। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात का एक साथ इनेकाद करने से हुक्मरानी का निजाम मुस्तहकम होगा, बार बार होने वाले चुनाव से खलल अंदाजी में कमी आएगी और ये मुल्क की मईशत के लिए फायदेमंद रहेगा। जनाब चौधरी ने कहा कि इंतखाबात का एक इनेकाद कराने का ख्याल नहीं है और इंतखाबी कमीशन, लॉ कमीशन और माहिरीन पर मुश्तमिल दीगर इदारे बरसों से इसकी तजवीज पेश करते रहे हैं। एक मुल्क एक इंतखाब के फवाइद बयान करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि इससे मिसाली जाब्ता अखलाक के बार बार निफाज में कमी आएगी।
3: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
1: मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने डेंगू से मुतालिक तैयारियों के बारे में दिल्ली सरकार के साथ एक जायजा मीटिंग के दौरान अवामी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि टीबी मुक्त भारत अभियान में तेजी आ सके। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि इस मुहिम से मुतालिक तमाम इत्तलात और मालूमात सादा और आसानी से समझ में आने वाली जबान में होनी चाहिए ताकि अवाम तक वसी तर रसाई को यकीनी बनाया जा सके। भारतीय बहरिया के बहरी जहाजों INS तरकश और INS इक्षक ने सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पर लंगर अंदाज होने का अपना दौरानिया मुकम्मल किया। वजारत दिफा ने आज बताया कि इन बहरी जहाजों का यह दौरा बहरे हिंद खित्ते में दोस्ताना बहरी मुल्कों के साथ बहरी तआवुन को मुस्तहकम करने के भारतीय बहरिया के अज़्म को दोहराता है। यह दौरा विजन महासागर से भी मुताबिकत रखता है। इस दौरान सेशल्स के कौमी दिन और गोल्डन जुबली तकरीबात के तहत मुख्तलिफ पेशे वराना इस्तकबालिया और कम्युनिटी की शिरकत पर मबनी सरगर्मियों को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। अपने दौरे के दौरान INS तरकश के बहरी बैंड और मार्चिंग दस्ते ने 28 जून को मुनक्किद सेशल्स के कौमी दिन की परेड में हिस्सा लिया जो भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी और दीरीना बहरी साझेदारी की अक्कासी करता है। ये आकाशवाणी है। जापान की वजीर आजम सनाई ताकाइची अपने 3 रोजा भारत दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वजीर आजम ताकाइची का खैर मकदम किया। जापान की वजीर आजम सनाई ताकाइची का यह भारत का पहला सरकारी दौरा है। इस दौरान वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ कल 16वें भारत जापान सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। ये चोटी कॉन्फ्रेंस फरीकैन को दो तरफा तआवुन के सभी पहलुओं का जायजा लेने, उन्हें मुस्तहकम करने और बाहमी मफादात के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका फराहम करेगी। वजीर आजम मोदी और जापान की वजीर आजम के दरमियान बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों के तबादले की उम्मीद है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: भारत और जापान बुनियादी ढांचे, शहरी जदीदकारी, तवानाई, ज़राअत, सियाहत और हुनरमंदी प्रोजेक्टों समेत शुमाल मशरकी भारत में कनेक्टिविटी और तरक्की में शराकतदार हैं। शुमाल मशरकी खित्ता खुले और आज़ाद भारत बहरुल काहिल के जापान के नज़रिए से मुताबिकत रखता है और जुनूबी एशिया को जुनूब मशरक़ी एशिया से जोड़ने में पुल का काम करता है। शुमाल मशरक़ी खित्ते और जापान के दरमियान साल 2025 तक अब तक कई आला सतह के दौरे हुए हैं, जिनमें जापान के खारजी उमूर के वज़ीर मुमलकत इवाओ होरी का इस साल फरवरी का भारत दौरा शामिल है। इस दौरान उन्होंने मेघालय और आसाम के वज़ीर आला से मुलाकात की थी। इसी तरह आसाम के वज़ीर आला ने भी गुज़िश्ता साल जनवरी के महीने में जापान का दौरा किया और आसाम और आसियान के दरमियान अगले 5 साल के दौरान 20,000 नौजवानों को तरबियत देने से मुतालिक मफाहिमत नामे पर दस्तखत किए गए। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: भारत ने पाकिस्तान के फारूकाबाद में तारीखी 125 साल पुराने मुकद्दस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को मुनहदिम किए जाने की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि यह इंतहाई अफसोसनाक और तहजीबी विरासत को खत्म करने की एक तयशुदा कार्रवाई है। मुबैना इनदामी कार्रवाई के मुतालिक मीडिया के सवालात के जवाब में वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इस इनहदामी कार्रवाई पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया और मकामी हुक्काम या इवैक्यूट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की जानिब से कोई बामानी कार्रवाई न किए जाने की रिपोर्टों पर भी तशवीश जाहिर की। भारत ने पाकिस्तान से जोर देकर कहा है कि वो इस मामले की तेजी से तहकीकात करे और कसूरवारों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। जनाब जायसवाल ने जोर देकर कहा कि गुरुद्वारा साहिब के मुनहदिम किए गए हिस्सों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और उनकी तामीर नौ की जाए। भारत ने इस्लामाबाद से जोर देकर यह भी कहा है कि वो अकलियती फिरकों और उनकी इबादत गाहों के तहफ्फुज़ सलामती और ठीक ठाक रहने को यकीनी बनाए जाने से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और पाकिस्तान में फिरके वारियत पर मबनी तशद्दुद और मजहबी अदम रवादारी के मौजूदा माहौल को फैसला कुन इख्तिताम तक पहुंचाए। भारत और पाकिस्तान ने आज नई दिल्ली और इस्लामाबाद में सिफारती चैनलों के जरिए एक दूसरे के मुल्कों में जेरे हिरासत शहरी कैदियों और माही गीरों की फहरिस्तें एक दूसरे को पेश की। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 ऐसे शहरी कैदियों और 53 माही गीरों की फहरिस्त उन्हें सौंपी जो पाकिस्तानी हैं या जिनके मुतालिक ख्याल है कि वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 सिविल कैदियों और 198 माही गीरों की फहरिस्त सुपुर्द की जो भारतीय हैं या जिनके मुतालिक ख्याल है कि वो भारतीय हैं। भारत पाकिस्तान के जेरे हिरासत शहरी कैदियों माहीगीरों और उनकी कश्तियों और लापता भारतीय दिफाई अहलकारों की जल्द अज जल्द रिहाई के लिए लगातार जोर देता रहा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों का पहला जत्था जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप में पहुंच चुका है और कल से सालाना यात्रा शुरू होने की तमाम तैयारियां हो गई हैं। तमाम जरूरी तैयारियां जिनमें बढ़ी हुई सिक्योरिटी और यात्रियों की रिहाइश के इंतजाम शामिल हैं पूरी हो गई हैं। ये 57 रोजा यात्रा ननवान पहलगाम और बालतल के रास्ते सख्त सिक्योरिटी में जारी रहेगी। आकाशवाणी ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में वाक़ रंग भवन ऑडिटोरियम में अपनी नशरियाती हाउस की फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का इफ्तिताह किया। इस फोटो गैलरी का इफ्तिताह पद्म विभूषण बांसुरी नवाज पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने किया। इस तकरीब के दौरान एक मौसीकी रेस कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया जिसमें पंडित रूपक कुलकर्णी ने बांसुरी की धुनों से मन मोह लिया। इस तकरीब के दौरान प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी और दूरदर्शन न्यूज के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद अफराद से खिताब करते हुए जनाब द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की फरावा मौसीकी की विरासत को महफूज रखने और फरोग देने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है।
5: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के मामेन T20 5 बैन अलावामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में होगा। ये मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फुटबॉल में फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में आज रात एटलांटा में इंग्लैंड का मुकाबला जमहूरिया रिपब्लिक कांगो से होगा। और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے. مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے.

0: क्या क्या का विषय है? ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक है प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट है। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनेरियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे, तीसरा डेटा सबकी पहुंच में होना, और चौथा डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे

0: अफ्रीका को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
0: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हों या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है, ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
0: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया है, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफैम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं दूसरा, और तीसरा अब हमारा है भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
0: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप QR कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी AI है, वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी AI का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने AI बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से GPU प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो MSMEs और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो AI कोष है उसमें जो हमारी रीजनल

0: जिसके जो LLMs या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं. तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहाँ ला रहा है.
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
2: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर के मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है. हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस AI फॉर गुड में जिसको अवार्ड भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है. और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया. लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है. इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें. तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म. हम कोई भी API कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेशन, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है. ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास UPI है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ. तो ये मॉडल जो है, इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो. एंड वही AI का अभी पुसुम जी ने बात किया कि AI कोषा में जो सब्सिडाइज रेट में GPUs दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट.
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि MyGov जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं. तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
2: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है, सरकार के पास रहना चाहिए. तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन. वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है. लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके. और ये जितना भी है MyGov आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना. तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स. आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी.
1: प्रसून जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और PM गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
0: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है. अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और अनेबलमेंट चाहिए थी. हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं. हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है. इवन जो आपको सर्टिफिकेशंस, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है. और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है. तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की top 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है. ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं. अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में. ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
2: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं जो बहुत ही इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर, तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ये सब है वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
3: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर, इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है। तो IT, AI, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं?
0: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, AI, सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवरनिटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है, उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट, वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक्स सोवरनिटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं। उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो

0: का प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
1: कर रहे हैं हम
0: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित रही?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ कुछ सेक्टर्स हो, तो इस सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब, और ये एआई के साथ कन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाई प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसी चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही है?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोगों को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को खुद का जीपीयू चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है, और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, तो सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी, अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती है कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
0: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है या ऐसे में वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव

0: बोलते हैं उस तरह की पहल। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ONDC पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल FTA साइन करे हैं, अब ONDC के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए, जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है। पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ FTA कर रही है, और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
0: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है, और आज से कुछ साल पहले GST हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि GST जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी, या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
1: जी, टैक्सेशन और खासकर MSMEs को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो MSME हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे अब पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हमारे MSME के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं FTA के थ्रू बेचने हैं, तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
0: उत्तल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्री स्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर। जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, उसका जो अल्टरनेटिव है, हम लोगों को अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो, या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं है, पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया, उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
0: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई AI, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, AI, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे AI विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और AI एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है,
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 10

श्रोता मित्रों नमस्कार, शुभ संध्या। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र रीना राजपूत और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो दिल ने फिर याद किया। मित्रों, आज कैलेंडर का पन्ना पलटते ही दिल ने एक ऐसी करवट ली कि सीधा बचपन के इस दौर में ले गया, जहां पर लंबी छुट्टियों के बाद खुल जाया करते थे स्कूल। जी हाँ, जैसे कि आज हमारे बच्चों के स्कूल खुल गए छुट्टियों के बाद, तो आइए हम भी अपने बचपन के उस दौर में चलते हैं जब लंबी छुट्टियों के बाद हमारे स्कूल खुल जाया करते थे, जहां पर संडे का मतलब सिर्फ एक दिन की छुट्टी नहीं था बल्कि एक पूरी जिंदगी हुआ करता था। और खासकर वो दिन जब गर्मियों की लंबी बेफिक्र छुट्टियां खत्म होती थी और कल से स्कूल खुलना था। याद है ना आपको वो वक्त? जी हाँ, आज हम इसी पर बात करेंगे। और जल्दी जल्दी आप हमें लिख करके भेज दीजिए अपने मैसेजेस और उसमें उन पुरानी यादों का पिटारा खोल दीजिए जबकि लंबी छुट्टियों के बाद हम स्कूल जाया करते थे। आपके मन में वो कैसे विचार आते थे, कैसे वो दिन कटते थे, ये जो भी उससे रिलेटेड आपके यादें रही हों आप उनको शेयर कीजिए हमारे नंबर पर 9457078288। जी हाँ, नंबर है 9457078288। तो इस नंबर पर आप हमें यादों का पिटारा भेज सकते हैं। कार्यक्रम चल रहा है दिल ने फिर याद किया और यादों का सफर आज हमारा जा पहुंचा है कहाँ? जी हाँ, जब लंबी छुट्टियों के बाद हमारा स्कूल खुलता था उस दिन, वो रात की बेचैनी जब अलमारी से बिल्कुल कड़क नई यूनिफॉर्म निकाली जाती थी, वो नए बस्ते, नई कापियां, उन पर ब्राउन कवर चढ़ाने की वो खुशबू, उफ, आज भी वो खुशबू जहन को ताजा हो दिल कह उठता है दिल ने फिर याद किया। उस पहले दिन स्कूल जाने का एक अलग ही सस्पेंस होता था। इस बार कौन सी क्लास मिलेगी, मेरा पार्टनर कौन बनेगा, क्या वो पुरानी खिड़की वाली सीट मुझे फिर से मिलेगी, और सबसे बढ़कर वो सहेलियां, वो दोस्त जिनसे 2 महीने से बात नहीं हुई, उनसे मिलने की वो बेताबी। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज का हमारा सफरनामा इसी याद के नाम है, आपके स्कूल के पहले दिन की सबसे मजेदार याद क्या है, क्या आप भी नई किताबें पढ़कर खुश होते थे या फिर रोते रोते स्कूल जाते थे? मुझे अभी मैसेज कीजिए, नंबर बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ 9457078288 9457078288। इस नंबर पर आप हमें मैसेजेस भेज दीजिए और हम आपके दिल की बात पहुँचा देंगे अपने सभी श्रोताओं तक। अपने दिल की बात शेयर कीजिए क्योंकि आज दिल ने फिर याद किया आपके बचपन के उस पहले दिन को। चलिए यादों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बेहद खूबसूरत नगमे के साथ।

जी हाँ, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन को हम याद तो करते हैं, लौटाने की कामना भी करते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बीते हुए दिन की यादें इतनी मधुर होती हैं कि हमारा दिल करता है कि कोई वो दिन हमें लौटा दे। और उसी पुरानी यादों में आज हम घुस चुके हैं, जबकि गर्मियों की छुट्टियों के बाद पहले दिन हम स्कूल जाया करते थे। मैसेजेस मिलना शुरू हो गए हैं और जो नए हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं उनको हम अपना मोबाइल नंबर ज़रूर बताना चाहेंगे। नंबर है 5494570-78288, 5707-8978288। तो इस नंबर पर आप हमें लिख करके भेज दीजिए अपने बचपन की यादें। तब तक हम ले लेते हैं मैसेज जिन्होंने हमारे जो श्रोताओं ने हमारे हम तक भेजा है, लिखा है। ये पहला मैसेज हम तक पहुंचा है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। लिखते हैं, बहुत दिन बाद आज हमारे बच्चे स्कूल गए, बहुत खुश हुए। घर आकर हमारे बच्चों ने बताया हमारे स्कूल में नए मास्टर साहब आए हैं। मैंने आज ही बहुत दिन बाद अपने दोस्तों से मिले, कुछ नए दोस्त बनाए। सर जी ने कहा नई किताब पेन कॉपी लेकर आना है। मुकेश कश्यप जी, ये तो आज की बात हुई, हम तो बात कर रहे हैं आपके बचपन की, यानी कि आपने बचपन में जब छुट्टियों के बाद स्कूल जाया करते थे तब आपके दिल की वो बातें, वो एहसास हम जानना चाहते थे। तो लिख करके हमें आप वो बातें भेजिएगा। एक और मैसेज है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। लिखने वाले हैं ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। लिखते हैं, दिल ने फिर याद किया दीदी जी, 1 जुलाई आते ही अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। सुबह हम लोग जल्दी उठ जाते थे, सुबह स्नान करके कुछ नाश्ता करने के बाद अपने बैग लेकर चल पड़ते थे। हाँ, जब दोपहर में छुट्टी होती थी तो इतनी खुशी होती थी कि पूछिए मत। जी बिल्कुल सही बात है, वो तो जीवन का आनंद ही अलग होता था जब छुट्टी के बाद हम लोग निकलते थे स्कूल से बाहर। और एक और मैसेज हम तक पहुंचा है, लिखने वाले हैं वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शेब खान। लिखते हैं, स्कूल की खट्टी मीठी यादें। मैं स्कूल हमेशा समय से पहले पहुंच जाया करता था, जब स्कूल का दरवाज़ा खुलता भी नहीं था। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र अक्सर स्कूल की चौखट से ही शुरू होता है। वहीं मासूम शरारतें, दोस्तों की बेफिक्र महफिलें, अध्यापकों का स्नेह, कभी डांट तो कभी प्यार और साथ बिताए अनगिनत पल आज भी दिल के किसी कोने में मुस्कुराते रहते हैं। वक्त भले ही आगे बढ़ जाए मगर स्कूल के दिनों की खट्टी मीठी यादें उम्र भर हमारी जिंदगी की सबसे अनमोल पूंजी बनी रहती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो चलिए, बचपन में जा रहे हैं तो ऐसे भी जाएं।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम चल रहा है दिल ने फिर याद किया, और आज दिल याद कर रहा है अपने उस दिन की याद को जब गर्मियों की लंबी छुट्टियों के बाद हम जाया करते थे स्कूल। ये मैसेज हम तक पहुंचा है ग्राम गदारोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी जी का। लिखते हैं, आज पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी है आपने। मुझे याद आ रहा है स्कूल में अपना पहला दिन, जब मुझे मेरे पिताजी स्कूल लेकर गए और मेरा एडमिशन कक्षा एक में करवाया। उम्र थी 5 साल। उस समय 5 साल की उम्र में ही दाखिला होता था। मुझे याद आ रहा है कि मैं खुश भी था, लेकिन जिस आज़ादी से वो बचपन बीत रहा था, मुझे लग रहा था कि वो आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं खुश भी था और दुखी भी था। बस पिताजी मुझे स्कूल छोड़ आए और मेरा साथियों के साथ दिन अच्छा गुजरा, और फिर तो आदत हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। और एक और मैसेज है, ये हम तक पहुंचा है आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी का, शाही मार्केट सिहारा ज़िला बिजनौर से। लिखते हैं, मैं कक्षा 5 तक पढ़ा हूँ, क्योंकि कुछ मजबूरियाँ रहीं मेरी, मैं पढ़ न सका। दिल में तमन्ना थी कि मैं पढ़ूँ, लेकिन हालात ने पढ़ने न दिया। दिल बहुत करता था पढ़ने का, तो उसके बावजूद भी मैंने ट्यूशन लगाया और मैं पढ़ा, 2 साल पढ़ता रहा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज एक रोटी कम खा लें, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ा लें। लेकिन माँ बाप की तमन्ना तो बहुत होती है कि अपने बच्चों को पढ़ने लिखने दें और उनको कामयाब बना दें। जी हाँ, बिल्कुल। और मैसेजेस का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक आपको सुनवा रहे हैं खूबसूरत गीत।

और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी होती थी। अरे हाँ, और बेचैनी इस बात की भी तो होती थी कि नई क्लास में जाना है, बल्कि इस बात की भी होती थी कि अब सुबह 6 बजे का अलार्म फिर से बजने लगेगा। वो देर तक सोने वाले दिन अब खत्म हो चुके हैं। जी हाँ, बहुत सारी यादें होती हैं और यादों का सिलसिला हमारे पास तक पहुंच रहा है हमारे श्रोताओं के मैसेजेस के जरिए भी। ये मैसेज हम तक पहुंचा है विलेज एंड पोस्ट राहु नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान और राघव चौहान का। लिखते हैं, जब हम जून की छुट्टी के बाद स्कूल जाते थे तो बस उस समय आज की तरह हॉलिडे होमवर्क का प्रेशर नहीं होता था। बहुत खुशी मिलती थी और घर के बड़े सदस्य स्कूल के टीचर कहते थे कि अगर शुरू के 3 दिन प्रेजेंट नहीं होगी तो नाम काट दिया जाएगा। हमारे स्कूल में जामुन आम अमरूद का बगीचा था जिसे एक कर्मचारी देखता था और हम उनके फल तोड़कर खाया करते थे। और एक बार हमने जामुन अपनी जेब में रख लिए जिससे हमारे कपड़े खराब हो गए और बहुत डांट लगी। फिर भी नया बैग नया कोर्स पढ़ने में बड़ा मजा आता था। एक और मैसेज हम तक पहुंचा है, आप हैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से राजेश साबले पाटिल। लिखते हैं, मेरा स्कूल का पहला दिन तो मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे बेटे राजदीप का स्कूल का पहला दिन याद है। स्कूल खुलने वाले थे, बेटे को स्कूल में दाखिला देना था। स्कूल में दाखिला देने के बाद स्कूल यूनिफॉर्म और बुक्स मिल गए। यूनिफॉर्म और नए बुक्स बैग देखकर बेटा एकदम खुश हुआ। सब तैयारी कर उसे स्कूल पहुंचाया। बाकी सब बच्चों को देखकर मेरा बेटा बड़ा खुश हुआ। मेरी उंगली पकड़कर अचंभित नजर से वो हंसी खुशी चल रहा था। कक्षा के अंदर प्रवेश कर जब उसे मैडम के पास छोड़ने लगा तो मेरी उंगली नहीं छोड़ रहा था। जैसे तैसे करके मैंने अपनी उंगली छुड़ाई और मैं कक्षा से बाहर निकलने लगा। वो जोर से रोने लगा। तब मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। जो बेटा कुछ समय पहले इतना खुश था, अब वो रोने चिल्लाने लगा है। आज भी मुझे ये पल याद आता है तो बड़ी हंसी आ जाती है। जी बिल्कुल, बच्चों के पहले दिन कभी नहीं भुलाए जाते। एक और मैसेज हम तक पहुंचा है, लिखते हैं, जब गर्मी की छुट्टियां पूरी होती थी तो मैं स्कूल जाने के लिए हमारी माता जी हमारे को 1 रुपया देकर मीठी चॉकलेट देकर स्कूल भेजती थी और मेरे से बड़ी बहन हमें दोनों साथ साथ स्कूल हम जाते थे। और उसे समय स्कूल में बैग रेडीमेड नहीं आते थे तो हमारी माता जी घर पर पुराने कट्टों या फिर कपड़ों का हाथ से सुई धागे से स्कूल का बस्ता तैयार करती थी। हम कहते थे ये वाला मैं लूँगा, मेरी बहन ये वाला। हम लोग दोनों भाई बहन में खूब लड़ाई होती थी और फिर माँ दोनों को 1-1 रुपये देकर छोड़ने जाती थी स्कूल का आधा। छुट्टी होने के बाद उन पैसों की हम भाई बहन जो हमें मिलते थे पानी पतासे खा लेते लिया करते थे। और वाकई में वो दिन भी क्या दिन थे। वो दिन कभी नहीं आएंगे। ये हमें लिख करके भेजा है कवाई सालपुरा जिला बारा राज से सतीश श्रीवास्तव ने। और दोस्तों, समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम अभी भी आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं। आप हमें मैसेज लिखकर अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा कीजिए और हम उस याद को अपने सभी श्रोताओं के साथ साझा करेंगे।

दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम चल रहा है और हमारे सभी श्रोता हम तक भेज रहे हैं अपने प्यारे प्यारे मैसेज, पुरानी यादों भरे। प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया नगीना से अनिल विनोचा जी ने ये मैसेज हमें लिख करके भेजा है। आज का टॉपिक बहुत ही दिल के करीब है, कुछ लिख रहा हूँ। लिखते हैं, एक महीने की हॉलिडे का सच पता ही नहीं चलता था। सबसे पहले तो नानी नाना के घर की मौज मस्ती, नानी नाना और मामा का प्यार सच राजा बन जाते थे। मामी परेशान हुई, फिर मंसूरी गए, मज़ा आ गया। अच्छे होटल में भी रहे, कुछ परचेज भी की, मज़ा आ जाया करता था। 5 दिन पहले घर लौट आए, बस कुछ रह गया था होमवर्क ना करना। सच, अब पिताजी का नंबर होता था, अपने दोस्त की कॉपी मांगनी और नकल कर काम पूरा करके करते थे। फिर से शूज ड्रेस लेनी, पापा की पॉकेट खाली करवाते, मगर पिताजी तो पिताजी हैं, क्योंकि होमवर्क पूरा नहीं हुआ, सब दोस्त मिले, खुश हो जाते थे, विश करते और गले भी मिलते थे, थोड़ा अच्छा लगता था। मन तो कई पूरी तरह से स्टडी के लिए तैयार नहीं होता था, बस छुट्टी की घंटी का इंतज़ार रहता ताकि उदासी दूर हो सके। कुछ दिन बाद स्टडी में मन लगता था। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सच है कि छुट्टियों के बाद एकदम से पढ़ाई में मन लगना तो थोड़ा मुश्किल काम होता ही था। ये एक और मैसेज है अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी जयपाल यादव का। आपने हमें सिर्फ मैसेज भेजा है, कुछ लिखा नहीं इस बारे में। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हा पर से लिखते हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान इसरार खातून और नरगिस खातून। लिखते हैं, मिट्टी भी जमा की और खिलौने भी बनाकर देखे, जिंदगी कभी ना मुस्कुराई बचपन की तरह। चलिए आपसे और बहुत सारी बातें करेंगे इस गीत के बाद।

जी हाँ, बचपन याद आ रहा है तेरा प्यार। और इस याद के सिलसिले को खूबसूरत बना रहे हैं हमारे श्रोताओं के खूबसूरत खूबसूरत मैसेजेस। ये मैसेज है मोहल्ला बारादरी से महमूद खुरमपुर से, लिखते हैं भाई रफत साहब, मंसूरी असद, फिरोज़ मुस्कान और नगमनाज मंसूरी। देखिए, आपने मैसेज तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन उस मैसेज में कहीं कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई पॉज नहीं। अब हम पढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं कैसे पढ़ा जाता है आपका मैसेज। लिखते हैं, वाकई में बचपन का भी वो दौर क्या दौर था जब हम अपने माता पिता भाई से 10 पैसे 20 पैसे लिया करते थे और दुकान पर जाकर चीज़ खरीदा करते थे, और 10 पैसे 20 पैसे की चीज़ बहुत सारी आती थी। आज के दौर में 10 रुपये या 20 रुपये की भी कोई कीमत नहीं है। बाकी मैं बचपन के दौर में था, एक चीज़ का मज़ा लिया करते थे, और चाहे खाने पीने की चीज़ें हो या फिर मेला घूमना या फिर पिक्चर देखने की, पिक्चर हॉल पूरे काफ़ी कतर हुआ करते थे। आनंद आता था जब पिक्चर हॉल में पिक्चर देखते थे। आप मैसेज लिखते लिखते भटक गए। हम जो आज हमारा टॉपिक है वो है कि हम जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल जाया करते थे, तब हमारे दिल में कौन से भाव हुआ करते थे कि हम इतने दिनों के बाद स्कूल जा रहे हैं। तो वो हमारे दिल में कौन सी बातें आया करती थी उस समय, वो आपको लिख करके भेजनी है। एक मैसेज हम तक पहुंचा है, आप हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से, सैयद आलम हाशमी बेगम गुलनाज हाशमी लिखते हैं, कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छी तरह से गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। दुनिया में दोस्त तो बहुत मिलेंगे मगर बचपन के दोस्तों जैसे कहाँ। आज भी मुझे मेरे बचपन के दोस्त बहुत याद आते हैं, मगर एक ज़माना बीत गया उनसे बिछड़े हुए और ना ही मुलाकातें हो सकी। कौन कहाँ है, किस हाल में है, कुछ पता नहीं, बस सिर्फ उनकी यादें रह गई हैं। दोस्तों के नाम कुछ अर्ज करना चाहूँगा, वो लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, वो लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, बीते दिनों में आज जैसी बात हो ना हो, मेरे दोस्त हमेशा मेरे दिल में बसते हैं, चाहे पूरी ज़िंदगी मुलाकात हो ना हो। जी, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। जो पुरानी बातें होती हैं, पुराने दोस्त होते हैं, वो कभी नहीं भुलाए जाते, चाहे हम जीवन के किसी भी दौर में क्यों ना हो। हमें अभी भी आपके मैसेजेस का इंतज़ार है। आप जल्दी से हमें मैसेज लिख करके अपनी याद ताज़ा कर सकते हैं, बचपन की वो याद जब छुट्टियों के बाद हम जाया करते थे स्कूल, और बेफिक्र सी गर्मियों की छुट्टियां बिता करके दादी नानी के यहाँ घूम करके और देर तक सो करके जब वापस स्कूल खुलने का दिन आता था, तो मन में क्या भाव आते थे, वो हमें लिख करके भेजिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। नंबर एक बार बता देती हूँ फिर से।

जी हाँ, बचपन की वो यादें, चॉकलेट, लाइम जूस, सब पुराने हो जाते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं और जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आ जाती हैं। बस जीवन में कुछ रह जाता है तो बचपन की वो पुरानी यादें याद करके खुश हो जाने का, कुछ अच्छा समय गुजारने का। तो आज हमारा टॉपिक है गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब हम स्कूल का जो हमारा पहला दिन होता था उस समय हमारी मनोस्थिति क्या हुआ करती थी, बस यही साझा कर रहे हैं हमारे श्रोता हमारे साथ और हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं उनके दिल की बात। ये मैसेज हम तक पहुंचा है, लिखते हैं लक्सर रोड गांव सुवाहेड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोहेब, कहकशा और पूरा परिवार। लिखते हैं पुराने दिनों की याद बहुत आती है जब हम सभी दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में आम के बागों में जाकर खूब खेला करते थे और आम के मौसम में आम भी तोड़कर खूब खाया करते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं। लिखते हैं पुराने और लिखते हैं बचपन में हम सभी दोस्त बहुत मौज मस्ती किया करते थे। जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी तो हम नानी के घर जाया करते थे, वहाँ पर बहुत शरारत किया करते थे और हमारी नानी हमसे बहुत परेशान रहा करती थी और फिर कुछ पैसे दिया करती थी और हम दुकान पर जाकर उन पैसों का सामान खरीदते थे। छुट्टी की बात तो आपने की लेकिन उसके बाद जब स्कूल जाने का दिन आता था वो आप स्किप कर गए। चलिए एक और मैसेज देखते हैं कहाँ से हम तक पहुँचा है। आप हैं सराय मीर स्ट्रीट नगीना से, सईद अहमद राही, रवीश रवीश अहमद राही, रुएश अहमद राही, रिशान अहमद राही, रुशेज अहमद राही, रुशमान अहमद राही और समस्त राही परिवार। लिखते हैं बचपन भी वाकई सारी दुनिया के हर गम से बेगाना होता है। बात उन दिनों की है जब हमारी नादान सोच ये सोचती थी कि ऊपर वाला हमें बच्चा ही रखे जिससे हम हमेशा आज़ाद होकर जी सकें। ये बिल्कुल भूल जाते थे कि ये सारा नामुमकिन हमारी सोच सरासर बेबुनियाद है। एक और मैसेज, आप हैं आपने मैसेज हमें कहाँ से लिखा है। लिखते हैं आरजे जी को आदाब, आज बच्चों को सिर्फ मोबाइल याद रहता है। हमारे ज़माने में हमारी काकी 5 पैसे देती थी और संतरे की आप शॉपिंग करते थे। आपने 1980 के ज़माने की बात लिख कर के भेजी है, अपना नाम आप नहीं लिख पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हैं गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। आप लिखते हैं बचपन में जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थी दिल में अनेकों प्लान तैयार होते थे। हम अपनी नानी के यहाँ जाना और वहाँ खेतों में घूमना, बागों में आम तोड़ना। लेकिन जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती हम स्कूल जाने की तैयारी करते, सोचते हमारे नए टीचर कैसे होंगे, क्या हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करेंगे या खूब सज़ा देंगे। फिर एक हौसला लिए स्कूल जाते थे और 2 दिन में ही सब कुछ घुल मिल जाते थे। काश वो दिन वो लम्हे फिर से जी सकें। जी वो दिन वो लम्हे हम फिर से जी तो नहीं सकते लेकिन हाँ महसूस कर सकते हैं। आइए करते हैं इस गीत के साथ।

लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

अपने बचपन की यादों को यूं ही ताज़ा करते रहिए और खुश होते रहिए, जीवन में खुश होकर के नए मुकाम हासिल करते रहिए। हम यूं ही आपसे मिलते रहेंगे। आज का दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम संपन्न करने की रीना राजपूत अब यही चाहती है अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए

0: काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunj. Mr. Vaishnav said the Cabinet also approved the construction of the 117.7 kilometer long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a four-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission, Grameen, or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VB G. Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a three-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with various administrations. The panel informed the Home Minister that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. India has strongly condemned the demolition of the historic 125-year-old sacred Gurudwara Sri Guru Singh Sabha Sahib in Farrukhabad, Pakistan, calling it highly deplorable and a targeted act of vandalism. In response to media queries regarding the reported demolition, External Affairs Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said, "The systemic targeting of religious minorities and their places of worship in Pakistan continues unabated. India has called upon Pakistan to expeditiously investigate this matter and bring the perpetrators of this act to justice." India and Pakistan today exchanged lists of civil prisoners and fishermen in each other's custody through diplomatic channels in New Delhi and Islamabad. The External Affairs Ministry said in a statement that India has shared lists of 386 civil prisoners and 53 fishermen in its custody who are Pakistani or believed to be Pakistani. Pakistan has shared lists of 52 civil prisoners and 198 fishermen in its custody who are Indian or believed to be Indian.